FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 27वीं तिथि, तदनुसार 17 मई सन 2026। इस स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 और 15 सेकंड हुए हैं। इसके साथ आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। यह यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी।

0: श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ किस्टरसन के साथ वार्ता करेंगे। इसमें द्विपक्षीय संबंधों की सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। दोनों प्रधानमंत्री के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन भी यूरोपीय उद्योग जगत के गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करेंगी। यह यूरोपीय उद्योगपतियों का एक प्रमुख मंच है। इस वर्ष जनवरी में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के लागू होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यूरोप की ये पहली यात्रा है। यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करना और तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों का समाधान तलाशना है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
1: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
2: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
0: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
3: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा। उन्होंने कहा कि दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान भी करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कर रही है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में गुजरात टाइटंस 4 विकेट पर 218 रन ही बना सकी। सुनील नरेन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। वहीं दिल्ली में शाम 7:30 बजे डेल्ही कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेटो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने कल सेमीफाइनल में मलेशिया के गो सी फेई और नूरिजुद्दीन को हराया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाश। हिंदी समाचारों के बाद स्वागत है आपका। पेश है कार्यक्रम खेती की बातें। इस कार्यक्रम में यही जानकारी प्राप्त करते हैं, कंपोस्ट बनाने की विधि पर जानकारी दे रही हैं सुनीता अग्रवाल।
5: खेती की बातें कर

कार्यक्रम में श्रोताओं, आज हम बातें करेंगे कंपोस्ट खाद के लाभ पर। श्रोताओं, कंपोस्ट खाद फसल व पौधे के पोषक तत्वों में उच्च जैविक उर्वरता संचार करता है, जो मिट्टी की भौतिक विशेषताओं में सुधार लाता है, खेत में जैव अवशिष्ट को कम करता है और रोग जनितों को खत्म करता है। इस तरह कंपोस्ट खाद जैविक खेती का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कंपोस्ट के लिए उस स्थान का चयन करें जहां हवा, धूप और पानी का प्रभाव ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि संतुलित मात्रा में हो, और मिश्रण या कचरा ना तो ज़्यादा गीला होना चाहिए और ना ही सूखा होना चाहिए। खाद बनाने के लिए जगह का चयन जमीन के ऊपर या गड्ढे के रूप में दोनों तरह से किया जा सकता है। अगर जमीन के ऊपर कर रहे हैं तो उस जगह से खरपतवार को साफ कर देना चाहिए और मिट्टी की कुछ सेंटीमीटर परत बनाएं, उसमें पानी से गीला करके उस पर कचरा डालना चाहिए। इसी तरह से यदि गड्ढे का उपयोग कर रहे हैं तो वहाँ मिट्टी की परत बनाएं और पानी का छिड़काव करें। यदि हो सके तो अधिक नाइट्रोजन के लिए मिश्रण में पौधे व फसल के अवशेषों को ज़्यादा डालें, जिससे नाइट्रोजन की ज़्यादा मात्रा मिल सकेगी। मिश्रण को डालते समय ध्यान दें कि उसमें कोई खाली स्थान नहीं रहना चाहिए। अच्छी तरह से दबाकर गड्ढे को भरना चाहिए और ऊपर गोबर का लेप लगा देना चाहिए। इसके बाद उस पर 15 सेंटीमीटर मिट्टी की परत बना देना चाहिए। कचरे को नमी युक्त करके गड्ढे में डालना चाहिए और 4 से 5 महीने के लिए इसे छोड़ देना चाहिए। उसके बाद जो कंपोस्ट खाद तैयार होता है वो आवश्यक पोषक तत्वों से परिपूर्ण होता है। कंपोस्ट खाद प्रभावी तब होता है जब में ऐसी परिस्थितियों में बनाया जाता है जो सूक्ष्म जीवों के नाम पर मिट्टी में छोटे छोटे जीवों का विकास का समर्थन करते हैं। ये बैक्टीरिया और कवक होते हैं। सूक्ष्म जीवों को और पौधे और पशुओं के अवशिष्ट पदार्थों को तोड़ने के लिए आवश्यक होता है। पौधे और पशु के कचरे के टूटने के दौरान गर्मी का उत्पादन होता है और कुछ दिनों के बाद तैयार कंपोस्ट का ढेर गर्म हो जाता है। जब उसे खोला जाता है तो उसमें भाप दिखाई देता है। कचरे की सामग्री के रूप में विघटित होने पर ऐसे पदार्थों में पोषक तत्व कुछ होते हैं जिनका उपयोग फसल और पौधे में किया जा सकता है। कंपोस्ट खाद को फसल बुआई से उसे 4 सप्ताह पहले भी नमी युक्त खेत में डालना चाहिए और उसको किसी भी यंत्र से मिट्टी में अच्छी तरह से मिला देना चाहिए ताकि पोषक तत्व भूमि में अच्छी तरीके से प्रगतिशील हो सके। यह फसल के अवशेषों, गोबर, घास और अन्य घरेलू कचरे से बनती है जो किसानों को अपने खेतों से ही मिल जाया करती है। पौधे इसके पोषक तत्वों को अधिक टूटने की बजाय सीधे ग्रहण कर लेते हैं। मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है जिससे फसल के समर्थन मिलता है और पानी की बचत भी होती है। पर्यावरण प्रदूषित प्रभाव नहीं पड़ता, यानी

0: उपयोग जरूर करना चाहिए ताकि इसका लाभ सबों को मिल सके। और आज की जानकारी यही।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे कंपोस्ट बनाने की विधि पर, जानकारी दे रही थी सुनीता अग्रवाल। अब समय हो चुका है तुलसीदास रचित श्री रामचरित मानस गान का, ये सुनते ही कड़ी संख्या 150।
2: एपिसोड नंबर 150।

वन गमन के लिए विदा लेने आए हुए पुत्र के वचन सुनकर माता कौशल्या स्तब्ध रह गई हैं। आसन्न पुत्र वियोग उनके सम्मुख एक भीषण दुविधा बनकर खड़ा हो गया है। न तो वे श्री राम को अपने पास रख सकती हैं, न ही वन जाने की आज्ञा दे पाती हैं। एक ओर धर्म तथा दूसरी ओर ममता ने ऐसा धर्म संकट उपस्थित कर दिया है जिससे त्राण पाना कठिन है, किंतु विजय कर्तव्य रूपी धर्म की होती है। धैर्य ममता के प्रवाह में अडिग खड़ा होकर कहता है, पिता की आज्ञा का पालन ही सबसे बड़ा धर्म है। राज्य देने के स्थान पर पिता ने वनवास दे दिया, इसका मुझे तनिक भी दुख नहीं है। किंतु भरत, स्वयं महाराज तथा प्रजाजन क्या तुम्हारा वियोग सहन कर सकेंगे? हे तात, यदि केवल पिता की आज्ञा हो तो माता को उनसे अधिक मान और महत्व देकर वन को न जाओ, किंतु यदि माता और पिता दोनों ने वन गमन के लिए कहा है तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है।

अभी आप सुन रहे थे तुलसीदास रचित श्री रामचरित मानस कांड, और अब समय हो चुका है चिंतन कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं चिंतन, विषय है सृजनात्मकता।

रचनात्मकता वह स्थिति है जिसके तहत मनुष्य की ऐसी सकारात्मक सोच और क्षमता उजागर होती है जो न सिर्फ व्यक्ति विशेष बल्कि पूरे समाज के लिए हितकारी होती है। अक्सर यह माना जाता है कि लेखक, पत्रकार, चित्रकार, आविष्कारक ही सृजनात्मक गतिविधियों से जुड़े होते हैं, पर जिस व्यक्ति के क्रियाकलाप लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होते हैं उसका स्वभाव रचनात्मक ही होता है, जबकि नकारात्मक सोच का व्यक्ति सुचारू रूप से चलने वाले कामों में हमेशा रोड़े ही अटकाता है। क्रिएटिविटी किसी भी समस्या को सुलझाने का नैसर्गिक तरीका है। सृजनात्मकता जन्मजात प्रतिभा कम, निरंतर रचनात्मक कार्यों में संलग्न रहने की प्रक्रिया ज्यादा है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है, सृजनात्मक क्षमता हरेक के अंदर होती है लेकिन उसको मूर्त रूप केवल पुरुषार्थी ही दे पाता है। रचनात्मक व्यक्ति के चित्त में शांति विद्यमान रहती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह स्वार्थ से ऊपर उठकर जनहित के लिए काम करता है। सेवा भाव से प्रेरित होकर कार्य करने से उसकी आत्मबल में वृद्धि होती है। अंतःकरण में अस्थाई शांति का वास होता है। क्रिएटिव व्यक्ति के विचार हमेशा सात्विक और पवित्र होते हैं जिससे उसके हृदय में उद्विग्नता पनप नहीं पाती। आत्मद्वंद से बचना हर कोई चाहता है। हर व्यक्ति कामना करता है कि उसके जीवन में शांति आए। इसके लिए उसे अपने हितों की पूर्ति की बजाय दूसरों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सृजनात्मकता का सहारा लेना होगा। शांतिमय जीवन के लिए रचना बेहद जरूरी है। क्रिएशन जीवन का ऐसा सूत्र है जो चित्त को समुद्र की तरह शांत कर देता है। यदि किसी व्यक्ति का चित्त दुखी है तो समझ लेना चाहिए कि उसने जीवन में लेश मात्र भी सृजन नहीं किया है।

अभी आप सुन रहे थे चिंतन कार्यक्रम, विषय था सृजनात्मकता। समय हो चुका है भक्ति संगीत के दैनिक कार्यक्रम आराधना का। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अनूप चलोटा को।

0: इस भक्ति गीत के साथ ही आज के भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना अब यहीं समाप्त होता है। समय हो चुका है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं डॉक्टर त्रिभुवन प्रसाद वर्णवाल से ली गई भेंट वार्ता, बढ़ता स्क्रीन टाइमिंग और आंखों पर पड़ता दुष्प्रभाव। भेंट करता है श्री संजीव कुमार लाल।
1: मित्रों, आज के समय की यदि हम बात करें तो जमाना मोबाइल का है। हर समय हम मोबाइल के सहारे रहते हैं, सर्फिंग करते हैं और ज़्यादातर समय हमारा मोबाइल पर निकलता है। ज़्यादा समय तक यदि हम मोबाइल देखते हैं तो आँखों में बहुत सारी परेशानियाँ होना शुरू हो जाती है। और ख़ासकर हम बात करें छोटे छोटे बच्चों में, जिन्हें मोबाइल की लत लगी हुई है, वो मोबाइल देखते रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं, उनमें भी आँखों की विकृतियाँ उत्पन्न होने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। तो लगातार स्क्रीन टाइमिंग से क्या समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, आंखों पर क्या प्रभाव पड़ता है और खासकर बच्चों पर हम किन किन बातों का ध्यान रखें, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर त्रिभुवन प्रसाद बर्णवाल। डॉक्टर साहब स्वागत।
2: नमस्कार।
1: डॉक्टर साहब, आए दिन हर समय लोग मोबाइल से चिपके रहते हैं, आँखों में जलन, माथे में दर्द और भी अनेक समस्याएँ उत्पन्न होने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं।
2: देखिए, एक बात तो है कि अभी के समय में बिना मोबाइल का आप कल्पना नहीं कर सकते, ये बच्चे से लेके बूढ़े तक सबके लिए सम्मिलित है। लेकिन मोबाइल के साथ साथ इसकी जो खामियां हैं वो भी आपके सामने है और हर घर में सभी लोग इससे परेशान हैं। इसका मुख्य कारण है आप आँख को बिना पलक झपकाए एक टक देखते हैं, उसके कारण कॉर्निया ड्राई होता है। और मेन कारण कॉर्निया ड्राई होना ही है, बाकी आँखों के लक्षण का। तो अगर हम आँख को ड्राई होने से बचा सकते हैं तो फिर मोबाइल कोई हानि की चीज़ नहीं है। लेकिन अगर हम नहीं बचा पाते हैं और लगातार स्क्रीन टाइम पौन घंटे, एक घंटे या उससे अधिक होता है, तो उसकी जो भी खामियाँ हैं उसे हम पाते हैं, देखते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, शुरू में तो लगता है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धुंधलापन बढ़ने लगता है। अगर हम उसका पावर टेस्ट करते हैं तो देखते हैं उसका विज़न 6x6 नॉर्मल विज़न है, लेकिन उसे शिकायत है कि हमें धुंधलापन हो रहा है। इसका अगर आप हिस्ट्री और लेंगे तो दो बातें मिलती हैं। एक तो मिलता है कि वह

0: व्यक्ति या बच्चा मोबाइल का उपयोग अधिक कर रहा है और दूसरा उसका खान पान प्रॉपर नहीं है। ये दोनों खामियां हैं, खान पान प्रॉपर नहीं होना और मोबाइल का देखना, ये दोनों उसकी आँख की परेशानी का मुख्य कारण है। और छोटे बच्चों में तो इसका और अधिक प्रभाव पड़ता है और उसी कारण लगता है माँ बाप को कि आँख पे पावर आ गया है। और हमारी प्रैक्टिस में हम पाते हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चे को लेकर आते हैं दिखाने के लिए, उन्हें लगता है कि डॉक्टर साहब देखेंगे, चश्मा लिख देंगे, ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक उसके लिए आवश्यक प्रिकॉशन नहीं लेगा या बच्चे नहीं लेंगे, तब तक उन्हें जितना आराम मिलना चाहिए वो नहीं आराम होगा। तब दो तीन बातें हैं, एक तो है एक्सेसिव यूज ऑफ स्क्रीन। कई बार जैसे बैंकिंग सर्विसेज में, ऑफिशियल में, आजकल मैक्सिमम लोग सब नेट से ही काम होता है, बैंक मोबाइल और लैपटॉप से ही काम होता है, तो ये प्रैक्टिकल है कि उन्हें काम करना है। लेकिन ये भी प्रैक्टिकल है कि वो काम अगर लगातार कर रहे हैं बिना प्रिकॉशन लिए, तो उनका लाइफ स्कैन, आई का लाइफ स्कैन काफ़ी हद तक कम जाएगा। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि हर 45-50 मिनट में वो 2-5 मिनट गैप करें, उस गैप में आप स्क्रीन से अपने आप को हटाएं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे आप देहात में कहते हैं आँख मारना, तो दैट इज कॉल्ड ब्लिंकिंग। तो दैट मीन्स कि आप गेजिंग या टक एक टक ताकना, उसे आपको अवॉइड करना है। आप कोशिश करिए कि ब्लिंक करते रहिए बीच में, तो कॉर्निया ड्राई नहीं होगा और आपको आँख में पेन नहीं होगा। दूसरी और इम्पॉर्टेंट है कि जब बच्चों से हम पूछते हैं कि उसका विजन नॉर्मल है, उसके बाद भी दिख नहीं रहा है, तो अगला क्वेश्चन मुझे ये रहता है कि क्या खा के आए हो, तो उसके गार्जियन कभी हंसता है, कभी बच्चा भी हंसता है, और नहीं बोल पाता है तो माँ को देखता है क्या खाए हैं, नहीं पता है। तो जब और डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं, जब उसको ये समझाते हैं कि खाना आपका उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना चश्मा टेस्ट करवाना, तब पाते हैं कि या तो चाय रोटी खा कर आया है, या पास्ता खा कर आया है, या फास्ट फूड खा कर आया है, और ये लगातार खाता रहता है। तो बीच में हमारी सलाह उन लोग की रहती है कि भाई ठीक है, तुम सब खाओ, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो भी फल पसंद है उसको खाओ, जो भी सब्जियाँ पसंद है उसको खाओ, और अगर नहीं पसंद है तो माँ को बोलते हैं कि भैया गाजर टमाटर और इस टाइप का जो भी है उसको पीस के पिला दो बच्चे को, कोई उपाय नहीं है उसका। और कई बार ये नौबत बच्चे तैयार नहीं होता है, लेकिन हम मानते हैं कि अभी बच्चे इतने तेज हैं कि प्रॉपर काउंसलिंग अगर उनका किया जाए तो मोस्ट ऑफ दी पर्सन तैयार हो जाते हैं बच्चे। लेकिन काउंसलिंग करने की आवश्यकता है। आज के समय काउंसलिंग ना डॉक्टर के पास समय है, ना माँ बाप के पास समय है। उन्हें भी लगता है कि आसानी से मोबाइल दे दो, बच्चा अपना इंगेज हो गया, अब अपना काम करते रहो। तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जो 6 महीना, साल, 2 साल, 3 साल के बाद आपको दिखाई पड़ने लगता है। हमारी अपनी मान्यता है और अनुभव है कि सारे ऑफिशियल्स स्टाफ से काम चाहते हैं। आप अपना काम करते रहिए, अगर 5 मिनट 7 मिनट जो करते हैं ना, कहीं कोई पूछने नहीं जा रहा है। ये प्रॉब्लम तब होता है जब आप काम नहीं करते हैं, फाकी मारते हैं। तो दूसरा कि आप अगर ब्रेक करना है और नहीं मिल रहा है, थोड़ा बीच में पानी पी लें, कभी काम टॉयलेट चल जाएं, बाथरूम चल जाएं, एक आध अपने दोस्त से 1 मिनट बात कर लें, इस तरह करके हम टाइम को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद एक और पाते हैं कि अभी नए युग में, चूँकि सरकारी जॉब बहुत कम है, लेकिन नया जनरेशन जॉब के पीछे पागल है। हम देखते हैं कि 28 साल, 30 साल, 32 साल हो गया है, लड़कियां लड़के बहुत क्या कर रहे हैं, हम तैयारी करें, क्या चीज़ तैयारी करें, कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं। कैसे तैयारी कर रहे हैं, तो मोबाइल पे, क्यों अधिकांश घरों में लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं होता है। तब पूछते हैं फिर नेक्स्ट रात को क्या कैसे करती हो, सो के पढ़ती हो, सो के पढ़ते हो, तो हाँ सर। तो उस हालत में उनके लिए सलाह होता है कि तुम कोशिश करो एक टाइम मेंटेन करने का, फिक्स टाइम पे सो, फिक्स टाइम पे उठो, और सो कर नहीं बैठ कर मोबाइल देखो, बीच में इंटरप्शन। तो इस तरह करें, कोशिश करते हैं उन लोग कंसल्ट करने का, कोशिश समझाने का, अधिकांश केस में रिजल्ट मिलता है। ऐसे मरीज का दो शिकायत होती है, एक होता है आँख में दर्द, दूसरा होता है माथे में दर्द। और जब हम स्क्रीन टाइम कम करते हैं, चेंज करते हैं, तो इनकी शिकायत अपने आप ठीक हो जाती है। प्लस कुछ लोग का जेन्युइनली ड्राई आई सिंड्रोम होता है, जिसमें उसका आंसू कम बन पाता है। तो ऐसी स्थिति में हम बाहर से आंसू जोड़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल टीयर, और वो हम डालते हैं जिससे कॉर्निया हमारा वेट भींगा हुआ रहे। इस तरह हम मरीज को समझाते हैं, कंप्लेंट करते हैं, दूर करते हैं उसके से।
1: जी डॉक्टर साहब, प्राय लोग सोने के समय रात में मोबाइल देखते हैं और खासकर अंधेरे में मोबाइल देखते हैं रातों में, ये कितना नुकसान पहुंचाता है हमारे?
0: ये बहुत नुकसानदेह है।
2: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के तहत आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे बढ़ते स्क्रीन टाइमिंग और आंखों पर बढ़ते दुष्प्रभाव पर। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर त्रिभुवन प्रसाद बर्नवाल, भेंट करता थे श्री संजीव कुमार लाल। इसके साथ ही यह कार्यक्रम अभी यहीं समाप्त होता है। आइए समाचारों के लिए हम आपको दिल्ली केंद्र लिए चलते हैं, जहाँ से आप सुनेंगे संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने सार्धैकवादनतः भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। अन्ते क्रीडावार्तासु, बैंकॉक नगरे थाईलैंड ओपन बैडमिंटन क्रीडामालिकायाः पुरुषयुगलवर्गीये निर्णायकद्वन्द्वे अद्य भारतस्य सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी च इंडोनेशिया देशस्य लियो रॉली कार्नांडो डेनियल मार्थिनाभ्याम स्पर्धिष्येते। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रौ कोलकाताया ईडन गार्डन्स क्रीडांगणे आयोजिते द्वन्द्वे कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन गुजरात टाइटन्स दलम् ऊनत्रिंशत् धावनांकैः पराजितम्। आदोपणं विजित्य गुजरात टाइटन्स दलं क्षेत्ररक्षणं कर्तुं निर्णीतवत्। अद्यतने द्वन्द्वद्वये प्रथमं धर्मशालायाम् अपराह्णे सार्धत्रिवादने पंजाब किंग्स दलं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन स्पर्धिष्यति, ततः सायं सार्धसप्तवादने दिल्ल्यां दिल्ली कैपिटल्स दलं राजस्थान रॉयल्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच हेग के व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। यह यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिन बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से बढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति मुक्त से प्रतिबंधित में संशोधित कर दी गई है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। विभाग के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि हिंदुओं को अपनी प्राचीन परंपराओं के अनुसार परिसर में पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति होगी। उच्च न्यायालय ने इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को रद्द कर दिया था जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर

के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में गुजरात टाइटंस 4 विकेट पर 218 रन ही बना सका। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु से होगा। दिल्ली में शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कार्नेडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने कल सेमीफाइनल में मलेशिया के गो ज़ीफेई और नूरुज़्ज़ीन को हराया था। मौसम विभाग ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में ऐसी ही स्थिति रहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: tax on aviation turbine fuel in the national capital from 25% to 7%. Delhi Chief Minister Rekha Gupta said that the decision has been taken in line with Prime Minister Narendra Modi's emphasis on strengthening connectivity and economic activity with the objective of providing relief to the aviation sector, promoting tourism and logistics activities. And in badminton, the Indian duo Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty will face the Indonesian pair of Leo Rolly Carnando and Daniel Martin in the men's doubles final of Thailand Open in Bangkok today. And that is the end of this news bulletin.
1: हमारे दिल्ली केंद्र से अभी आप सुन रहे थे समाचार। समाचारों के बाद स्वागत है आपका। पेश है कार्यक्रम विवरण। अब से बस कुछ ही पलों के बाद 7:15 पर बच्चे सुनेंगे अपना साप्ताहिक कार्यक्रम बाल सभा। 7:30 का समय होगा शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम और राग रंग का। आज के कलाकार हैं श्रीमती सिद्धेश्वरी देवी, जिनसे आप सुनेंगे ठुमरी खमाज। सुबह के 8:00 समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। 8:30 पर हमारे रांची केंद्र से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 8:45 पर फिल्म गीतों का कार्यक्रम होगा गीत गुंजन। सुबह के 9:00 हम हाजिर होंगे आपके लिए लेकर कार्यक्रम जोहार पलामू। सुबह के 9:30 पर कुछ फिल्म गीतों के साथ हम आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे। सुबह के 10:00 दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार, 10:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 10:10 पर मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम रिले होंगे।

दिन के 1 बजे दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 1:05 पर अंग्रेजी समाचार और 1:10 पर रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार। 1:20 पर पुनः मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम जारी होंगे। दिन के 2 बजे समाचारों के लिए हम आपको दिल्ली लिए चलेंगे, जहां से आप सुनेंगे अंग्रेजी और हिंदी में समाचार। 2:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम पुनः जारी होंगे। 2:55 पर रांची केंद्र से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 3 बजे मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे मन चाहे गीत। 4 बजे रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार। 4:02 पर मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम। शाम 5 बजे रांची केंद्र से आप सुनेंगे प्रादेशिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार और 5:02 पर मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम। पुनः कार्यक्रम विवरण के साथ हम आपकी सेवा में उपस्थित होंगे शाम 5:30 पर और 5:35 पर युवाओं को संबोधित कार्यक्रम होगा युवावाणी। चर्चा होगी युवाओं में पलायनवाद की समस्या और विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस पर। चंद्रशेखर कुमार की वार्ता आप सुनेंगे अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम। शाम 6 बजे रांची केंद्र से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 6:02 पर खेती बाड़ी कार्यक्रम और 6:30 पर ग्रामीण महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम जननी। शाम 7 बजे रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले होंगे। 7:10 पर जिले में आजकल।

शाम 7:15 पर आप सुनेंगे स्वरांजलि कार्यक्रम। कलाकार होंगी आबिदा। 7:45 पर लोकगीतों का कार्यक्रम होगा महुआ। कलाकार होंगे भरत सिंह भारती और उनके साथी। रात्रि 8 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा चित्रपट से। 8:30 पर आप सुनेंगे गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत संगीत। कलाकार होंगे सोनू निगम। रात्रि 8:45 पर दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। रात्रि 9 बजे अंग्रेजी में समाचार और 9:15 पर दिल्ली केंद्र से उर्दू में समाचार रिले होंगे। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। रात्रि 10 बजे हमारे स्टूडियो से कार्यक्रम होगा रजनीगंधा। रात्रि 11 बजे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार और हमारी सभा की समाप्ति होगी रात्रि के 11:10 पर।

सभी बच्चों को हमारा नमस्कार, सुप्रभात। बच्चों, आज हम बात करेंगे आपकी लिखावट पर, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपके स्वास्थ्य की बातें हम हमेशा करते हैं और आपके जीवन में खेल कूद के महत्व पर भी हम कई बार बातें कर चुके हैं और करते ही रहते हैं। लेकिन आज आपकी हैंडराइटिंग की बात हम करेंगे, आपकी लिखावट की बात करेंगे। बचपन में अच्छी लिखावट का महत्व सिर्फ सुंदर दिखने तक सीमित नहीं होता है बच्चों, बल्कि यह आपके समग्र विकास, सोचने की क्षमता और शैक्षणिक सफलता की नींव है। यह आपके मानसिक और शारीरिक विकास को बढ़ावा देती है। बच्चों के जीवन में लिखावट के बहुत लाभ हैं। याददाश्त और सीखने की क्षमता में वृद्धि होती है। हाथ से लिखने पर दिमाग के कई हिस्से सक्रिय होते हैं। शोध बताते हैं कि टाइप करने की तुलना में हाथ से लिखने से आपकी जानकारी बेहतर तरीके से याद होती है और शब्दावली और वर्तनी में भी सुधार होता है। सूक्ष्म मोटर कौशल का भी विकास होता है। लिखते समय उंगलियों और हाथों की मांसपेशियों का उपयोग होता है, जिससे हाथ और आँखों का बेहतर समन्वय यानी हैंड आई कोऑर्डिनेशन स्थापित होता है और आपका शारीरिक नियंत्रण भी बढ़ता है। शैक्षणिक प्रदर्शन में भी सुधार होता है। साफ और स्पष्ट लिखावट बच्चों को स्कूल में तेजी से नोट्स बनाने और परीक्षाओं में उत्तर स्पष्ट रूप से लिखने में मदद करती है। इससे शिक्षकों को कॉपी जांचने में आसानी होती है, जिसका सीधा असर आपके अंकों पर यानी कि आपके मार्क्स पर पड़ता है। साथ ही आपके आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी होती है। जब बच्चे स्पष्ट और सुंदर लिखते हैं तो उन्हें प्रशंसा मिलती है और उनके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को मजबूती प्रदान करती है। खराब लिखावट कभी कभी बच्चों में हीन भावना पैदा कर सकती है। विचारों की अभिव्यक्ति भी आप अच्छे ढंग से कर सकते हैं। अच्छे लिखावट के माध्यम से विचार अधिक व्यवस्थित और रचनात्मक रूप से सामने आते हैं। जब लिखावट सहज और स्वचालित हो जाती है तो बच्चा विषय वस्तु यानी कंटेंट पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है बच्चों कि आप अपनी लिखावट पर ध्यान दें, और जब आपकी लिखावट अच्छी होगी, जब आपकी लिखावट सुंदर होगी, तो आपको आपके टीचर से भी काफ़ी प्यार मिलेगा, आपको स्नेह मिलेगा और टीचर आपको अप्रिसिएट करेंगे यानी आपकी तारीफ़ करेंगे। और अपनी तारीफ़ सुनना भला किसे नहीं अच्छा लगता। तो जब आप अपनी लिखावट में सुधार कर लें तो आप औरों को भी यानी और अपने सहपाठियों को और बच्चों को भी इसके लिए प्रेरित करें, क्योंकि अच्छी लिखावट से आपका जो आत्मविश्वास है, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो काफ़ी हद तक बढ़ता है। तो आपको अच्छी लिखावट के लिए बार बार अभ्यास भी करना चाहिए। सुपाठ्य लिखावट जो है, जिसे सहजता से, तेजी से और कम सचेत प्रयास से लिखा जा सके। बच्चे को लेखन की रचना और विषय वस्तु के उच्च स्तरीय पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने में भी सक्षम बनाती है। अच्छी लिखावट से आपकी बातें आराम से सभी के समक्ष आती हैं। अक्षरों का आकार, चौड़ाई और ऊंचाई, यह सभी अच्छी लिखावट की प्रमुख विशेषताएं हैं। छोटे अक्षर समान आकार के होने चाहिए, जबकि बड़े अक्षर आमतौर पर ऊंचे होते हैं। चौड़े अक्षर कम एकाग्रता और तेज लेखन का संकेत दे सकते हैं, जबकि संकरे और छोटे अक्षर धीमे लेखन का संकेत देते हैं। छोटे बच्चों को चाहिए कि अपनी लिखावट सुधारें यानी बार बार लिखने का अभ्यास करें। स्पेसिंग टूल का उपयोग करें। एक शब्द लिखने के बाद बच्चे से स्टिक को एक सिरे से सीधे ऊपर नीचे लिखने को कहें, फिर स्टिक के दूसरे सिरे से अगला शब्द लिखना शुरू करें। अपने बच्चे से कहना चाहिए अभिभावकों को कि वे स्टिक को सजाएं और जैसा कि ऊपर चेहरा बनाएं या कोई बढ़िया सा स्टिकर चिपकाएं। बच्चों में लेखन का विकास धीरे धीरे होता है। पहले बच्चे टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं बनाते हैं, नकली अक्षर लिखते हैं, फिर अक्षरों की श्रृंखलाएं बनाते हैं और मनगढ़ंत वर्तनी लिखते हैं। धीरे धीरे बच्चे सुपाठ्य शब्द लिखने लगते हैं और अंततः सुसंगत वाक्य लिखने लगते हैं। इस विकास का अवलोकन लक्षित हस्तक्षेपों में सहायक होता है और क्रमिक प्रगति का जश्न भी होता है। जब बच्चे अच्छा लिखने लगे तो अभिभावकों को चाहिए, टीचर्स को भी चाहिए कि उनकी हौसला अफजाई जरूर करें। सुंदर हस्तलेखन एक अमिट छाप छोड़ता है बच्चों, चाहे वह नोट्स लिखना हो, भावपूर्ण पत्र लिखना हो या किसी महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना हो। बच्चों के लिए स्पष्ट और सुंदर लिखावट विकसित करना संचार को बेहतर बनाता है। इससे संज्ञानात्मक कौशल, स्मृति और सूक्ष्म शारीरिक क्रियाशीलता में सुधार होता है। अच्छे लेखन के कई गुण हैं। इस
बात से पता चलता है कि अच्छे लेखन में 6 प्रमुख तत्व होते हैं, विचार, संगठन, शैली, शब्द चयन, वाक्य प्रवाह और लेखन के नियम। यह प्रमुख घटक शिक्षकों और छात्रों को भी सभी प्रकार के लेखन की रचना, संशोधन और मूल्यांकन करने के लिए एक सामान्य समझ प्रदान करते हैं। लिखावट आदमी के व्यक्तित्व को भी दर्शाती है, इसलिए जब आपकी लिखावट सुंदर होगी तो आपका व्यक्तित्व भी सुंदर होकर निखर कर सभी के सामने आएगा। तो आप अपनी लिखावट पर ध्यान दें, बार बार अभ्यास करें। अगर डेली आप एक पेज हिंदी, एक पेज इंग्लिश लिखना शुरू करते हैं और राइटिंग सुंदर रखते हैं अपनी, तो धीरे धीरे आपकी राइटिंग और भी बेहतर से बेहतर होती जाएगी और आप सुंदर लिखावट के रूप में अपनी क्लास में जाने जाएंगे और आपको अपने अभिभावकों का, अपने टीचर्स का प्यार मिलेगा। तो आइए एक बाल गीत सुनते हैं

बच्चों गीत आपने सुना, और जब भी कभी आपको समय मिलता है बच्चों, तो अपनी पढ़ाई के अलावा जब भी आप कभी फ्री होते हैं तो आप अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर एक किचन गार्डन जरूर अपने अपने घरों में बनाएं। और किचन गार्डन से जब आप जुड़ते हैं तो आपको प्रकृति से जुड़ने का अवसर मिलता है, स्वस्थ आदतें सीखने और व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने का शानदार माध्यम है किचन गार्डन। यह बच्चों को समझने में मदद करता है कि उनका भोजन कहाँ से आता है, जिससे कि आप में फल सब्जियों के प्रति रुचि भी बढ़ती है। बच्चों के लिए किचन गार्डन क्यों लाभदायक है, क्यों महत्वपूर्ण है, आइए इसकी बात करते हैं। इससे स्वस्थ खान पान की आदतें बनती हैं। जो बच्चे खुद सब्जियां उगाते हैं वे अक्सर उन्हें शौक से खाते भी हैं, क्योंकि हमने देखा है कई बच्चों को हरी सब्जियां खाने में वे आनाकानी करते हैं। तो क्या होता है कि जब आप किचन गार्डन खुद तैयार करते हैं तो इससे हरी सब्जियों और पोषक तत्वों के प्रति आपकी झिझक खत्म होती है। व्यवहारिक विज्ञान यानी प्रैक्टिकल लर्निंग भी आपको सीखने के लिए मिलता है। पौधे उगाने की प्रक्रिया बच्चों को जीवन चक्र, मिट्टी, पानी और धूप के महत्व को समझने में मदद करती है। बीज को गिनना या पौधे की लंबाई मापना उनके गणित और अवलोकन कौशल को बढ़ावा देता है। जिम्मेदारी की भी भावना इससे आती है। पौधों की नियमित देखभाल करना जैसे कि पानी देना, निराई करना बच्चों में धैर्य और जिम्मेदारी का गुण विकसित करती है। शारीरिक गतिविधि और मानसिक विकास भी इससे होता है। मिट्टी और पौधों के बीच समय बिताने से अर्थात कि बागवानी करने से एक बेहतरीन आउटडोर गतिविधि आपको मिलती है, जो कि आपके मानसिक तनाव को कम करती है और आपको प्रकृति के करीब लाती है। शुरुआत कैसे करें इसकी बात करते हैं बच्चों। बच्चों के लिए बागवानी को मज़ेदार बनाने हेतु तो आप छोटे गमलों, ग्रो बैग्स या घर की बालकनी, छत में आसानी से उगने वाली सब्जियां जैसे कि धनिया, पुदीना, टमाटर, पालक या भिंडी से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। बागवानी के लिए बच्चों के अनुकूल छोटे टूल्स और किट्स भी बाज़ार में उपलब्ध हैं, तो उसका इस्तेमाल करके बच्चे चाहे तो छोटी मोटी बागवानी यानी किचन गार्डन अपने घर में लगा सकते हैं, अपनी बालकनी में लगा सकते हैं या अपने घर की छत पर लगा सकते हैं। क्योंकि पहले घर बड़े हुआ करते थे, आंगन हुआ करता था, आगे पीछे जगह होती थी, बाड़ी होती थी, तो उसमें फल या सब्जियां उगाई जाती थी। लेकिन आजकल जगह का अभाव है, फ्लैट सिस्टम है, अपार्टमेंट कल्चर है, तो इसमें जगह की कमी होती है। तो ऐसे में आप गमलों में चाहें तो किचन गार्डन को लगा सकते हैं और ताज़ा फल सब्जियों का आप आनंद उठा सकते हैं और इससे आपको बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिलता है। तो इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद बच्चों आपको आइए सुनवाती हूँ कार्यक्रम का अगला गीत।

इस गीत के साथ ही आज के बाल सभा कार्यक्रम का समय अभी यही समाप्त होता है। अब समय हो चुका है शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रंग का। आइए इस कार्यक्रम में सुनते हैं श्रीमती सिद्धेश्वरी देवी को राग ठुमरी समाज।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रंग। आज की कलाकार थी श्रीमती सिद्धेश्वरी देवी। आप सुन रहे थे ठुमरी खमाज। इसके साथ ही यह कार्यक्रम अभी यहीं समाप्त होता है। आइए समाचारों के लिए हम आपको दिल्ली के नजरिए चलते हैं, जहां से आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज सुबह के 8:30 बजे। आज केंद्र से प्रादेशिक समाचार। हम पुनः आपसे मुखातिब होंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
1: और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री
0: के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक
1: साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त।
0: प्रधानमंत्री मोदी दो दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टर्बाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच हेग में व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
2: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं, इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। ये यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का

0: संबोधन है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है जिससे वस्त्र लेदर इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
2: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
3: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
2: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
1: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली और भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य पार्टी के नेताओं ने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि कई राज्यों की यात्रा के दौरान समिति आपत्तियां और सुझाव एकत्रित कर है। इससे जुड़ी चुनौतियों पर उन्होंने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा और दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान करना पड़ेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
7: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने कहा कि भोजशाला एक मंदिर होने के साथ साथ संस्कृत भाषा, व्याकरण और साहित्य के अध्ययन और अनुसंधान का केंद्र भी है। हिंदू समाज को प्राचीन परंपरा के अनुसार माँ देवी सरस्वती की पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए इस परिसर में बिना किसी रोक टोक के आने का अधिकार होगा। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उस 7 अप्रैल 2003 के आदेश को भी रद्द कर दिया जिसमें मुस्लिम समुदाय को हर शुक्रवार भोजशाला परिसर में नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मुस्लिम समुदाय जिले में मस्जिद निर्माण के लिए अलग जमीन के आवंटन के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में पुणे से एक अन्य अभियुक्त प्रोफेसर मनीषा मंधारे को गिरफ्तार किया है। वे पुणे के एक कॉलेज में वनस्पति शास्त्र के अध्यापक हैं। सीबीआई के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मंधारे को परीक्षा प्रक्रिया में विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। इससे पहले सीबीआई ने 14 मई को पुणे से ही मनीषा वाघमारे को गिरफ्तार किया था। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अध्यादेश 2026 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को

33 से बढ़ाकर 37 करने की मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया है। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है।

0: प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: जी लवलीन, खेल खबरों में सबसे पहले बात बैडमिंटन की। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। और अगर बात करें टेनिस की तो भारत के सिद्धांत बंथिया और बुल्गारिया के अलेक्जेंडर डोंस्की की जोड़ी ने पुर्तगाल में ओइरास 4 ATP चैलेंजर 100 टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। और टेनिस में ही इटली ओपन टूर्नामेंट में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज सिनर का सामना कैस्पर रूड से होगा। उधर बेंगलुरु में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले टीम की तैयारियों पर जोर दिया है। भारतीय टीम 26 से 30 मई के बीच पर्थ हॉकी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैच खेलेगी। और अगर बात करें क्रिकेट की तो IPL में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा और शाम 7:30 बजे से दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
0: मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान द्वीप समूह के कई हिस्सों और पूरे निकोबार द्वीप समूह में आगे बढ़ चुका है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून के 26 मई को केरलम तक पहुंचने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हिमालय के तराई क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दशक को आपदाओं का दशक बताते हुए इस स्थिति को बदलने की अपील की है। लोक सत्य की सुर्खी है, मानवता के सामने कई बड़ी चुनौतियां, हालात नहीं बदले तो गरीबी के दलदल में फंसेगी दुनिया। प्रधानमंत्री की चेतावनी शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है, एक ऐसे समय जब भारत पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों लोगों को गरीबी से उबारने में सफल हुआ है, तब इससे अधिक चिंता की बात कोई और नहीं हो सकती कि फिर से न सिर्फ भारतीयों के बल्कि पूरी दुनिया के सामने आर्थिक संकट तेजी से बढ़ रहा है। भोजशाला में अब बिना रोक टोक के 365 दिन हो सकेगी पूजा। दैनिक जागरण ने इसे पहली खबर बनाते हुए लिखा है, प्रवेश और पूजा की नई व्यवस्था, भोजशाला में लौटा आस्था का उल्लास। नीट UG पेपर लीक मामले में दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, रक्षक ही भक्षक। पत्र के अनुसार NTA ने 4 नए अफसरों की नियुक्ति हुई, कथित सरगना कुलकर्णी को 10 दिन की हिरासत में भेजा। नवभारत टाइम्स की खबर है, जुलाई से CBSE के अंतर्गत 9वीं और 10वीं के विद्यार्थी पढ़ेंगे तीसरी भाषा, इनमें 2 भारतीय भाषाएं अनिवार्य होंगी। पत्र के अनुसार नए नियम 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएंगे। आज विश्व दूर संचार दिवस पर राजस्थान पत्रिका लिखता है, धरती के संसाधनों को निचोड़ रहा आपके फोन में पड़ा डार्क डेटा। पत्र के अनुसार हर दिन अनावश्यक फाइल और चैट से बढ़ रहा है डार्क डेटा, जिसे संभालने में खर्च हो रही है बिजली और पानी। मॉनसून के अंडमान पहुंचने की खबर हिंदुस्तान में है। पत्र के अनुसार अगले हफ्ते दक्षिण पूर्वी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के आसार।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टर्बाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Have a nice day.
1: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं।
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र से जनगणना में अलग सरना धर्म कोड की मांग दोहराते हुए कहा, आदिवासी समाज की पहचान के लिए अलग धर्म कोड जरूरी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन किया अनिवार्य। जेईई एडवांस्ड परीक्षा को लेकर रांची में निषेधाज्ञा लागू। परीक्षा के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति। पलामू, गढ़वा और लातेहार को छोड़ राज्य के अन्य जिलों में आज और कल मेघ गर्जन के साथ होगी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला हॉकी के विकास में योगदान के लिए नीदरलैंड के कोच की सराहना। देशवासियों से भारतीय टीम के समर्थन की अपील। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र से अपील करते हुए कहा है कि देश के करोड़ों आदिवासी समाज के लोगों के अस्तित्व, आस्था, संस्कृति और पहचान के सम्मान के लिए अलग सरना धर्म कोड जरूरी है। अपने सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि जनगणना में आदिवासी समाज को अलग आदिवासी या सरना धर्म कोड मिलना चाहिए ताकि उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को उचित मान्यता मिल सके। जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत झारखंड में घर घर सर्वे का कार्य शुरू हो गया। पहली बार डिजिटल माध्यम से हो रही इस जनगणना में स्वगणना के बाद प्रगणक और पर्यवेक्षक घर घर जाकर मकान सूचीकरण और मकानों की गणना करेंगे। यह अभियान 14 जून तक चलेगा। जनगणना निदेशालय के अनुसार राज्य के 24 जिलों में इस कार्य के लिए लगभग 65,000 प्रगणक और 10,858 पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। पहले चरण में मकानों की गिनती, मकानों को नंबर देने और नक्शा तैयार करने का कार्य किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा। जिला प्रशासन ने जेईई एडवांस परीक्षा 2026 के शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त आयोजन को लेकर रांची के परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू की है। यह आदेश आज सुबह 6 बजे से रात 9:30 बजे तक प्रभावी रहेगा। जिला प्रशासन के अनुसार शहर के 2 परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में बीएनएसएस की धारा 163 के तहत प्रतिबंध लागू किया गया है। परीक्षा के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। सिमडेगा पुलिस ने ऑपरेशन रेड हंट के तहत कार्रवाई करते हुए पीएलएफआई के धनेश्वर यादव उर्फ कारगिल को रांची से गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ बैजू राव ने बताया कि वह बानो थाना का वारंटी है।
3: बानो थाना में एक पीएलएफआई के सक्रिय उग्रवादी संगठन के सदस्य करीब 10 वर्षों से फरार चल रहे थे, जिसे गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर उसे हिरासत में भेजा जा रहा है।
2: रांची में बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस ने अल्बर्टेका चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने पेट्रोलियम पदार्थों में मूल्य वृद्धि के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराया।
4: तक 5 राज्य में चुनाव हुआ तब तक किसी तरह का कोई वृद्धि नहीं हुआ। आज जैसे चुनाव खत्म हुआ 5 राज्य का रिजल्ट आया, जनाधन, पेट्रोल, डीजल, दूध आदि, सीएनजी में दाम बढ़ा रही है।
2: इधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों के संकट से पूरा विश्व जूझ रहा है। प्रधानमंत्री ने महंगाई पर काफी नियंत्रण किया हुआ है। पेट्रोलियम पदार्थों पर 115 देशों में मूल्य वृद्धि हुई है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक सैंडल, एटीआईआर न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक सैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य भर में वट सावित्री का पावन पर्व पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ कल मनाया गया। अखंड सौभाग्य और पति की लंबी उम्र की कामना के लिए महिलाओं ने निर्जला व्रत रखकर बरगद के वृक्ष की पूजा अर्चना की। महिलाओं ने आज सुबह पारण कर व्रत पूरा किया। कोडरमा थाना क्षेत्र के मिटको कॉलोनी में महिला की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। कोडरमा के एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
0: 14 मई 2026 को मिटको कॉलोनी में श्रीमती नेहा राज हत्या कर दिया गया। टोटल 2 अक्यूज हैं इस मर्डर के केस की। इसका कारण ये था कि जो मृतिका हैं उनके हस्बैंड शंभू राणा का इलिसिट अफेयर चल रहा था देवंती देवी के साथ। जब इसके बारे में देवंती देवी के हस्बैंड को पता चला तो उन्हें द्वेष के भावना में आके हत्या कर दिया गया।
2: मौसम विभाग के अनुसार 19 मई तक पलामू, गढ़वा और लातेहार में लू चलने की संभावना है। वहीं आज और कल राज्य के अन्य जिलों में बादल छाए रहने, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने तथा गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी के प्रति समर्थन और प्रोत्साहन व्यक्त किया है। नीदरलैंड्स के हेग दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने भारतीय महिला हॉकी के विकास में योगदान के लिए नीदरलैंड्स के मुख्य कोच सजोर्ड मार्जिने की सराहना की। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से इस वर्ष नीदरलैंड्स और बेल्जियम में होने वाले FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप में भारतीय टीम का समर्थन करने की अपील भी की।
5: जैसे क्रिकेट में भारतीयों का योगदान है, वैसे ही भारत की हॉकी में नीदरलैंड्स का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। डच कोचिज की भी मेहनत रही है। हमारी विमेन हॉकी टीम बीते कुछ समय से शानदार परफॉर्मेंस कर रही है। इसमें कोच मरीन का अहम रोल है कि वर्ल्ड कप जो भी कोई जीते, लेकिन इतना पक्का है कि इस ओलंपिक में भारत और नीदरलैंड की दोस्ती जरूर जीतेगी।
2: झारखंड स्टेट कबड्डी एसोसिएशन की विशेष आम सभा की बैठक आज सुबह 10 बजे से जमशेदपुर में आयोजित की जाएगी। झारखंड स्टेट कबड्डी एसोसिएशन ने बताया कि संगठनात्मक गतिविधियों और आगामी कार्यक्रमों को लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी। हजारीबाग जिला चेस एसोसिएशन द्वारा 4th HDC ऑल इंडिया ओपन फाइट रेटिंग टूर्नामेंट 2026 का आयोजन हजारीबाग में किया जा रहा है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय के मल्टीपर्पज हॉल में विधायक प्रदीप प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया, जिसमें देश भर से 800 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। टूर्नामेंट 2 चरणों में होगा। पहला चरण 20 मई तक ओपन वर्ग के लिए और दूसरा चरण 21 से 24 मई तक 1800 से कम रेटिंग वाले खिलाड़ियों के लिए होगा, जिसमें कुल 6,11,000 रुपए के पुरस्कार रखे गए हैं। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने बालूघाटों के लीज मंजूरी और नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तारी की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, नीट यूजी पेपर लीक मामले में महिला लेक्चरर गिरफ्तार। दैनिक भास्कर ने लिखा है, 6 बड़े बालूघाटों के लिए डीड फाइनल, मॉनसून से पूर्व रिकॉर्ड स्टॉक की तैयारी। हिंदुस्तान ने झारखंड के अदालतों में हाईब्रिड मोड में सुनवाई की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है, जेटेट से खुलेगा शिक्षकों के सहायक आचार्य बनने का रास्ता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र

ने जनगणना में अलग सरना धर्म कोड की मांग दोहराते हुए कहा, आदिवासी समाज की पहचान के लिए अलग धर्म कोड जरूरी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन किया अनिवार्य। जेईई एडवांस्ड परीक्षा को लेकर रांची में निषेधाज्ञा लागू। परीक्षा के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति। पलामू, गढ़वा और लातेहार को छोड़ राज्य के अन्य जिलों में आज और कल मेघ गर्जन के साथ होगी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला हॉकी के विकास में योगदान के लिए नीदरलैंड की कोच की सराहना की। देशवासियों से भारतीय टीम के समर्थन की अपील। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माई गॉड पर एक मेल भेजा। रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब, मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं। बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है क्या, हम कूड़ा कचरा उसमें डालें। और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था। मैं भरत जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुँचाई। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी की बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए, सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई न कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूँ।

समाचारों के बाद स्वागत है आपका। पेश है फिल्म की दुकान कार्यक्रम गीत गुंजन। आज के इस कार्यक्रम को हमने समर्पित किया है फिल्म निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा साहब को। प्रकाश मेहरा भारतीय सिनेमा के दिग्गज फिल्म निर्माता निर्देशक थे, जिन्होंने अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन की छवि देकर सुपरस्टार बनाया। जंजीर, मुकद्दर

का सिकंदर, शराबी, नमक हलाल जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। आज उनकी फिल्मों के गीत आपको सुनवाते हैं। कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं।

उत्तर प्रदेश के बिजनौर में जन्मे प्रकाश मेहरा का बचपन बहुत ही कठिनाइयों में बीता। जब वे केवल 5 साल के थे तब उनकी मां का निधन हो गया और 8 साल की उम्र में पिता भी घर से चले गए। इसके बाद उनका पालन रिश्तेदारों ने किया और वे दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में पले बढ़े। गरीबी के कारण उनकी शिक्षा जल्दी ही छूट गई, लेकिन फिल्मों में किस्मत आजमाने के लिए वे मात्र 13 रुपये लेकर मुंबई पहुंचे। शुरुआती संघर्षों के बाद उन्होंने प्रसिद्ध फिल्म निर्माता धीरूभाई देसाई के सहायक और बाद में प्रोडक्शन कंट्रोलर के रूप में काम किया। उन्होंने 1967 में फिल्म हसीना मान जाएगी के जरिए बतौर निर्देशक अपनी करियर की शुरुआत की। प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन की जोड़ी हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे सफल जोड़ियों में से एक मानी जाती है। जब अमिताभ बच्चन लगातार स्ट्रगल कर रहे थे तब मेहरा ने उन्हें अपनी फिल्म जंजीर में कास्ट किया और इस फिल्म ने अमिताभ को एंग्री यंग मैन की छवि दी और उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। इसके बाद इस जोड़ी ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी जिनमें जंजीर, हेराफेरी, मुकद्दर का सिकंदर, लावारिस, नमक हलाल, शराबी जैसी फिल्में रहीं। आइए शराबी फिल्म का यह गीत आपको सुनवाते हैं।

प्रकाश मेहरा 17 मई 2009 को मुंबई में उनका निधन हो गया और हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन अपनी फिल्मों के जरिए उनका जो शानदार सफ़र रहा इसके लिए हम उन्हें ताउम्र याद करते रहेंगे। एक बार फिर से उन्हें हम नमन करते हैं और आज इस कार्यक्रम में हमने उनकी फिल्मों के गीत आपको सुनवाए। आज है प्रकाश मेहरा साहब की पुण्यतिथि, तो इस गीत के साथ ही आज के इस कार्यक्रम का समय अब यहीं समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। समय हो चुका है जो हर पल अमुक कार्यक्रम का।

आप सभी को हमारा नमस्कार, सुप्रभात, जोहार। जोहार पलामू कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत आज के सुविचार से। कदर करना सीख लीजिए, न जिंदगी वापस आती है न जिंदगी में आए हुए लोग। कई बार तबीयत दवा लेने से नहीं, हाल पूछने से ठीक हो जाती है। तो यह था आज का सुविचार। ऐसे सुविचारों पर अमल करके आप अपना जीवन और आसपास की दुनिया को बदल सकते हैं। तो इस सुविचारों पर अमल करें। और बात करें अब हम मौसम की, तो आप देख रहे हैं कि उमस भरी गर्मी चरम पर है। और तापमान की बात करें तो अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की आज संभावना है। और 18 मई यानी कि कल अधिकतम 42 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने की संभावना व्यक्त की गई है। मेघ गर्जन के साथ साथ बारिश की भी संभावना है। तो आप सचेत रहें, सुरक्षित रहें। और बारिश की संभावना अगर है तो आप अगर कहीं पे जाते हैं, काम से जाते हैं, तो छतरी लेकर चलें, व्यवस्था के साथ चलें। और जब भी मेघ गर्जन की बात हो या ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही हो, तो कभी भी बारिश से बचने के लिए पेड़ों के नीचे आप न छुपें। और बाकी भी जो एहतियात हैं उसे अवश्य बरतें। और इसके बाद आइए हम आपको सुनवाते हैं इस कार्यक्रम का पहला गीत।

इस गीत के बाद आइए समाचार सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। झारखंड की मिट्टी में आएगी राजस्थान की मिट्टी की खुशबू। जमशेदपुर में 3 दिवसीय राजस्थान महोत्सव आज से, राज्यपाल संतोष गंगवार करेंगे उद्घाटन। पूर्वी सिंहभूम जिला के मुख्यालय जमशेदपुर के विष्णुपुर स्थित गोपालदास मैदान में 3 दिवसीय राजस्थान महोत्सव सह मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले में राजस्थान राज्य की कला एवं संस्कृति के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। यह मेला पूर्वी सिंहभूम जिला मारवाड़ी सम्मेलन के तत्वाधान में आयोजित किया जाएगा। आयोजकों ने इस मेले के संबंध में शनिवार को प्रेस वार्ता करके पूरी जानकारी दी। बताया गया कि आज शाम 5 बजे झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के हाथों में इस मेले का शुभारंभ होगा। इस मेले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भी शामिल होने की चर्चा है। इसके अतिरिक्त इस मेले में बाबूलाल मरांडी, जनप्रतिनिधि और समाजसेवी भी हिस्सा लेंगे। मेले का प्रमुख आकर्षण चोखी थाणी थीम होगा, जहां लोग पारंपरिक राजस्थानी माहौल में बैठकर दाल बाटी चूरमा समेत कई प्रसिद्ध राजस्थानी व्यंजनों का स्वाद ले सकेंगे। इसके साथ ही लोक संगीत, कठपुतली नृत्य,

घूमर, कालबेलिया, मेहंदी, चूड़ी और पारंपरिक श्रृंगार का भी आनंद मिलेगा। सर्वश्रेष्ठ जिलाधिकारी सर्वेक्षण का प्राथमिक परिणाम फेम इंडिया ने किया जारी। गढ़वा और रांची के डीसी समेत राज्य के 6 डीसी नाम सूची में।

संकट प्रबंधन और प्रभावी गवर्नेंस के आधार पर तैयार इस सूची में कई चर्चित और लोकप्रिय जिलाधिकारियों को स्थान मिला है। फेम इंडिया की प्रारंभिक सूची में झारखंड के 6 उपायुक्तों को भी जगह मिली है, जिसमें गढ़वा के डीसी दिनेश कुमार यादव एवं रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री का नाम शामिल है। प्रारंभिक सूची में आंध्र प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार, मणिपुर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों के जिलाधिकारियों को शामिल किया गया है। सूची में राजस्थान की चर्चित भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी टीना डाबी, उत्तर प्रदेश के रविंद्र कुमार और विशाखजी अय्यर, बिहार के वैभव श्रीवास्तव और विवेक रंजन मैत्रेयी, महाराष्ट्र के सौरभ कड़रियार और हरियाणा की नेहा सिंह जैसे कई प्रमुख नाम है। प्रारंभिक सूची में झारखंड के रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री, धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन, गढ़वा उपायुक्त दिनेश कुमार यादव, जामताड़ा के उपायुक्त रवि आनंद, खूंटी के उपायुक्त आर रोनिता तथा साहिबगंज के उपायुक्त हेमंत सती को शामिल किया गया है। इसके अलावा एजीएम यू कैडर के अधिकारियों में अंकित यादव, लक्ष्य सिंघल, मेखला चैतन्य, विशाखा यादव, सलोनी राय और सनी कुमार सिंह को भी स्थान मिला है। फेम इंडिया के प्रबंध संपादक अनिल सिंह ने शनिवार को बताया कि इस पहल का उद्देश्य उन जिलाधिकारियों को सम्मान और पहचान देना है जिन्होंने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी बेहतर प्रशासन और जनहित के कार्यों से अलग पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि चयनित अधिकारियों का विस्तृत स्टेक होल्डर सर्वे करवाया गया है और विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिलाधिकारियों की फेम इंडिया में विशेष अंक में प्रमुखता से इन्हें स्थान मिलेगा। सोशल मीडिया पर उठी अनाथ बच्चों की आवाज, डीसी खुद पहुंचे गाँव। योजनाओं का लाभ नहीं मिलने पर अधिकारियों को लगाई फटकार, तत्काल मदद का दिया निर्देश। हुसैनाबाद की खबर है, सोशल मीडिया पर उठे एक संवेदनशील मामले ने जिला प्रशासन को तुरंत सक्रिय कर दिया। हुसैनाबाद अनुमंडल के लोटरिया पंचायत स्थित एकोनी गांव में रह रहे 3 अनाथ बच्चों की दयनीय स्थिति सामने आने के बाद पलामू उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत शनिवार को स्वयं गाँव पहुंचे और बच्चों की स्थिति का जायजा लिया। जानकारी के अनुसार सामाजिक कार्यकर्ता सतीश कुमार शर्मा ने बच्चों की परेशानी को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पलामू उपायुक्त को सोशल मीडिया पर मंच एक्स पर टैग करके इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की थी। मामला वायरल होने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और उपायुक्त ने मौके पर जाकर स्थिति की समीक्षा की। उपायुक्त ने बच्चों को राशन, आवास, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का तत्काल लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया। साथ ही प्रशासनिक टीम को बच्चों की नियमित निगरानी कर हर संभव सहायता सुनिश्चित करने को कहा। निरीक्षण के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी गौरांग महतो, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी दिव्यांश शुक्ला, थाना प्रभारी चंदन कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी सुनील कुमार वर्मा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। ग्रामीणों ने बताया कि माता पिता की मौत के बाद बच्चे काफी कठिन परिस्थितियों में जीवन बिता रहे थे। प्रशासन की त्वरित पहल से अब गांव के लोगों में बच्चों के बेहतर भविष्य की उम्मीद जगी है। हर घर नल योजना को गति देने के लिए ग्रामीणों के संग की गई बैठक। मोहम्मदगंज में हर घर नल जल योजना को तेजी से पूरा करने के उद्देश्य से शनिवार को लटपौरी पंचायत के डाली गांव में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जेई ने ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों से योजना कार्य में सहयोग करने की अपील की। बैठक में पंसा रामबांध बहु ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत पाइपलाइन बिछाने में आ रही समस्याओं पर चर्चा की गई। संत मरियम विद्यालय में पीरियडिक टेस्ट के दौरान विद्यार्थियों का बढ़ाया गया उत्साह। चेयरमैन अविनाश देव ने अनुशासन, आत्मविश्वास और समय के सदुपयोग का दिया संदेश। संत मरियम विद्यालय में चल रहे पीरियडिक टेस्ट 1 के बीच विद्यालय के चेयरमैन अविनाश देव ने विद्यार्थियों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को आत्मविश्वास और ईमानदारी के साथ परीक्षा देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि नियमित अध्ययन, अनुशासन और सकारात्मक सोच ही सफलता की वास्तविक कुंजी है। परीक्षा जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए विद्यार्थियों को बिना तनाव के पूरी लगन और मेहनत से अपनी तैयारी करनी चाहिए। पलामू पुलिस में बड़ा फेरबदल, कई थाना प्रभारियों का हुआ तबादला। सदर थाना के नए थाना प्रभारी बने अफजल अंसारी। पलामू जिले में पुलिस
प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से कई थाना प्रभारियों का तबादला किया गया है। पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी के निर्देश पर जारी आदेश के अनुसार जिले के विभिन्न थानों में महिला थानों में नए थाना प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। जारी सूची के अनुसार छतरपुर थाना में सौरभ चौबे, चैनपुर थाना में लालजी, पाटन थाना में अनिल विद्यार्थी, पांकी थाना में दीपक सिंह, पिपरा थाना में प्रदीप शर्मा, नौडीहा बाजार नीरज कुमार तथा सदर थाना में अफजल अंसारी को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।

उपायुक्त ने किया SBI ग्रामीण रोजगार प्रशिक्षण संस्थान का निरीक्षण। खबर गढ़वा से, स्वरोजगार से जोड़ने और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने पर दिया गया जोर। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी अनन्य मित्तल ने सदर प्रखंड स्थित चिरौंजिया में SBI ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वर्कशॉप, रसोईघर, प्रयोगशाला, कैंटीन और छात्रावास का जायजा लिया तथा संस्थान की व्यवस्थाओं की सराहना की। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने संस्थान परिसर में सौर ऊर्जा पैनल लगाने के लिए संबंधित एजेंसी को पत्र भेजने का निर्देश दिया। साथ ही स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार उत्पादों की बिक्री के लिए परिसर में पलाश मार्ट खोलने की बात कही ताकि प्रशिक्षण प्राप्त लोगों को बाजार उपलब्ध हो सके। उपायुक्त ने कहा कि संस्थान का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार से जोड़ना है। मौके पर अग्रणी बैंक प्रबंधक सत्यदेव रंजन, फैकल्टी मिथिलेश कुमार, पंकज कुमार वर्मा, रुस्तम अली, अभिषेक तिवारी, प्रदुमन कुमार सहित अन्य लोग मौजूद थे। इन संक्षिप्त खबरों के बाद अब आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: अरे अरे अरे।
1: और आइए पन्ने पलटते हैं आज के इतिहास के। क्या कुछ है खास आज के इतिहास में। इस दिन एडवर्ड जेनर का जन्म हुआ, जो चेचक के टीके का जिन्होंने आविष्कार किया था। 1975 में जून को तावेई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बनी थी। 1987 में भारतीय क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी, आज ही की तारीख को यानी 17 मई को। 2010 में दिल्ली में आयोजित कॉमनवेल्थ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने सभी स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था। विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है आज की तारीख को, और टेलीकम्युनिकेशन इंटरनेट के महत्व को दर्शाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। साथ ही आज विश्व रक्तचाप दिवस भी मनाया जाता है। बीपी की बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिन तय किया गया। 1951 में भारतीय गजल गायक पंकज उधास का जन्म आज ही की तारीख को हुआ था। 1953 में चरित्र अभिनेत्री प्रीति गांगुली का जन्म हुआ था आज की तारीख को। 2021 में भारतीय चिकित्सक और हृदय रोग विशेषज्ञ के अग्रवाल का निधन आज ही की तारीख को हुआ था। 17 मई 2009 को फिल्म निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा का निधन आज ही की तारीख को हुआ था। हमने पिछले कार्यक्रम में उनसे संबंधित कुछ गीत आपको सुनवाए। प्रकाश मेहरा की फिल्म लावारिश का यह गीत, आइए हम आपको सुनवाते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जाएं।

0: भी सहायता टेली लॉकेट टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.telly-law.in से।
1: इसके साथ ही आज के जोहार पलामू कार्यक्रम का समय अब यही समाप्त होता है। नमस्कार, जोहार
2: जोहार पलामू।

अभी आप सुन रहे थे जोहार पलामू कार्यक्रम, और अब आइए सुनते हैं फिल्म गीतों का कार्यक्रम। सबसे पहले हम जन्म दिवस पर याद करते हैं महान गजल गायक पंकज उधास साहब को, और सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म साजन से।

पंकज उधास जी के जन्मदिवस पर हम आपको सुनवा रहे हैं उन पर आधारित कुछ फिल्मी गीत। 17 मई यानी आज ही की तारीख को 1951 में इनका जन्म हुआ था और 26 फरवरी 2024 को ये दुनिया को अलविदा कह गए थे। भारत के एक दिग्गज और लोकप्रिय गजल और पार्श्व गायक थे। उन्हें चिट्ठी आई है और चांदी जैसा रंग है तेरा जैसे सदाबहार गानों के लिए जाना जाता है। 2006 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना साजन फिल्म से और अब आइए सुनिए मोहरा फिल्म का एक खूबसूरत गीत।

इस खूबसूरत गीत में पंकज दास का साथ दे रही थी साधना सरगम। पंकज दास की बात करें तो शुरुआती करियर, इनकी संगीत यात्रा की शुरुआत बहुत कम उम्र में इन्होंने किया था। इनका पहला मंच प्रदर्शन ए मेरे वतन के लोगों गाने के साथ हुआ था। 1980 में इनका पहला गजल एल्बम आहत रिलीज हुआ, जिसे बहुत सफलता मिली। 1986 में फिल्म नाम के सुपरहिट गीत चिट्ठी आई से इन्होंने घर घर में लोकप्रियता हासिल की। इसके बाद ना कजरे की धार, जिए तो जिए कैसे, छुपाना भी नहीं आता जैसे कई सदाबहार गीत इन्होंने गाए। 1987 में रिलीज हुआ इनका एल्बम शगुफ्ता, भारत का पहला कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी एल्बम था। इसके अलावा भी संगीत प्रतिभाओं को खोजने वाले टीवी शो आधा वर्ष है के सूत्रधार भी रहे। और भी कई बातें हैं इससे जुड़ी हुई, इस गीत के बाद हम आपसे बातें करेंगे।

पंकज उधास साहब के जन्म दिवस पर एक दिलचस्प बात आपसे शेयर कर रही हूँ। पंकज उधास के गाने चिट्ठी आई है को सुनकर राज कपूर साहब रो पड़े थे। बात इस गाने के रिलीज के पहले की है। राजेंद्र कुमार और राज कपूर अच्छे दोस्त थे। इस गाने की एडिटिंग डेविड धवन ने की। जब यह गाना एडिट करके तैयार हुआ तब एक दिन राजेंद्र कुमार ने राज कपूर को डिनर पर घर बुलाया और यही गाना लगा दिया। राज कपूर की आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने कहा कि यह गाना कोई भी भूल नहीं पाएगा।

आज के फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे पंकज उदास पर केंद्रित कुछ गीत उनके जन्मदिवस के अवसर पर। इसके साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। समाचारों के लिए आइए हम आपको दिल्ली लिए चलते हैं, जहां से आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। ये यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वार्ता करेंगे। इसमें द्विपक्षीय संबंधों के

0: सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन के बीच हेग में व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
2: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। पीठ ने कहा कि मुस्लिम समुदाय जिले में मस्जिद निर्माण के लिए अलग से भूमि आवंटन के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिन बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा कि सोने और प्लेटिनम से बड़ी मड़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के लिए लिया गया है। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लिया रोली कॉर्निलो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। और IPL क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। शाम 7:30 बजे से दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी खुराना। India and the Netherlands agreed to elevate their bilateral relationship to the level of a strategic partnership following wide-ranging discussions between Prime Minister Narendra Modi and Dutch Prime Minister Rob Jetten in The Hague. During the talks, the two leaders reviewed

0: नहीं वाह, लेकिन आशा जी के साथ मैंने डुएट गाना गाया है फिल्म के लिए।
1: अरे वाह, ये
0: मराठी फिल्म, बसंत जी का म्यूजिक था
1: जी,
0: और फिल्म का नाम था बयानो नवरे संभाला। उसमें डांस की जुगलबंदी थी, जयश्री टी और एक मधुमती करके डांसर थी,
1: अच्छा।
0: तो उनकी दोनों की जुगलबंदी

0: तो मेरा मैना पार्ट मैंने अलग गाया,
1: अच्छा
0: लेकिन उनको मालूम था संजय को कि ये क्लासिकल सीखी हुई है, ये भी कुछ करेगी बीच में अपने हिसाब से।
1: अच्छा।
0: तो उन्होंने मुझे ये कहा था जो मैंने सिखाया वैसे ही गाने का,
1: अच्छा।
0: और कुछ करने का नहीं, मतलब अच्छा आप आपके हुकुम। आशा जी ने क्या अपना पार्ट गाया है, ओ माई गॉड, वो गाना था वो भी अशीत त्रैलोक के सुंदरी, बहुत अच्छा गाना था
1: अच्छा अच्छा
0: उनका।
1: आशा जी की बात निकली है तो आशा जी को किस तरह से आप याद करेंगी?
0: उनके गानों से ऑफ कोर्स, और गानों की वजह से, और हर तरह
1: जी
0: का
1: जी
0: गाना, जो मैं बताने की जरूरत नहीं है कहने की,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: हर तरह का गाना उनको, वो गाना मुझे बहुत पसंद है, चैन से हमको कभी आपने जीने ना
1: प्राण
0: दिया,
1: जाए पर वचन जाए, वो नय्यर साहब का
0: नय्यर साहब का,
1: क्या बात क्या बात।
0: बहुत सारे, मतलब ये एक ही गाना सुनना तो नाइंसाफी होगी। लेकिन हर गाना उनका बहुत बहुत
1: ये गाना सुन लिया जाए।

0: प्रमिला जी, इतने तरह के अलग अलग सिंगर्स के साथ शोज आपने किए हैं, सुनहरी यादें ये तो आपके शो का नाम
1: मेरा
0: था,
1: मेरा खुद का बैनर था,
0: मगर कभी अलग अलग थीम पे आपने इस प्रोग्राम को प्रस्तुत किया, जैसे रीजनल गाने भी उसमें इंक्लूड किए होंगे?
1: रीजनल गाने तो होते थे, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में दो लावणी चाहिए ही चाहिए,
0: हाँ हाँ,
1: और उसमें भी एक लावणी पाड़ाला पिकला अम्बा, वो अगर पहला गाना हिंदी हुआ
0: जी,
1: पुराना
0: जी,
1: कोई फिल्म का,
0: हाँ,
1: और सेकंड गाना लावणी,
0: अच्छा,
1: हाँ, दूसरा गाना लावणी, तो अगर किसी वक्त दूसरा गाना लावणी नहीं गया दूसरे नंबर पर,
0: हाँ, हाँ,
1: तो लोग एकदम ऐसे अभी आज ये होने वाला है कि नहीं, चार पांच मैं भी उनको जरा ज्यादा के भी चार गाने पांच गानों के बाद गाती थी,
0: अच्छा,
1: तो अरे अरे आपने पहले नहीं गाया ऐसे, और वो लावणी सुलोचना चव्हाण जी की है
0: जी, बिल्कुल,
1: तो मेरे शो बहुत ज्यादा हुआ करते थे उनके,
0: हाँ,
1: मुकाबले,
0: हाँ,
1: में तो वो गाना मेरे नाम पे रजिस्टर हुआ,
0: ओ,
1: कि ये गाना इनका,
0: अच्छा,
1: तो एक बार सुलोचना चव्हाण जी का प्रोग्राम था,
0: हाँ,
1: मुझे ये कोई नहीं, किसी ने मुझे आके बताया तो मुझे,
0: हाँ,
1: मालूम पड़ गया कि किसी ने बताया वो प्रमिला दत्तर जी की लावणी है ना पाड़ाल पिकला अम्बा, वो गाइए, वो बहुत बहुत गुस्सा हो गई, वो उसकी नहीं, वो मेरी है, तो उसकी उसकी नहीं है, तो मतलब इस तरह से कोई कोई गाना इतने, गुजराती में गुजरात में गुजराती, फिर कर्नाटक में गए तो कानड़ी, फिर मलयालम, ऐसे एक ही थोड़ा थोड़ा तैयार करके रखा, तो वहां के लोकल लोग बहुत खुश होते थे,
0: अच्छा,
1: उनकी भाषा में अगर थोड़ा सा भी गाया ना,
0: हाँ,
1: तो मस्त उनको मजा आता था सुनने में।
0: क्या बात,
1: उसका एक मंदसौर का किस्सा है, मैं आपको,
0: हाँ,
1: बताया,
0: हाँ, बिल्कुल,
1: मेरे शो मेरे स्टेज में ऐसा रिकॉर्ड हुआ करता था मेरे पीछे,
0: हाँ,
1: बड़ा रिकॉर्ड ऐसा पत्रिका फोल्डिंग स्क्रीन नहीं, ऐसा स्टैंड पे हुआ करता
0: अच्छा,
1: था,
0: अच्छा,
1: बहुत बड़ा कटआउट बनाया था,
0: हाँ, हाँ,
1: तो पहले लकड़े का था, बाद में हमने वो बहुत खराब होता था लकड़ा, पत्रे का बनाया था
0: जी, जी, जी,
1: मेटल का, तो उसके मेरा नाम प्रमिला दातार और सुनहरी यादें, वो मेरे जहाँ एडवर्टाइजमेंट में भी पेपर में वही, तो मुझे उसी बदौलत लोग अभी भी याद करते हैं कि वो आपका आगे पीछे रिकॉर्ड हुआ करता था, तो रिकॉर्ड हुआ करता मंदसौर में शो था, इंदौर के पास मध्य प्रदेश में एक गांव है,
0: हाँ,
1: मंदसौर करके, तो हमारा शो खत्म हुआ और एक वो रिकॉर्ड, उसको हम साइक्लोरामा डालते थे,
0: अच्छा,
1: तो ऐसा लगता कि रिकॉर्ड घूम रही
0: घूम रहा,
1: ऐसा अच्छा, लगता
0: अच्छा,
1: था,
0: अच्छा,
1: तो ऐसा भास होता था लोगों को, तो एक आदमी बहुत गुस्सा होकर आया, बोले क्या आप फंसा रहे हैं हमको, लोगों को, ऑडियंस को, मतलब क्या क्या हुआ,
0: हाँ,
1: मेरी मेरी तो जहां तक मुझे मालूम है हम तो ठीक अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं आपको अच्छा गाने की, तो बोले नहीं नहीं वो आप पीछे रिकॉर्ड चला रहे हो और आगे मुंह हिला रहे हो सिर्फ,
0: अच्छा,
1: एक तरह से वो कॉम्प्लीमेंट भी था,
0: हाँ,
1: कि उसको रिकॉर्ड जैसा लगा
0: क्या बात,
1: लेकिन मैंने कॉम्प्लीमेंट नहीं लिया, मैंने उसको बताया, उनको स्टेज पे जाके दिखाया कि ऐसा होता है, फिर हम लोग गाना गाते हैं सामने, हाँ, ऐसा गाना गा, फिर वो शांत हो गया आदमी।
0: श्रोताओं की बात निकली है
1: जी,
0: तो आपने भारत में इतने अलग अलग शहरों में गांव में शोज
1: हाँ
0: किए हैं और विदेशों में भी किए हैं
1: जी,
0: हर शहर का श्रोता अलग होता है,
1: बिल्कुल
0: है ना?
1: बिल्कुल, और शुरुआत में नहीं,
0: हाँ,
1: लेकिन अनुभव से,
0: हाँ,
1: आपको मालूम होना चाहिए,
0: हाँ,
1: कि अभी गीतों की रचना भी जो करते हैं
0: जी, जी,
1: एक साथ लघु पाठ पांच छह शांत धीमे गीत, फिर लोग हा करके सामने सामने ये करते हैं,
0: अच्छा, अच्छा,
1: फिर दो गाने के बाद ये रात को सफाज गाना, फिर ये मुड़ का गाने के बाद ये मुड़, वो अपने आप हाँ समझना चाहिए, वो
0: अच्छा,
1: सिखा के नहीं आती बात,
0: अच्छा, अच्छा,
1: और जहां तक पहली बार भी गए,
0: हाँ,
1: किसी शहर में किसी, हाँ, गांव में छोटे से गांव में भी,
0: जी, जी,
1: तो पहले दो गाने में अंदाज आता है कि आज क्या चाहिए लोगों को, किस प्रकार के गाने चाहिए,
0: अच्छा,
1: तो होने से ज्यादा अच्छा होता है।
0: और भारत के श्रोता और विदेशों में जो लोग हैं वहां के श्रोता, कुछ उसमें फर्क आपको मालूम पड़ता है, महसूस होता है?
1: फर्क नहीं, अच्छा लोग पसंद करते थे,
0: अच्छा,
1: ये है अच्छा,
0: हाँ,
1: लोग,
0: हाँ,
1: क्योंकि ये रफी साहब के साथ मैं गाऊं या उनके बाद मैं गाऊं,
0: हाँ, हाँ,
1: तो वो बिल्कुल मतलब ये था, मुझे याद भी नहीं लगता, लेकिन लोगों को पसंद आते थे,
0: पसंद आता,
1: पहला प्रमिला भी अच्छे गाती है, आपने कभी फिल्मों में गाया है क्या, ये सब पूछते थे फिर आके।
0: और कोई ऐसा गाना जिसकी फरमाइश बहुत ज्यादा होती थी?
1: वो रफी साहब का गाना एक दुगाना है,
0: हाँ हाँ,
1: 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, हाँ, और उसमें जॉनी विस्की हमारे साथ होते थे
0: जी, जी,
1: तो
0: जी,
1: वो आगे आके उनको उसको एक बोलते ना, मैं बताती हूँ आपको,
0: हाँ,
1: रफी साहब पहले शुरू करते थे
0: जी।

0: भी रहेगा, फिर जानी इसकी, और परसों भी रहेगा और तरसों। क्या जानी भाई आप इतना के पुनः गाने का, लेकिन रफी साहब को भी अच्छा लगता था, मजा आता था, लोग मजे लेते थे।
1: जी जी जी, तो चलिए इसी गीत के लिए जगह बनाते हैं, ये गाना सुन लेते हैं।
0: जरूर।

0: विमला जी, इतने सारे शोज करने के बाद कोई ऐसी बात रही होगी आपको लगा कि ये होना चाहिए था मगर हो नहीं पाया?
1: प्लेबैक
0: अच्छा।
1: मतलब

0: रिकॉर्डिंग के लिए गाना और
1: हाँ,
0: स्टेज के लिए गाना
1: बहुत फर्क है,
0: बहुत फर्क है,
1: जी,
0: बहुत ही फर्क है। तो एक ये मुझे थोड़ी सी मन में ये रह गया कि मुझे मराठी फिल्मों में गाया, लेकिन हिंदी फिल्मों के लिए जिससे नाम होता है,
1: जी जी
0: फिर भी आखिर में क्या आप दूसरों के गाने ही गाते हैं ना,
1: हाँ,
0: ये होता
1: हाँ,
0: है,
1: हाँ,
0: ये छपका दोष आता है
1: जी
0: ऊपर,
1: जी
0: इसलिए वो अगर होता था। लेकिन मैं मेरे इसमें खुश थी,
1: हाँ
0: मैं लोगों को आमने सामने मेरा मुझे ये दाद मिलती थी लोगों
1: जी
0: की,
1: जी
0: तो मैं खुश थी, वही उसमें ही खुश थी।
1: जी जी जी अब
0: और रसिकों की दुआ से, ईश्वर की दुआ
1: जी
0: से बहुत
1: जी
0: अच्छा चला
1: बिल्कुल
0: और नाम लेने लगे लोग कि ऐसा मेरा प्रोग्राम एक मापदंड हो गया
1: हाँ
0: कि ऐसा
1: हाँ
0: होना चाहिए
1: हाँ
0: ऑर्केस्ट्रा।
1: जी जी
0: एक पूना के हमारे ये है, उन्होंने इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया मुझे, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा बोले तो लोगों का ये कॉन्सेप्ट था कि वो धंगर धिंगा ये वो डांस वो, ऐसे नहीं, अच्छी तरह से भी करो
1: जी
0: तो फिर लोगों को पसंद। तो पूना के हमारे एक अच्छे जो क्लासेस करके उनके प्रिंसिपल थे,
1: हाँ
0: उन्होंने मोरारजी को देखा तो बोले आपका शो खानदानी लगता है, तो
1: हाँ
0: वो एक कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए
1: क्या
0: बहुत
1: बात है,
0: अच्छी
1: क्या
0: है,
1: बात है।
0: दूसरा कोई कहने की
1: हाँ
0: जरूरत ही
1: बिल्कुल
0: नहीं
1: बिल्कुल, शो
0: है।
1: में आपके प्रेजेंटेशन में शालीनता हो
0: प्रेजेंटेशन शालीनता हो
1: तो
0: जरूर,
1: सवाल ही नहीं, वो
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: ऑर्केस्ट्रा बहुत सुंदर होता है। क्या
0: बिल्कुल।
1: बात। ऐसे ही आप नामचीन श्रोताओं को याद करना चाहेंगी कि कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई बहुत बड़े नामी गिरामी लोग हैं और वो शो के लिए आपके आए हैं?
0: आए थे बहुत सारे, मतलब उनकी उनकी कंपनी के लिए ऐसे भी मेरे, लेकिन अभी
1: हाँ
0: ज्यादा नाम मुझे याद नहीं है।
1: प्राइवेट शोज भी होते हैं कई
0: प्राइवेट
1: बार
0: शोज भी
1: जी, कंपनी के लिए
0: होते
1: या
0: थे
1: किसी,
0: कंपनी के लिए, किसी
1: हाँ हाँ
0: कंपनी के लिए बहुत शो हुए,
1: अच्छा
0: मतलब बहुत सारी ठाणा इंडस्ट्रियल आप मुंबई के आसपास और बाहर गांव में भी
1: जी,
0: बहुत सारी कंपनी, उनके लिए चैरिटी शो बहुत हुए मेरे भी।
1: अच्छा
0: नाम सुन के उन्होंने फिर ये किया, कॉन्टेक्ट
1: जी
0: किया।
1: जी जी प्रमिला जी, अलग अलग संगीतकारों के गाने आपने मंच पर प्रस्तुत किए
0: हाँ
1: हैं,
0: जी
1: सबका अपना अलग अंदाज होता
0: हाँ
1: है, अपना
0: जी
1: स्टाइल
0: जी
1: होता है,
0: एकदम
1: ये तो नहीं पूछूंगा कि किसका गाना गाते समय आपको ज्यादा आनंद आया, मजा आया, सबका
0: समझ,
1: गाने में अलग उनका अपना ढंग होता है और
0: सही
1: उनकी
0: बात सही बात।
1: विशेषता होती है, फिर भी आप क्या फर्क महसूस करती हैं हर तरह के संगीत, पुराने जमाने के जितने संगीतकार हुए, आप मुबारक बेगम के गाए गाने प्रस्तुत करती थी,
0: हाँ जी
1: शमशाद
0: हाँ जी
1: बेगम जी के
0: हाँ
1: प्रस्तुत,
0: जी हाँ
1: वो जो एक वहां से पूरा दौर आज तक का है, इनमें से अलग अलग संगीतकारों के कंपोजिशंस गाते हुए आपको कैसा लगा, कैसा फील हुआ,
0: यूं
1: किन
0: कहूंगी
1: कंपोजिशंस में
0: कि
1: ज्यादा चैलेंजिंग लगा?
0: हाँ यही मैं कहने वाली थी कि
1: जी जी
0: पुराने जमाने के जो कंपोजिशंस थे
1: जी
0: वो चैलेंजिंग थे।
1: अच्छा
0: हाँ अभी
1: अच्छा
0: आज का जमाने का गाना मतलब उतना नहीं, मतलब ऐसा कोई भी गा सकता है ऐसे आज के जमाने के, ऐसा मुझे लगता है,
1: अच्छा
0: मेरी राय होगी और शायद गलत भी हो सकती है,
1: हाँ
0: लेकिन
1: हाँ
0: पुराने जो गाने थे
1: हाँ
0: उसमें अगर जो म्यूजिक भी था
1: हाँ
0: बीच का,
1: जी
0: वो म्यूजिक भी इतना वो गीतों शब्दों से लग के आता था एकदम, कि वो म्यूजिक का टुकड़ा उधर आना चाहिए नहीं तो वो गाना आगे नहीं बढ़ेगा,
1: जी
0: इस
1: जी
0: तरह का हुआ करता था। और लोगों के कान भी इतने तैयार थे कि वो लोग भले संगीत ना सीखे हो, संगीत में उनकी जानकारी क्यों, लेकिन इधर ये गलत है ये,
1: हाँ समझ में
0: ऐसा
1: आता
0: चिल्लाते थे
1: जी
0: जरा
1: जी
0: भी। मैं इसका एक किस्सा बताती हूँ,
1: जी
0: मेरा
1: जी
0: अशोक खोसला करके बहुत अच्छे गजल गायक है,
1: हाँ हाँ
0: उन्होंने शुरुआत करी कि मेरे शो से की थी,
1: अच्छा
0: तो वो सेमी क्लासिकल रफी साहब कैसे मधुबन में राधिका नाचेरे गाने,
1: जी जी
0: तो वो गाना वो पेश करता था बहुत अच्छा, और उसमें सरगम ये सब है वो ठीक तरह से गाता था, लेकिन गाने के अंत में एक ताने ली हुई है।
1: अच्छा
0: हाँ तो नंदुरवार करके गांव है छोटा सा धुलिया के पास,
1: जी
0: तो वहां पे एक आदमी आया मेरे पास शो, जैसे आते हैं आपका प्रोग्राम अच्छा हुआ ये अच्छा हुआ ये गाना क्यों नहीं गाया वगैरह, तो आया वो आपके आर्टिस्ट ने वो गाना ठीक गाया लेकिन सही नहीं गाया।
1: हाँ
0: मुझे भी समझ में नहीं आया कि मेरे मेरे हिसाब से तो अशोक अच्छा गाता था, उसको
1: हाँ
0: क्लासिकल का ज्ञान
1: हाँ
0: था,
1: हाँ
0: तो नहीं वो लास्ट में जो ताने हैं वो उसने नहीं लिया,
1: ओ
0: वो तो रफी साहब ने भी नहीं गाई थी, वो आमिर खान साहब की गाई हुई है वो तो, लेकिन रफी साहब गाने सकते ऐसा नहीं था,
1: हाँ
0: लेकिन कैरेक्टर के हिसाब से मुकरी के शायद वो ताने लिए हैं
1: जी
0: मुकरी,
1: जी
0: तो उतना भी उसको मालूम पड़ा है।
1: बिल्कुल,
0: म्यूजिक का एक पीस भी इधर उधर हो जाए
1: तो श्रोताओं
0: वे
1: के समझ में आ
0: पुराने जो
1: जाता है।
0: गाने
1: जी जी
0: बरोबर उनको ए
1: बिल्कुल
0: करके चिल्ला देते वहां से।
1: हाँ, क्योंकि श्रोता जो है, दर्शक जो है, वो फिल्म में जो उन्होंने देखा है और उस गीत को बार बार
0: हाँ
1: सुना
0: वो
1: है, तो
0: उनके
1: उन्हें
0: दिमाग
1: वैसा का
0: में
1: वैसा वो सुनना
0: वैसा के
1: चाहते
0: वैसा।
1: हैं।
0: अभी ये
1: जी
0: गाना है तो थोड़ा सा चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है टर टर
1: हाँ
0: टर, वो
1: हाँ
0: आना ही चाहिए ऊपर, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेगा गाना, इतना
1: जी
0: म्यूजिक
1: जी जी
0: चिपक
1: जी
0: के चलता था
1: जी
0: शब्दों को।
1: जी ऑर्केस्ट्रा में जो बहुत से म्यूजिशियंस होते हैं,
0: जी
1: उनकी नज़र से एक
0: हाँ
1: सवाल ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि हर म्यूजिशियन को, जैसे हर गायक को गाने का मौका मिलता नहीं है फिल्मों
0: मिलता
1: में,
0: नहीं है सही बात।
1: तो बहुत से म्यूजिशियंस जो है ऑर्केस्ट्रा में भी अपना बजा करके

0: अच्छा करते
1: अपना
0: हैं।
1: उधर निर्वाह करते हैं। तो उनके दृष्टि से ये एक सवाल है कि कैसी तैयारी होनी चाहिए, शो की तैयारी कैसी होनी चाहिए?
0: एक तो रिहर्सल
1: हाँ
0: बहुत ही रिहर्सल होनी चाहिए, जिस तरह से वो एकदम परफेक्ट हो सब जगह से, म्यूजिक के हिसाब से, गाने के हिसाब से।
1: जी
0: इसका मैं अब बदलाव किस तरह से आया है, अभी मैं एक्सपीरियंस बताती हूँ
1: जी
0: कि मैं जब शो करती थी तो महीने में 20 शो 25 शो हुआ करते थे, वो ही। और मेरा ये एक था कि जो मेरा ग्रुप है वो ही होना चाहिए,
1: जी
0: नहीं तो आज ये ढुलकी वाला आया, कर ये कीबोर्ड वाला आया,
1: हाँ
0: उनको गाने मालूम रहते हैं लेकिन वो सिंक्रोनाइजेशन नहीं
1: सिंह
0: होता,
1: हाँ
0: अंडरस्टैंडिंग नहीं होता गायक का और बजाने वाले का।
1: बिल्कुल
0: तो मेरा जो ग्रुप रहता था हमेशा वो ही रहता था
1: हाँ
0: सालों साल तक।
1: जी
0: अभी मैंने 2023 को एक शो किया,
1: हाँ
0: बहुत सारे लोगों ने मुझे तो क्या कर रही है तू, शो करना अभी, तू गा सकती है, क्योंकि मैं गाने भेजती थी ना रोज 4 साल से,
1: हाँ
0: तो एक शो करना, तो मैंने कहा चलो करें। तो एक गुड़ी पाड़वा के दिन 23 मार्च 2023 को
1: अच्छा
0: शो किया, तो एक तो बहुत सारी चीजें नई थी मेरे लिए, म्यूजिशियन का पेमेंट, मतलब मैं उसका ये नहीं करूंगी लेकिन एक काल के हिसाब से एकदम से तो बदली हो
1: जी जी
0: जाएगा नाजी। तो जो मेरा पेमेंट फिक्स हुआ था म्यूजिशियन का,
1: जी
0: उसमें एक रिहर्सल
1: हाँ
0: और शो
1: जी
0: बस, दूसरी रिहर्सल नहीं।
1: ओ क्या
0: हाँ एक ही रिहर्सल, वो मुझे तभी मालूम पड़ी वो बात,
1: बात
0: जो तो ठीक है कि उनको भी सब गाने मेरे पुराने वाले में भी दो तीन थे
1: हाँ
0: म्यूजिशियंस,
1: हाँ
0: एक
1: हाँ
0: संजय मराठे करके है,
1: जी
0: तो बहुत पहले शुरुआत में करियर मेरे शो से हुई
1: जी
0: और आज वो बहुत ही एस्टैब्लिश्ड, उसका खुद का ग्रुप है। तो मैंने उसको ही बोला तुम्हारा खुद ग्रुप लेके आओ, मुझे शो करना है, तो
1: अच्छा
0: ज़्यादा रिहर्सल की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन
1: हाँ
0: कोई अगर नया सिंगर होता जाता तो उसके लिए तो जरूरत होती थी ना रिहर्सल,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो एक रिहर्सल और शो।
1: जी जी
0: लेकिन फिर भी लोगों ने पसंद किया उसको,
1: जी
0: शो
1: जी
0: को।
1: आपने अशोक खोसला जी का जिक्र किया, ऐसे और कोई कलाकार जिन्हें आपकी शो से शुरुआत करके और फिर आगे इंडस्ट्री में?
0: विनय मानके बोलूंगी, विनय मानके,
1: विनय
0: विनय
1: मानके।
0: मानके।
1: जी, मैं श्रोताओं को बता दूं कि बहुत
0: और
1: से विज्ञापनों में विनय मानके जी की आवाज हम सुनते हैं,
0: जी,
1: तो
0: उसको जिंगल किंग ही बोलते थे। हाँ बहुत सारे
1: जी
0: जिंगल
1: जी
0: गाए
1: जी
0: उसने, और
1: अच्छा
0: स्टेज में जो एक प्रेजेंटेशन होता है, स्टेज
1: हाँ
0: परफॉर्म होता है,
1: जी
0: वो था बहुत सारे हल्की फुल्की बातें भी करने का बीच में
1: अच्छा अच्छा अच्छा
0: मतलब ऐसे
1: हाँ हाँ
0: किसी को
1: हाँ
0: तकलीफ देने के लिए, लेकिन वो अपने खुद के स्वभाव के हिसाब से उसका चलता था। फिर वो जो कव्वाली अशोक खोसला जी गाते थे
1: जी
0: नॉट डेट, तो उसमें कोरस था, तो मेरे गायक कलाकार उसको कोरस देने के, तो
1: अच्छा
0: ये कुछ कुछ कुछ कुछ बीच में अशोक जी इतने एकदाई, अभी मैं वो कव्वाली नहीं गाऊंगा।
1: हाँ
0: फिर
1: हाँ
0: मैंने विनय को समझाया, फिर वो मतलब ऐसा वो मजा आया, मजा के।
1: बहुत अच्छे
0: फिर
1: सिंगर
0: एक गाना था अन्ना
1: जी
0: जी का,
1: हाँ हाँ
0: भोली सूरत दिल के खोटे,
1: हाँ
0: नए जमाने की ये नारी, नए जमाने की ये नारी। फिर एक लास्ट में लाइन था, हाथ में कंगन कान में बाली, तो ये
1: हाँ
0: बोला ऐसा हाथ में कंगन कान में बाली, कभी बोला ऐसा योगिता वाली, कभी बोला ऐसा खोटी वाली, कुछ भी मतलब
1: अच्छा
0: वो ठीक था, लोगों को भी
1: अच्छा
0: मजा आता
1: मस्ती के
0: था,
1: मूड में
0: मस्ती के
1: हमेशा
0: मूड में।
1: रहते थे वो।

0: कलाकार सब मतलब मेरे हिसाब से अच्छे थे, ठीक थे,
1: जी, जी।
0: लेकिन विनय जो अकेला संभालता छो, कोई भी सिंगर का गाना वो गाता, मुकेश जी का बोलो, रफी साहब का बोलो, किशोर कुमार जी का बोलो, अच्छे गाना था उसको। बस सिखाई वगैरह नहीं था उसने कुछ, लेकिन उसकी जातिया, उसकी आवाज भी सब
1: जी,
0: था।
1: जी, जी।
0: अच्छा गाना।
1: प्रमिला जी, अब गान सम्राज्ञी जिनको हम कहते हैं, सरस्वती माँ कहते हैं जिन्हें, उनकी बात करते हैं। कभी लता जी से मिलने का मौका मिला?
0: मिला, मतलब मैंने क्या हुआ, मेरा जो गुड़ी पड़वा का बड़ा शो होता था हर साल,
1: जी जी
0: हर साल, तो मैं कोई इंडस्ट्री का बड़ा कलाकार या तो संगीतकार या तो पॉलिटिशियन कोई, अच्छा सब सीएम जो थे मेरे शो में आके गए पड़वा के शो में, वसंत दादा पाटिल, शंकर राव चौहान और जो कुछ, विलास राव देशमुख, सुशील कुमार जी शिंदे, सब आके गए। वो बड़ा शो हुआ करता था और तो मैं किसी को बुलाती थी, या तो फिल्म कलाकार या तो मैं उसके लिए उनके पास गई थी, उनके घर में गई थी,
1: हाँ।
0: प्रभु कुंज में, तो उसके सामने बैठी थी, तो मुझे लगा मैंने जन्नत पा ली। सामने दर्शन हुआ साक्षात। तो मैंने बता दिया, मुझे बोली कि क्यों आपके, आपने कैसे आना किया, कशा कशा काय आला तुम्ही मराठी मध्ये, तो मला दीदी माझा शो असतो दरवर्षी गुढी पाडव्याला,
1: अच्छा
0: तर आपण यावं अशी खूप इच्छा आहे, लेकिन वो बाहर गाँव जाने वाली थी,
1: अच्छा,
0: नहीं आई। फिर मुझे पूछते है कि कसं भाव तुम्ही असे प्रोग्राम करता है, एवढे प्रवास करायचा, पर गायला उभा राहायचं कसं करता, म्हटलं नाही अभी आदत हो गई है, हो जाता है। मतलब उसने, उसके पास वो नोन थी कि हम शो करते हैं, महीने में इतने शो होते हैं, पूरा मालूम
1: था उनको। क्या बात। अब फिर से वही मुश्किल सवाल के लता जी का जो गीतों का खजाना है उसमें से गाना चुनना तो बहुत मुश्किल है, मगर अलग अलग समय पे अलग अलग शोज में आपने अलग अलग गाने उनके
0: हाँ
1: गाए
0: जी,
1: हैं,
0: हाँ जी।
1: कौन सा एक गीत आप अभी इस वक्त हमें सुनवाना चाहेंगे?
0: उनका भी एक सजा फिल्म का गीत है,
1: हाँ
0: तो वो मैं शायद

0: प्रमिला जी, आपने कुछ देर पहले जिक्र किया था कि मराठी लावणियां आपके शो में हमेशा हुआ करती थी, और उसमें से भी सुलोचना जी का गाया हुआ जो गीत है, जो लावणी है, पाड़ा ला पिकला अम्बा, इसकी फरमाइश हमेशा होती थी।
1: हाँ हाँ।
0: या उसका शो में शामिल होना बहुत
1: शामिल होना बहुत ही जरूरी था। हाँ। मस्ट।
0: हाँ। और भी तो एक तो पहले हम उसकी झलक सुनेंगे
1: जरूर,
0: और फिर लावणी की भी बात करेंगे।

0: पाऊन जरा थांबा आर घे पडाला पिकलाय आंबा आला बाई पडाला पिकलाय आम हो नीट बघ पडाला पिकलाय आंबा कुछ अलग अलग वैरायटी होती थी पर फिर ये आंबा ये गाना तो वंस मोर होता ही था
1: जी जी
0: तो मैं लोगों को थोड़ा सा उनका भी पार्टिसिपेशन तो मैं बोली अभी अगली बार मैं गाऊंगी कि बहुत थक गई हूँ तो पड़ाल पिला मैं बोलूंगी अंबा आप बोलेंगे
1: अच्छा।
0: तो वो लोग पहले शुरुआत में जरा शर्मा के अंबा बलकर अरे क्या कर रहे हैं आप अंबा ऐसा जोर से आना चाहिए कि छत ही पूरा उड़ जाना चाहिए इतना जोर से फिर जोर से

0: जो जोर लगा के आंबा
1: जी,
0: आता था
1: क्या
0: सामने से,
1: बात
0: मजा आता था। उनको भी थोड़ा सा हमने भी कुछ किया,
1: वाह वाह वाह
0: उनको भी शायद डाला
1: जी। प्रमिला जी, आपकी बातों में हमने जिक्र किया अलग अलग जगह आप शोज करती थी, तो जिस प्रदेश में जाएंगे वहां का कोई गाना आप उन्हें
0: हाँ
1: जरूर सुनाया करती
0: गाती थी। हाँ,
1: और अपनी लिस्ट में
0: कन्नड़ा गाना सुना
1: हाँ,
0: सुनाती हूँ
1: जी जी जरूर।
0: मेरी
1: जरूर।
0: लड़की बैठे ना तो खुश हो जाएंगे।

0: क्या बात है, कर्नाटक के श्रोताओं को आपने खुश कर दिया। अब
1: कोशिश
0: गुजरात के श्रोता सोच रहे हैं कि भाई
1: की।
0: क्या
1: अरे बाप रे,
0: हमारा
1: गुजराती
0: नसीब।
1: तो वो एक गाना था।
0: हाँ।

0: हिराना
1: बात?
0: बहुत उधर ज्यादा। और उधर गुजरात के एक मैं एक खास बात बताती हूँ, गुजरात में जाते हैं तो नए फिल्म के गाने उनको बहुत चाहिए।
1: अच्छा,
0: नए गाने, दो गाने लाइन से अगर पुराने गाए तो एकदम रेस्टलेस होते थे।
1: हाँ।
0: तो उधर एक एरिया है सूरत में, वहां जब सब काठियावाड़ी ने वो झबला पहनते हैं,
1: हाँ, हाँ,
0: शॉर्ट
1: हाँ।
0: वो पहन वाला बैठे थे, तो एक आदमी पहले ही रो में ऐसा एक पाव ऊपर ऐसा बीड़ी पी रहा था, तो बीड़ी पी रहा था तो पाव ऊपर करके अपने घुटने पे हाथ रख के, तो दो गाने पुराने हो गए, ए प्रेमिला बेन नवो पिक्चर ना गाएं गाओ, नए पिक्चर के गाने गाओ।
1: जी,
0: तो
1: जी,
0: मैंने
1: जी।
0: उसकी तरफ देखा और बोला तेरा पग पहला नीचे कर, इतना कॉन्शियस हो गया और आजू बाजू के लोग भी सब हंसने लगे
1: जी,
0: उसमें।
1: जी,
0: तो
1: जी, जी।
0: ऐसी थोड़ा सा स्पॉन्टेनियस कुछ थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, तुम्हें भी जवाब देना या कुछ
1: जी
0: बोलना।
1: बिल्कुल बिल्कुल। 1975 में जो शुरुआत हुई उस वक्त पहली बार आपने जो गानों की फेहरिस्त बनाई
0: हाँ
1: होगी,
0: जी,
1: लिस्ट
0: हाँ
1: बनाई
0: जी, हाँ
1: होगी,
0: जी,
1: है ना, और आखिरी शो जब किया,
0: हाँ जी,
1: और तब की जो उस शो की जो लिस्ट थी,
0: बहुत सारे गीत कॉमन थे उसमें जो
1: अच्छा
0: लोग पसंद करते थे,
1: अच्छा
0: हमारे लिए नहीं।
1: हाँ
0: लेकिन एक तो गांव के हिसाब से गाने बदली होते थे इधर उधर, लेकिन बेसिकली जो मेरे गाने मेरे पसंद के या लोगों की पसंद के
1: हाँ
0: पहले से थे
1: अच्छा
0: उसमें बहुत सारे गाने रिपीट थे। अच्छा, नए गाने भी गाने पड़ते थे कुछ
1: हाँ
0: लोगों के लिए,
1: हाँ
0: लेकिन एक एक अवारी जो मैंने बोली,
1: जी
0: निगाहें मिलाने को जी
1: जी
0: चाहता है, पे पाड़ाला पिखला अम्बा, फिर मैं जो मेडली थी पांच गायिकाओं की,
1: हाँ
0: वो लोगों को बहुत पसंद आती, वो वही थी,
1: अच्छा
0: उनके गाने अलग अलग थे लेकिन नहीं वो वही गाने चाहिए लोगों को
1: वाह वाह वाह,
0: बहुत मजा आता है।
1: बहुत मजा आ रहा है आपकी बातों में।

0: अरे आपके अनुभव सुन
1: हाँ
0: करके
1: जी, हाँ जी,
0: प्रमिला जी, अगर विविध भारती के श्रोताओं के लिए एक गाना आपको गाने के लिए कहा जाए तो वो कौन सा
1: ओहो
0: गीत होगा आज के कार्यक्रम का, हमारे इस प्रस्तुति का अंतिम गाना?

0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत इस गीत के साथ जो है कार्यक्रम का समापन हो रहा है। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, मगर हम कहेंगे कि वक्त ने बहुत अच्छा, ऊपर वाले का ये कर्म है
1: करम।
0: कि आज आप यहाँ पधारे
1: और मेरे लिए भी
0: और इतनी सारी बातें हमसे की, इतने अच्छे अनुभव हमसे साझा किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे विविध भारती की ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से, विविध भारती के तमाम सुनने वालों की ओर से हम आपको धन्यवाद देते हैं।
1: मैं भी धन्यवाद दूंगी आप सबका, आपका जो बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल आपने पूछे, जो मैं चाहती थी आप पूछे, और सब श्रोताओं का कि उम्मीद करती हूं जो मैंने थोड़ा सा जो पेश किया है आप पसंद करेंगे और वैसे ही मुझे चाहेंगे जिससे आज पिछले कई सालों से चाहते आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विविध भारती का।
0: धन्यवाद।

अभी आपने सुनी जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत। ये इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग था। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: सुपर है डुपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
2: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता। बारीकियां रागों की श्रृंगार सुरों का समय बीता दौर बदले। कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

0: सुन यार पिंकी, ठीक 3 बजे मॉल पे मिल। वो क्या है ना, सेल चल रही है और मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है।
1: अरे देख यार, तू कोई और टाइम रख लेना, 3 बजे तो मैं कहीं आती जाती नहीं हूँ।
0: कहीं आती जाती नहीं? ऐसा क्या करती है तू 3 बजे?
1: अरे तू इतना नहीं जानती, 3 बजे तो सारी सखियाँ कहीं आती जाती नहीं, क्योंकि वो सुनती है
2: सखी सहेली।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
4: विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: विविधा के सभी श्रोताओं को अमरकांत
1: और मनीषा जैन का
0: नमस्कार। मनीषा जी, विविधा का एक और खूबसूरत और कीमती अंक लेकर हम हाजिर हैं। कीमती इसलिए कह रहा हूँ कि विविध भारती के खजाने से निकलने वाले हर एक मोती की जो कीमत है वो हम नहीं जानते, वो हमारे श्रोता ही जानते हैं।
1: बिल्कुल सही फरमाया
0: आप, लोगों ही उसकी सही कीमत का अंदाजा लगा पाते हैं। हमने जो खजाना आप तक पहुंचाया उसके बदले में रिटर्न गिफ्ट में हमें आपका प्यार मिल रहा है
1: और हम आपके इस प्यार को दोनों ही हाथ

0: हाथों से बटोरते हैं, एक बहुत मशहूर शेर है अमर जी, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये बहुत ही मशहूर शेर है
1: जी।
2: इच्छा और मनोरंजन ये तीनों के उद्देश्य के लेके ये आगे बढ़ते जाते और 90 साल कर लंबा सफर पूरा कर चुके। तो आज ये दिन में आज ये मौका में आज हमरे मन एक ठो कलाकार के बुलाए है और ये कलाकार भी कोई आम कलाकार ना लगे, बड़ा कोई साधारण कलाकार ना लगे, बल्कि इनकर भी सफर अगर देखब नहीं आकाशवाणी रांची में 50 साल कर पूरा हो चुकी है। तो इनकर कैसे जुड़ना होलक, कैसे इनकर आकाशवाणी से जुड़ाव होलक, इनकर अनुभव के आज हमरे मन जानब, इनकर लंबा सफर के आज हमरे मन जाने कर कोशिश करब। तो चलू हमरे मन भेंट करीला, अपन स्टूडियो में उनके हमरे मन बुला ही। तो भाई सबसे पहले तोर और बहुत बहुत स्वागत है, जोहार।
3: जोहार।
2: अपन परिचय दे दो, कहाँ का रहक वाला है और नाम का होलत?
3: हमारा नाम होलक हरि मुंडा, गांव लेपसर, पंचायत तरंगा, पोस्ट ऑफिस चोरिया, प्रखंड चान्हो, जिला रांची के निवासी ही।
2: बहुत बढ़िया हरि मुंडा जी, जैसा कि हम जानत ही रोड से बातचीत हमर होलक, तो रे बताली कि लगभग 50 साल पूरा हो गलक रोड आकाशवाणी रांची में।
3: हम 1977 सितंबर 27 तारीख से सारंगी वादन यहाँ आकाशवाणी में शुरू करी और आज बजा थी तो पूरा 50 साल हो।
2: बहुत बधाई रोड के, बहुत बधाई। और कितना गर्व कर बात है कि आकाशवाणी रांची जे की इकर मूल उद्देश्य है कि जे भी स्थानीय कलाकार हैं, जे लोक कलाकार हैं, लोक संगीत है, ऐसे के संरक्षित करे करी कर अपन एक उद्देश्य है और उनके पूरा करते करते रोमन संगे संगे चलते चलते आज रोड 50 साल पूरा हो गलक नहीं।
3: हाँ।
2: तो जाने खोजब कि जब पहला धाव रोड़े आकाशवाणी रांची आए रही से बरा कर रोड कैसा अनुभव रहे, कैसे रोड़े एक से जुड़ ली?
3: उस समय चिट्ठी दे के बुलाल जात रहे, उकर बाकायदे 15 दिन के पहले चिट्ठी भेजल जात रहे, तब उकर फिर एक्सेप्टेंस माने स्वीकृति पत्र आए के फिर हमने जमा करते डाक द्वारा या फिर आए के तब फिर बोला था कि भाई आर्टिस्ट आवी, कलाकार आवी, बजावे, ऐसा रहे।
2: तो कैसे आली, मतलब जुड़ाव कैसे हो लग रहा?
3: हाँ, जुड़ाव पहले हम सब शुरू कर रही सारंगी वादन तो सीख रही तो 1977 में शहीद दिवस मनाल जात रहे 23 तारीख के, पत्र में देख ली समाचार पत्र में कि शहीद दिवस मनाल जाते, उस समय हमारे केकरू परिचय नहीं रहे, हम बजात तो रही गांव घर में लेकिन केकरू से कोई परिचय नहीं रहे। हम वहाँ चुपचाप आ गई और वहाँ कोई परिचय रहे तब आखिरी तब हम बैठल रही हुआ, तब वहाँ सब निकल गए रहे, वहाँ का अध्यक्ष और संत कुमार पांडे और लाल रणविजय नाथ सादेव रहे। हमके पूछना बाबू कहाँ घर है रे गीत उत गावी ले का, हम कही नहीं हम तो गीत नहीं गावी, हल्का फुल्का गावी ले लेकिन सारंगी बजावी ले, तब तो दोनों बहुत प्रभावित होने और रणविजय नाथ साहब कहना नाम पूछना है तो कल हमारे नाम होलक हरि मुंडा, तो रणविजय नाथ साहब कि हम मुंडे परिवार से ही ऐसा बोलना है। तो धोती पहन ले रहे और संत कुमार पांडे भी धोती पहन ले रहे और वहाँ का अध्यक्ष भी, तब संत कुमार पांडे भी प्रभावित होना है, पांडे जी हमके अपन डरा ले गए रात के, बहुत बढ़िया विचार वह दिन बनल कि हमारे घर दू गो लेडी मन है गीत गवैया और हम गीत भी जोड़ी ल और गावी ल भी तो रावरे सारंगी बजावी ल, तो एक ठो मंदिरचा खोजू और हमने आकाशवाणी में ऑडिशन देव स्वर परीक्षा देव कही के, कहली बहुत बेस, हम तो वह चाहते रहे कि कैसे आकाशवाणी पहुँचू।
2: हाँ।
3: तो मार्ग अपने स्वतः मिल गल, तब तो वहाँ हमने जब आ गई आकाशवाणी वह साल माने तुरंत दरखास्त पड़ गल और वह साल 77 में ही जुलाई में हकाल ने आकाशवाणी के मैदान जो है अखन दक्षिण साइड ने वहाँ सब तारों तरफ कर कलाकार मान आ रहे हैं, बहुत कुछ रहे तो सब कोई बजात ने अपन अपने दल में, तो हमने भी बजात रही। तो उसी क्रम में सुगिया बहन और तत्कालीन बांसुरी वादक दे रहे हैं जगदीश प्रसाद ठाकुर जेके रोजनी लकड़ा नाम है, तो उ रहे वो दोनों घूम घूम के देखत रहे, तो वो मैंने कुछ दूरी में हमके जाके देखने तब वो मन आपस में बोलना है कि बहुत अच्छा लड़का बजाते हैं सारंगी लेकिन गायक पक्ष कमजोर है, तो इनके अलग से मौका देवल जाए। तो हमके सुगिया बहन हकालें नागपुरिये में कहे बाबू सुनू तो हम कहली का कही गली गुठ के, तो रावर एक छो दरखास्त लिखू, तो हम कहली दरखास्त का दरखास्त लिखा, तो नहीं हेडिंग बता लें कि आकाशवाणी केंद्र निदेशक के कहें कि लिखे कहे और रावर के एक छो अलग से बजाए कोई सारंगी कहें, ग्रुप के साथ तो बजाते ही लेकिन सिर्फ रावर के अकेले धुन बजाए के तो दल तो फेल कर गलक वह दे हम अकेले जो बजा ली सेकरे में पास कर ली और एक्शन तक आकाशवाणी में आज 50 साल पूरा दिली।
2: बहुत बधाई फिर से बहुत बहुत बधाई। तो से बेरा उम्र और कितना हुआत रहे?
3: से अखन 27 लगभग रहे।
2: अच्छा तो रुकी याद है से बेरा कौन धुन के रूरे बजाए?
3: हाँ, याद तो है
2: तनी सुनाब तो।

0: ओहरे कच कच, बड़ा बढ़िया, बहुत बेस लागलक। लेकिन जाने खोजब कि कौन धुन रहे, कौन राग रहे, कौन।
1: मर्दानी झूमर में है, उकर बोल है,

0: बहुत बेस,
1: भैया।
0: बहुत बेस, बहुत बढ़िया गीत। आज 50 साल पूरा हो गल की गीत कर। नहीं
1: हाँ,
0: देखिए, कर लिखल रहे रो, खुद से लिखल है
1: ई
0: कि
1: केकरू लिखने लागे, बहुत पुराना गीत है के, कौन कवि लिख है का करे कर
0: माने
1: केकरू,
0: लोक गीत है के,
1: लोकगीत है के।
0: सुनते सुनाते आवत है।
1: हाँ
0: यह तो है, और आकाशवाणी का यह उद्देश्य भी है, और कि जितना भी कलाकार हैं, जितना भी छोट बड़, जितना भी लुकल हेराल, जितना कलाकार हैं, सबके एक ठीना जुमा करे कर इकर उद्देश्य है आकाशवाणी का। और इस सफर में आगे बढ़ते हैं जाते, जितना भी आज कर दौर में भी जितना कलाकार मन है, उमन के भी संरक्षित करे कर कोशिश आकाशवाणी कर है। और जैसा कि हमारे मन सबको जानी ला हरि मुंडा जी, कि लगभग 99% जो आबादी है हुआ तक आकाशवाणी कर पहुँच है। चाहे भी कोई भी ऐसा मौका हो, चाहे आपदा कर मौका हो, चाहे बहुत खुशी कर मौका हो, सब ठीना आकाशवाणी कर पहुँच है। अब देखब कि देखो, कहे ना नहीं कि समय कर मांग है, और जब दुनिया बदलेला तो अपने आप के भी बदले कर आदमी के जरूरत पड़ेला। अगर खुद के अगर आदमी नहीं बदली नहीं तो आदमी हेराई जाई। तो वह दौर में आकाशवाणी भी चलते जाते, पहले कर दौर रहे रोरेमन जी देख रही, हम तो जे दौर कर उरे बात करे थे, से दौर में तो हम रहबो नहीं करी। तो से बेरा कर दौर और आइज कर दौर काफी कुछ बदल चुकी है। तो पहले कर जमाना में जब रुड़े आए रही, से बेरा आकाशवाणी में का चीज रहे तनी हम जाने खो, जब हमरे मन का सुनू, या भाई महन मन भी जानबे, रोन कर माध्यम से जानबे कि आकाशवाणी में पहले कैसन का रहे।
1: शेष समय आकाशवाणी एगो साधारण अथी में रहे, जहाँ अखन अथी हो वहाँ घर में रही, सब घर नहीं बन रहे, तरह सुविधा नहीं रहे, और स्कूल द्वारा उनकर अथी होत रहे रिकॉर्डिंग
0: वो फीता वाला नहीं।
1: फीता वाला। हाँ वह रहे,
0: अच्छा, तो उकर में और क्या क्या साधन बन रहे, ईसन सारा माइक उक सब व्यवस्था रहे बढ़िया।
1: रहे माइक रहे सुविधा।
0: और वाद्य यंत्र मन
1: वाद्य यंत्र तो उस समय सारंगी बांसुरी के ही अलाव रहे, मतलब साफ लिखल रहत रहे आकाशवाणी कर चिट्ठी में कि सारंगी बांसुरी छोड़ के अन्य साथ माने साज का आवश्यकता नहीं है, उसको अलाउ नहीं करल जाए, ऐसा रहे। हारमोनियम नहीं बजा सकत रही, बेंजो नहीं बजा सक, यहाँ का ट्रेडिशनल चीज मानल जात रहे सारंगी और बांसुरी के ही, टोहिला के फिर मानल जात रहे।
0: टोहिला भी तो अब लगभग विलुप्त हो चुकी है।
1: हाँ
0: तो हियाँ से मान लो कोई कलाकार ठीना अगर वाद्य यंत्र नखे तो देवल भी जात रहे।
1: यहाँ रहे एक ठो सारंगी दिलीप नाथ महलिकर, लेकिन भरसक कर कहते हैं कि अपना साज लेते आओ, तो वो भी क्रम आलक हमारे साथ। एक बार ऐसा कोई अच्छा कलाकार आ रहे हैं तो उस समय दिलीप नाथ महली जो यहाँ कर अस्थाई कलाकार रहे वो नहीं रहे, तो हमके प्रमोद कुमार राय जो संतू भाई के नाम से परिचित रहे, वो कहना है हरी जी से रावरे आए ही, तो ये कलाकार बढ़िया है और अच्छा के होवे के चाही, तो क्या रावरे मोहली के सारंगी बजाए पारबे, तो हम कहली कि उके तो छुई के देखे खोई, तो उके हम देख ली थोड़ा सा 2 मिनट, तो कहली हाँ बाजी, तो उस सारंगी के हम बजाए रही,
0: तो से बेरा कौन धुन के निकसाय रहे। हाँ
1: उ धुन के थमके आज नहीं आवत है सेखन, तो जे गीत गाए रहे सेकरे साथ संगत कर रही हम।
0: हाँ और
1: नहीं
0: उकर बाद लगातार और सफर आगे बढ़ते
1: हाँ
0: चले
1: बढ़ते
0: जाते।
1: गल, उकर बात हमार परिचय सबसे समझू कि जखन यहाँ रांची में आकाशवाणी नहीं रहे, सेखन पटना से होत रहे कार्यक्रम, और उ पीरियड में पांडे

0: एक हमके संभावना के
1: तो
0: कालनी
1: जब आकाशवाणी रांची कर स्थापना होलक तो
0: इकर
1: कितना रोरे मन के फायदा ही कर होलक, जितना भी कलाकार मन ही रोरे मन।
0: सबके फायदा होलक जैसन सखन रहे नहीं खोज खोज के अथी करल जात रहे जब होत रहे तो अच्छा। और उस समय रहे कि मतलब वो पूछे वाला भी और गायक वाला भी सबके अच्छा जानकारी रहत रहे, ये नहीं कि मैंने ये सब राग को कब गाया जाता है ऐसा ऐसा पूछल जात रहे। अखन तो कुछ जानकारिये न के तो गीत डाले कोई समय, उस समय मौसम संबंधी गीत होत रहे और गवैया के भी पूछत रहे कि गायन का समय कब है ऐसा पूछत रहे, बहुत आदमी फेल कर जात रहे उसके में।
1: तो मतलब आकाशवाणी जे है हमरे कर जितना भी संस्कृति है, गीत संगीत है, लोक कला है, सबके संरक्षित करके राखे में एकदम मुख्य भूमिका अपन निभाएला नहीं। अच्छा एक चीज बताओ हरि मुंडा जी, जब पहिल धाव रोरे हिया बजा के बजाए रही से बरा जब रोरे घर घूर के गेली अपन गांव घूर के गेली, आदमी मन कर कैसन रिएक्शन रहे, का मन कर कहना रहे?
0: मतलब गांव घर में सुनने के हरि आज जाते सारंगी बजाए रेडियो तो कई बजे बाजी से लाइव होत रहे, रिकॉर्डिंग नहीं होता लाइव होत रहे प्रोग्राम, तो सब रेडियो खोल खोल के सुनत रहे कि बहुत बजा बाजल बहुत अच्छा बाजल
1: बहुत खुश।
0: हाँ ई गीत के बजा ले ई गीत के बजा ले, गाँव में कहते रहे कहीं धुन रहे ती राकर धुन रहे ऐसा कह के सब कोई बहुत। और उस समय से हमार माने वो आसपास अभियो माने हुजंकर दसों गांव हमके बहुत अच्छा से सब जाने ना।
1: बढ़िया बढ़िया। तो देखो पहले कर तो दौर रहे कि वो ट्रांजिस्टर रहे, रेडियो खोलत रहे, ऊपर में मीटर के मिलात रहे तब जाके रेडियो बाजत रहे, लेकिन अब तो काफी कुछ तकनीक बदल जाए है। अब तो मोबाइल के खोलो, ऐप के निकालो और चिपो, कर बादे गाना शुरू भे जाए, रेडियो शुरू भे जाए, कितना अंतर देखत ही रोरे?
0: देखो दुनिया परिवर्तन कर तो अथी है, परिवर्तन नहीं हुई तो विकासो नहीं हुई।
1: तो मतलब अब मोबाइल का जमाना आ जाए है तो अब तो बड़ा सुलभ, पहले से ज्यादा अब सुलभ हो जाए है आदमी ठीना।
0: हाँ अखन सब कहते हैं कि भाई यूट्यूब में तो रहो, पूछा है ना तो हम के हम
1: आकाशवाणी का ऐप भी है, उगर माध्यम से भी आदमी मन सुन सके ना।
0: कई बार कई आदमी कहने कि भाई तोर वहाँ यूट्यूब में हो, हम कहते सर्च करके देख तो सुना है ना, यूट्यूब में भी बाजत है से सुना है ना।
1: तो मतलब नया दौर में भी कलाकार मन के
0: हाँ।
1: आकाशवाणी बचाए कर आगे कोशिश में लागल है। अच्छा एक चीज बताओ, रोज यंत्र हम देखा थी जे के सारंगी का है ना, काफी पुराना बुझा थे हमके।
0: नहीं ज्यादा पुराना ना के हम समझू कि बहुत सारंगी बना ली, बहुत कोई बने कहना कि हमू सीख, तो हम फ्री में बहुत कोई सारंगी बनाए बनाए के दे ली लेकिन कोई सीखल नहीं। और संरक्षित के लिए हमके वन बंधु परिषद जे बरियात रोड में है वहाँ मांग रहे हैं सारंगी दूठो, जेकर में हमके ऊपर पारिश्रमिक दे रहे हैं मैंने 10,000 रुपया। और फिर 22-23 में खेल गांव में फिर एक ठो सारंगी बनाए के दिल्ली। और इगर बाद 23 के रामदयाल मुंडा संग्रहालय जो मुराबादी है वहाँ हमार देख रेख में 5 ठो सारंगी बनाए के देवल है,
1: अपन बनाल
0: अपन बनाल। और वहाँ थी एक तो अपने बनाल के दिल्ली और वहाँ 5 दिन मैंने 8 दिन का वर्कशॉप रहे जेकर में मिस्त्री मन के हम बनवा ली हमार देख रेख में बन लगे।
1: रोरे जे एखन धरले ही से कितना दिन कर है
0: इकर? लगभग 10 साल हो गया।
1: कैसे के का तरी बना ली बड़ा एकदम इकर में तो देखा थी एक से एक यंत्र लागल है।
0: असल में ना शुरू होलक हमार खेत जगह चना खेत रहे ना स्कूल पीरियड में हमके उस समय चना के मैना चिड़िया मन खात रहे तो माय बाप कहने कि स्कूल जात के पहले जा खेत दे रहे वहे पीरियड में मल्हार जाति मन कर वहे जगह डेरा आ रहे एक तो कटहर गज के नीचे वहे मन के देख ली सारंगी बजाए कर हम प्रभावित हो ली। पहले तू मन छुए नहीं देना है हमके लेकिन बाद में 8 दिन रहली तो छुए देना है तो देखनी कैसे ऐसे तो कैसे बाजेलू मन से हम जानकारी ले ली तो कहना भाई कर में तो ई से ई है तार फार तू को ज्यादा जंत्र तो नखे तो लकड़ी के रहे खोल बना ले चमड़ा से चारल है घोड़ा कर बाल है तार है तो सब देख ली तो घोड़ा बाल कहाँ उपलब्ध हुए तो उस समय तो केकरो से परिचय नहीं तो वो मन कह रहे हैं कि मोरेबा का रस्सी से भी बाजे ला तो मोरेबा का रस्सी से बजात रहे उस समय घोड़ा बाल नहीं मिल रहे। बाद में जब परिचय हो रहे तो गांव घर में अगल बगल में साहु महाजन मने घोड़ा लाना था तू मन से मांग ली तो स्वतः मन दे देना बहुत खुश होना कि हमारे गांव घर का एक तो कलाकार घोड़ा के बाल मांगा थे तो क्या है एक उमन खुशी खुशी दे।
1: तो ये कौन लकड़ी का बनल है?
0: ये एक ठो लकड़ी है जठरोपा
1: अपन से बना ली सारंगी है। आज तो देखो मंच में हमके बड़ा कम देखे के लिए भेटाएला हरि मुंडा जी, तो कैसे तो धीरे धीरे तो विलुप्त होते जाते?
0: नहीं विलुप्त होने का कारण इकर में अब के कहल जाए
1: आकाशवाणी तो अपन देखो पूरा काम करत है और जितना भी कलाकार है रोड़मन देखो आई जरूर 50 साल पूरा हो गलक।

0: तो 50 साल कर मौका में आज रूर मन के रुड़के हमारे मन हका ही बोला ही सत्सम्मान रुड़के फिर से हमारे मन सुनत ही और तब आकाशवाणी तो अपन पूरा उद्देश्य के पूरा करते जाते हरिमुंडा जी, लेकिन हमके लागेला कि जो भी कलाकार हैं वो मन के अगला पीढ़ी तैयार करे कर दरकार है, जैसन कि रोरे ही अगर रोरे अपन कला के अगर दोसर के अगर नहीं बाँटब तो रोठिना सिराई जाए, लेकिन अगला के बाँटब तब तो अगला जानी, तो हमके लागेला कि कलाकार मन कर भी बड़ा भूमिका होएला कि अगला पीढ़ी तैयार करे कर।
1: नहीं नहीं इकर ले तो जब तक आदमी के धैर्य बांध के जोगी नहीं बनाल जाए कहन नहीं कहावत है देहात में तो तरह से नहीं हुई उके तो खुद कही कि भाई हम सीखब तब नहीं कहे कि वहाँ अखन आब राखल है रामदयाल मुंडा का अथी में 5 ठो हुआ 2 ठो 1 ठो हुआ और उकर बाद हमके अचानक रामदयाल मुंडा कर बेटा फोन करना तो कि नहीं हमके एक सारंगी बनाए दे तो उनके एक सारंगी बनाए दे ली
0: तो बनाए नया पीढ़ी मतलब सीखे खोजे
1: लेते हैं। उकर बाद बेड़ो कॉलेज कर एक प्रोफेसर हमके कही रहे तो उकर बाद वो मटिया दे रहे
0: तो फिर हम रोड आकाशवाणी कर रोड सफर है शेखर बटे हम घूरे खोजब हरिमुंडा जी जब रोरे पहिल धाम वाली उकर बादे रोके लगातार हिया कार्यक्रम मिलते चल गया
1: हाँ।
0: तो रोरे हिया फिर जे ऑडिशन हुए रहे बी हाई रोरे भी हो
1: नहीं हाँ, आगे तो बी ग्रेड रही उकर बाद फिर बी हाई ग्रेड कर अथी होला उकर बाद सब भाषा भाषी में संगत करे कर मौका मिललक नहीं उरा मुंडा हो खड़िया संताली पचपनगनिया कुरमाली खोरठा सभी भाषा में यहाँ का
0: सब भाषा में रोले बजाए लगी
1: हाँ, जितना क्षेत्रीय भाषा है सब में संगत कर ली है।
0: देखो हमरे मन कर नागपुरी कर बात अगर हम करब नी दिकर हर मौसम कर हर पहर कर एक ठो गीत अपन होएला
1: हाँ।
0: और सब कर अलग धुन भी होएला
1: हाँ।
0: एखन कर समय में जे धुन बजाल जाएला से के रोले तनिसन बजाए के सुनाब तो
1: एखन जैसे बैसाख आ गेलक नहीं तो उदासी राग गामे हमनी कर क्षेत्र में स्वर है

0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, उदासी राग हो
1: हाँ
0: रखने,
1: उदासी राग
0: बहुत
1: है।
0: बढ़िया। तो हरी मुंडा जी, रोर से हम जाने खोजब कि जब आकाशवाणी से रोरे जुड़ ली, तो हियाँ रोर कुछ तो अनुभव ऐसा होवी, कुछ ऐसा सुखद अनुभव जे कि हमरे मन रोर से जाने खोजब, ऐसा कोनो बात है तो बताओ। तो अपन जे पुराना अनुभव है से कि हम जाने खोजब, कुछ सुखद अनुभव जे रोन के हो है।
1: जब हियाँ से जुड़ ली तो बहुत आदमी एक ठो भावना रहे अगल बगल में, एक ठो कि नहीं माने बिरहोर मलार सारंगी बजाए न, ऐसा भावना रहे। जब सुन लें कि हरी मुंडा तो सब आदमी भौचक रह गए ना, खेरे मुंडा भी बजा ले सारंगी। और यह क्रम में बता थी जब बिरसा चौक में बिरसा जयंती मनाल जात रहे तो उस समय हम भी रही, तो गीत मन बहुत गानों कर बाद हमार नाम लेने की मांडर से आए हैं हरी मुंडा, उस सारंगी बजाएंगे। तो एक ठो मुंडा लड़का वही जंकर रहे, जब मुंडा सुनलक तो उछल पड़लक और हमार आसरा देखा थे मन से घायल कि कखन उतरी कर से भेंट करब। तो ऐसा मन से खन जाति कर भी सोचते रहे कि मलारे भर बजाए न सारंगी, ऐसा भावना रहे।
0: अच्छा, हियाँ और कितना कलाकार मन से रोर संगत करे कर मौका लगलग।
1: तो बताबे कर ली कि पटना जात रहे उनकर से होलक शिबू भाई जे रहे यहाँ कर जे दुर्गा पांडे नाथ राय, उनकर से प्रफुल्ल कुमार राय से बिंदेश्वरी मिश्र से नईमुद्दीन मिर्धा से, इतना पुराना कलाकार। अब खोरठा में शिवनाथ प्रमाणिक, ए के राय, शिवनंदन पांडे गरीब, उराव भाषा से जतरू उराव, रायसन उराव, मैंने मुंडारियो भाषा से रामदयाल मुंडा से 4 बार आकाशवाणी में अति कर ली बजा ली। तो और कतना कतना से उन्होंने कह के न कह सबकर से गुम बजा ली।
0: और कभी दिल्ली भी जाए कर मौका लाग
1: हाँ
0: रहे
1: दिल्ली
0: का।
1: भी गली, हम सारंगी के चूहा काट देते ना चमड़ा के तो अथी ठोक दे रही टीन के, तो हुआ के जे बिलास सालवे रहे कहल कि नहीं नहीं नहीं आपका आयरन नहीं चलेगा, नो नो नो कह के कहते हैं। तो फिर कहली कि सर तो हमको दीजिए 2 घंटा का समय, इसको हम तुरंत चेंज करते हैं। कहले नहीं अबर हम आपको देते हैं। फिर दूसरा साल उदयपुर हकाए रहे हैं, उनमें फिर कहने कि आपका सारंगी चेंज हुआ कि नहीं, तो हम कहली हाँ हो गया। फिर बजाए रही
0: तो
1: तो
0: दिल्ली आकाशवाणी कर बात रूरी बता
1: नहीं
0: थी।
1: आकाशवाणी में दिल्ली में नहीं जा रही, वो थी अखरा एक ठो रहे मंच वहाँ जा रही। और माने कहूँ कि बत्ती पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कर बुलाहट रहे।
0: अच्छा,
1: अच्छा दिल्ली तो हम 3-4 बार गली बजावे, पटना में हकाले एथी मेला सोनपुर मेला में हुआ जा रही, उकर बाद आर्मी डे बनावे हका रहे पटना में, पटना में 2 बार आकाशवाणी में सारंगी बजाई और आर्मी डे गली, फिर सोनपुर मेला गली, आकाशवाणी भेज रहे हैं।
0: पहचान दिवाए में आकाशवाणी कर कितना बड़का भूमिका है, कितना काम आनी जरूरी।
1: हम तो बिल्कुल साधारण एक गरीब परिवार का कहूँ, किसान परिवार, खैर गरीब तो नहीं कह सका थी माने जिए खाए पर रह जमीन, लेकिन जे पहचान आकाशवाणी देलक वो पहचान उनके बुझाएल कि विविध भारती से भी बाजलक गीत बहुत जगह कला के चलते बेली इंडिया कर हमके बुझाएल कि कोई ऐसा राज्य नहीं है जैकि 10 से 15 व्यक्ति हरी मुंडा के नहीं जाने, भले गांव घर कर नहीं जानते लेकिन जाने हरी मुंडा की है सारंगी वादक से। और खास करके सारंगी बादल के बहुत आदमी चॉइस से देखे ना, ऐसे तखन बहुत तरह का साज निकल है लेकिन इके है कि यही ट्रेडिशनल से चीज है। और उदयपुर में जब बुलाए रहे बिलास सालवे तो कहना कि सारंगी आगे चलेगा, उस दिन ना खाली धुन रहे बाजे, तो कहली कि कैसे हुई होगा कह के, कहे कि इसमें बहुत सा तार है, इसमें अगर हमारा धुन से इसको कहेंगे तो नहीं जुड़ सकता, इसलिए इसी का धुन में हम लोग मिलाते हैं, उसके बाद हम आगे आगे चलेंगे। तो हमके लीड करे कोई रहे और हम बहुत अथी करे वहाँ, और माने रेत के बजाय वाला और भी रहे, एक ठो रहे और आसाम बटेकर, एक ठो उड़ीसा कर रहे, लेकिन उमन में आधुनिकता रहे। और ये जे सारंगी नहीं कहना कि यही ट्रेडिशनल चीज है।
0: मतलब आकाशवाणी रोके काफी पहचान देला गोटा
1: हाँ
0: देश
1: बहुत
0: दुनिया
1: पहचान
0: में,
1: हाँ
0: रोके पहचान दिवाई में इकर बहुत बड़
1: बहुत
0: भूमिका
1: बड़ा
0: रखलक।
1: हाथ है।
0: हरि मुंडा जी के जैसन कि हमरे मन सबको ही जानेला कि वंदे मातरम कर 150 साल पूरा हो चुकी छे, तो इ मौका में हमरे मन हर कोई वंदे मातरम के सम्मान हमरे गावत भी, तो हम चाहब कि रोरे भी तनिसन सारंगी में इकर धुन के निकसाऊ।

0: बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगलक हरि मुंडा जी। रोरे आकाशवाणी से जुड़ली और लगातार सेवा रोरे देते आवत थी। आकाशवाणी कर भी एक उद्देश्य है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। एकर उद्देश्य भी है कि सूचना शिक्षा और मनोरंजन जितना भी कलाकार हैं सबके संरक्षित करे कर एक ठो प्रयास में आकाशवाणी लगातार 90 साल से जुटल है और आगे भी कर यात्रा लगातार जारी रही। रोरे मन जितना भी कलाकार है इमन कर भी आकाशवाणी कर बहुत बड़ भूमिका है कि रोर मन के संरक्षित करके राखलक। आगे जैसन के रोरे बताली कि आकाशवाणी से जुड़ ली तो रुके गोटा देश कर आदमी मन रुके जान लें सारंगी कर माध्यम से। तो ऐसा ऐसा जितना भी कलाकार हैं सिक्के आकाशवाणी उमन के बचाए के राखे में अपन बहुत बड़ भूमिका अदा करते आवत है। तो हरि मुंडा जी जाते जाते रोर से हम जाने खोजब कि जे भी नवा कलाकार हैं जे छोट छोट छोट छुआ मन है जे गीत संगीत और ऐसा वाद्य यंत्र से जुड़ल हैं उमन के रूड़े का संदेश देवे खोजिला और आकाशवाणी कर जे श्रोता मन है उमन के रूड़े का संदेश देवे खोजिला।
1: हम चाहब कि इके सरकार से चाहे जैसे भी हो गवर्नमेंट देखन तो बहुत अखरा और झखरा सब बना थे लेकिन इके संरक्षित करे के लिए इके आगे बढ़ाए के लिए कलाकार जे सीखत है सीखे मान दे देवे के पड़ी। बजाते सके तो नहीं जे सीखी सीखे देवे को भी मान दे सिखा सके मिले चाहे नहीं मिले लेकिन जे सीखे चाहते उके मान दे गवर्नमेंट दे तभी के सीख सकत है हमके बुझाएल हमारे तो यही नजर आवेल।
0: और आधुनिकता जे अखन धीरे धीरे हमरे मन कर गीत संगीत में आते जाते उके का देखिए।

0: जरूरी, कैसे देखिला?
1: देखो वो आधुनिकता समय के अनुसार वो ठीक है, लेकिन आधुनिकता कर कलाकार मन से भी हम आग्रह करब, वो तो इलेक्ट्रिक से बाजत है, वो मन के वॉल्यूम कम करके सारंगी के भी संगे बजाय चाही या बांसुरी के भी, तो सब बाजी तोहिला भी जहिया जब हो रहे दूरदर्शन उद्घाटन श्यामली हॉल में, उस दिन भी हमने जाए रही और जगदीश प्रसाद ठाकुर बजात रहे बांसुरी, हम सारंगी, तोहिला में एक तो हनी पंसारी रहे, सबकर अच्छा आवाज आ रहे, तो खास करके ऑपरेटर मन भी गलती है और जो आधुनिक साज बजात है नहीं, वो मने खाली कर सोचे ना कि हमारे आवाज जाए, ऊ के सोचे हुए अगर वॉल्यूम ठीक करके अगर सारंगी के साथ चले तो बाजी
0: एकदम सही बात है भाई, कि हमरे मन के अपन जे भी पारंपरिक चीज है से के हमरे मन के बचाए के रखना है, चाहे गीत हो चाहे वाद्य यंत्र हो, आई जे के बचाए कर बहुत दरकार है। आकाशवाणी लगातार इकर में जुटल है, अपन जे भी कलाकार हैं, जे भी वाद्य यंत्र हैं, जे प्राचीन सभ्यता संस्कृति है, से कि धीरे धीरे आगे बढ़ाए में आकाशवाणी बड़ा मुग्ध योगदान है। तो हरि मुंडा जी रोरे हमरे मन कर स्टूडियो में आली, अपन 50 साल कर जी अनुभव है आकाशवाणी से, जैसे कैसे रोरे जुड़ ली और इकर माध्यम से रोके कैसे कैसे पहचान मिलक, सारा सफर के रोरे बड़ा बढ़िया से बता ली। तो आशा करीला रो इसने लगातार सफर आगे बढ़ते जाए, आकाशवाणी से रोरे इसने जुड़ ले रहो, तो रोरे अपन समय के दिली आकाशवाणी से जुड़ ली, इकर ले बहुत बहुत धन्यवाद, लगे तब जोहार।
1: जो है।

0: बहुत बहुत धन्यवाद हरिमुंडा जी, लाइ तब जवाब।
1: जोहार जोहार।
2: अभी आप सुन रहे थे स्वर यात्रा के 90 वर्ष, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के।
3: से प्रेरणा लेता है तो कभी किताबों से। सिनेमा की प्रेरणा की एक और धारा रही है और वो है दूसरी भाषाओं के सिनेमा का हिंदी रूपांतरण या रीमेक। दिलचस्प बात यह है कि हिंदी सिनेमा ने दुनिया की तमाम भाषाओं की फिल्मों से प्रेरणा ली है, अंग्रेजी से भी और अन्य विदेशी भाषाओं की फिल्मों से भी। पर आज हम उन फिल्मों की बातें करेंगे जो क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों से प्रेरित हैं या उनका हिंदी रीमेक है। चूंकि हम मुंबई महाराष्ट्र से इस कार्यक्रम को पेश कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले उन फिल्मों की बातें जो मराठी से हिंदी में रीमेक की गई हैं। अगर हम इतिहास की ओर झांकें तो पाएंगे कि जाने माने निर्देशक वी शांताराम ने नारायण हरि आप्टे के उपन्यास ना पटनारी गोष्ठ पर आधारित एक मराठी फिल्म बनाई कुंकू। इसी फिल्म को हिंदी में उन्होंने दुनिया ना माने के नाम से बनाया। ऐसी ही एक और मिसाल थी वी शांताराम की फिल्म शेजारी, जो हिंदी में पड़ोसी के नाम से बनाई गई थी। मराठी फिल्मों के हिंदी रीमेक की परंपरा में कई ऐसी फिल्मों के नाम आते हैं जो आपको हैरत में डाल दें, जैसे राज खोसला की फिल्म मेरा साया। सन 1966 में आई ये फिल्म असल में 1964 में आई राजा परांजपे की मराठी फिल्म पाठ लाग का हिंदी रीमेक थी। मराठी फिल्म के मुख्य कलाकार थे काशीनाथ घाणेकर और भावना। इस फिल्म को जीडी माडगुलकर ने लिखा था। यहाँ एक दिलचस्प बात, पाठलाग जयंत देवकोड़े के उपन्यास आशा परत येते पर आधारित थी। इस फिल्म ने मराठी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि सन 2009 में आई श्याम बेनेगल की फिल्म वेल डन अब्बा अभय कीर्ति की एक मराठी फिल्म का रीमेक थी। इसी तरह से नागराज मंजुले की फिल्म सैराट 2016 में आई थी, इसका हिंदी रीमेक धड़क के नाम से बना। कृति सेनन की कामयाब फिल्म मीमी साल 2011 में आई मराठी फिल्म मला आई वाईचाय का हिंदी रीमेक थी। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि तमिल फिल्मों के हिंदी रीमेक का सिलसिला काफी पुराना है। सन 1951 एम वी रमन ने एक फिल्म बनाई बहार, जिसके जरिए अभिनेत्री वैजयंती माला ने हिंदी सिनेमा में अपना पहला कदम रखा था। ये फिल्म एवी मैयप्पन की तमिल फिल्म वजकई का रीमेक थी। चूंकि हम तमिल से हिंदी में बनी फिल्मों की चर्चा कर रहे हैं तो अब यहां जिक्र कर लिया जाए सन 1955 में आई फिल्म आजाद का। दिलीप कुमार और मीना कुमारी के अभिनय वाली ये फिल्म एस एम श्री रामुलु नायडू की तमिल फिल्म मलयक्कालन का हिंदी रीमेक थी।

0: भी खबर है।
1: सन 1957 में आई एलवी प्रसाद की फिल्म मिस मैरी के कलाकार थे मीना कुमारी और किशोर कुमार, पर असल में ये फिल्म प्रसाद की ही तेलुगु और तमिल दोनों भाषाओं में बनी फिल्म मसीमा अम्मा का हिंदी रीमेक थी। सामाजिक फिल्मों का दौर था, तमिल से धड़ाधड़ हिंदी रीमेक बन रहे थे। 1963 में आई फिल्म दिलेक मंदिर सी वी श्रीधर की तमिल फिल्म मनिंजिल और आलयम का हिंदी रीमेक थी। कलाकार थे राजेंद्र कुमार, राजकुमार और मीना कुमारी। संगीत शंकर जयकिशन का था।
2: दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है।
1: इसी तरह सन 1965 में आई फिल्म खानदान तमिल फिल्म भागा पिरिविनाई का हिंदी रीमेक थी।
2: तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा।
1: फिल्म दो कलिया एक तमिल फिल्म का रीमेक थी, जबकि हाथी मेरे साथी सेंडो एम ए चिनप्पा थेवर की तमिल फिल्म देवा चयाल का हिंदी रीमेक थी।
0: चल चल चल मेरे साथी, ओ मेरे हाथी।
1: सन 1988 में आई फिल्म दयावान मणिरत्नम की तमिल फिल्म नायकन का हिंदी रीमेक थी, जबकि हिंदी फिल्म सिंघम तमिल फिल्म सिंघम का ही रीमेक थी। मणिरत्नम की तो कई फिल्मों का हिंदी रीमेक हुआ है, जैसे साथिया उन्हीं की तमिल फिल्म अलैपुथे का हिंदी रीमेक थी।
3: साथिया, साथिया।
1: दक्षिण की भाषाओं में मलयालम से भी हिंदी में कई फिल्में बनी हैं। सन 1974 में आई जय ओम प्रकाश की फिल्म आपकी कसम असल में मलयालम फिल्म वाजवे मायम का हिंदी रीमेक थी। मलयालम में इसे के एस सेतु माधवन ने बनाया था।

0: चूंकि जिक्र के एस सेतु माधवन का चला है तो आपको बता दें कि सन 1975 में उन्होंने अपनी ही मलयालम फिल्म चट्टकारी का हिंदी रीमेक बनाया जिसका नाम था जूली।
1: जूली, आई लव यू।
0: सन 1970 में आई फिल्म द ट्रेन 1967 में आई मलयालम फिल्म कोचीन एक्सप्रेस का हिंदी रीमेक थी। नए दौर को देखें तो प्रियदर्शन की फिल्म भूल भुलैया सन 1993 में आई मलयालम फिल्म मणिचित्र तजू का हिंदी रीमेक थी। मलयालम से अब चलते हैं तेलुगु सिनेमा की तरफ। सन 1967 में आई जितेंद्र और बबीता की अभिनय वाली फिल्म फर्ज।
2: मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं, सारा जहां है मेरे लिए।
0: फिल्म फर्ज के निर्देशक थे रविकांत नागाइच। ये फिल्म 1966 में आई तेलुगु फिल्म गुडचरी 116 का हिंदी रीमेक थी। तेलुगु से हिंदी में बनी एक बहुचर्चित फिल्म है एक दूजे के लिए।

0: 1981 में आई इस फिल्म के निर्देशक थे के बालचंदर। ये फिल्म उन्हीं की तेलुगु फिल्म मारो चरित्र पर आधारित थी। इस फिल्म के जरिए अभिनेता कमल हासन ने हिंदी सिनेमा की दुनिया में कदम रखा था। सिनेमा हमेशा से ही कहानियों की तलाश में रहता है और नई कहानियां खोजना कोई आसान काम नहीं है। जाहिर है कहानियों की तलाश में फिल्मकार सारी दुनिया की फिल्में देखते हैं और अगर कोई फिल्म उन्हें लुभाती है तो वे अधिकार लेकर अपनी भाषा में अपने तरीके से उसे बनाना चाहते हैं। हिंदी फिल्म के निर्माता निर्देशकों ने बांग्ला की कई फिल्मों को हिंदी में बनाया। सन 1957 में आई कृष्ण पंजू की फिल्म भाभी बांग्ला फिल्म भांगा गारा का हिंदी रीमेक थी। इसी तरह सन 1958 में आई राजखोसला की फिल्म काला पानी। देवानंद मधुबाला और नलिनी जयवंत इस फिल्म के कलाकार थे। ये फिल्म अग्रदूत के निर्देशन में बनी बांग्ला फिल्म सबर उपरे का हिंदी रीमेक थी। बांग्ला से हिंदी में बनी प्रमुख फिल्मों में एक है छोटी सी मुलाकात। बांग्ला में इसे अग्रदूत ने अग्नि परीक्षा के नाम से बनाया था और ये बांग्ला फिल्म आशापूर्णा देवी के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी।
1: छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, प्यार बन के गले का हार बन गई।
0: सन 1966 निर्देशक असित सेन ने एक फिल्म बनाई ममता। इस फिल्म के कलाकार थे सुचित्रा सेन, धर्मेंद्र और अशोक कुमार। ये फिल्म बांग्ला फिल्म उत्तर फाल्गुनी का हिंदी रीमेक थी।

0: क्या आप जानते हैं कि 1968 में आई चर्चित कॉमेडी फिल्म पड़ोसन भी एक बांग्ला फिल्म का रीमेक थी। सन 1952 में आई ये बांग्ला फिल्म थी पाशेरबाड़ी, जो अरुण चौधरी की इसी नाम की कहानी पर आधारित थी। सन 1969 में आई फिल्म खामोशी के निर्देशक थे असित सेन, कलाकार थे वहीदा रहमान और राजेश खन्ना। दरअसल असित सेन ने अपनी ही बांग्ला फिल्म दीप ज्वेले जाई को हिंदी में दोबारा बनाया था और इस फिल्म ने कल्ट फिल्म का दर्जा हासिल किया।
1: वो शाम कुछ अजीब थी।
0: बांग्ला से हिंदी में आई कई ऐसी फिल्में हैं जो कल्ट फिल्मों का दर्जा हासिल कर चुकी हैं। सन 1970 में आई फिल्म निशी पद्मा को शक्ति सामंत ने बनाया था और इसे नाम दिया अमर प्रेम। इसी तरह 1975 में आई गुलजार की फिल्म खुशबू बांग्ला फिल्म पंडित मोशाय का हिंदी रीमेक है। कुल मिलाकर कहानियों की अपनी यात्रा होती है। विश्व सिनेमा के इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि एक ही कहानी पर न जाने कितनी भाषाओं में अपने अपने तरीके से फिल्में बनी हैं। ठीक यही बात भारत के बारे में भी है। इतनी सारी क्षेत्रीय भाषाएं, उनका अपना साहित्य और सिनेमा, इसलिए कहानियां भाषाओं का पुल पार करके इधर से उधर और उधर से इधर आती रहती हैं। ये था संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक। जैसा कि आप जानते हैं, आकाशवाणी अब अपने 90 वर्ष की ओर अग्रसर है। इस गौरवशाली यात्रा को शुभकामनाएं देते हुए जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह ने ये बातें कहीं।
2: एक ऐसे युग की कहानी जिसका नाम है आकाशवाणी, और जिसने वो हवाएं देखी, वो रातें देखी, वो दिन देखे, वो तूफान देखे, लेकिन उसके बाद भी मैं खड़ी हूँ क्योंकि मैं आकाशवाणी हूँ। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस आकाशवाणी को, जिसने पूरे 90 साल पूरे कर लिए हैं और आगे बहुत सी जनरेशन में इसका नाम सुनना और बाकी रहेगा। धन्यवाद।
0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के मौके पर ये थे जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह के उद्गार। मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। इस बरस 10 मई को मदर्स डे था। इस दिन पूरी दुनिया में मातृशक्ति को नमन किया जाता है, इसलिए चित्र भारती के इस अंक में हम लेकर आए हैं विशेष लघु रूपक मेरे पास माँ है।
3: मेरे पास माँ है।
0: हिंदी सिनेमा में माँ का किरदार हमेशा से ही बड़ा अहम रहा है। अगर आप पुराने जमाने की फिल्में देखें तो पाएंगे कि माँ सफेद साड़ी में लिपटी दुखियारी स्त्री हुआ करती थी। एक ऐसी माँ जो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए दुनिया भर के दुख सहती है। लीला चिटणीस, निरूपा राय, दुर्गा खोटे, सुलोचना, अचला सचदेव जैसी अभिनेत्रियों ने इस तरह की माँ के किरदार खूब निभाए। फिल्म शहीद में कामिनी कौशल ने निभाया था शहीद भगत सिंह की मां का सशक्त किरदार।
4: तू न रोना के तू है भगत सिंह की मां।

मदर इंडिया महबूब खान ने बनाई थी। ये फिल्म सन 1957 में आई थी। इस फिल्म में अभिनेत्री नरगिस ने माँ राधा का अमर किरदार निभाया था। एक ऐसी माँ जो अपने उसूलों के लिए अपने बेटे को गोली तक मार देती है। नरगिस मदर इंडिया में एक त्यागमयी माँ ही है। वो अपने बच्चों के लिए दुनिया का हर दुख से

पर उनका किरदार तब ज्यादा सशक्त बनता है जब वो नैतिकता और संस्कारों को अपनी बेटी से ज्यादा महत्व देती हैं। वो गलत रास्तों का साथ नहीं देती। हिंदी सिनेमा में माँ हमेशा त्याग की मूर्ति रही है। वो अमूमन अपने बेटे के लिए गाना गाती है, जैसे फिल्म मुझे जीने दो में वहीदा रहमान का किरदार।

0: माँ के सशक्त किरदार भी बीच बीच में आते रहे हैं। फिल्म मुगले आजम में माँ यानी जोधाबाई का किरदार निभाया दुर्गा खोटे ने। ये किरदार अनमोल है। जोधाबाई अपने उसूलों पर अडिग हैं और वो अपने बेटे का विरोध करती हैं।
1: एक बेरहम शहंशाह के कैदखाने में सलीम की अनारकली दम नहीं तोड़ेगी। मुझे इस परवाने आजादी पे उनकी मोहर चाहिए।
2: अनारकली आजाद नहीं की जाएगी।
1: क्यों नहीं की जाएगी?
2: खामोश, एक शहजादे को अपना फर्ज नहीं भूलना चाहिए।
0: निरूपा राय ने फिल्म दीवार में माँ का एक ऐसा किरदार निभाया जिसने हिंदी सिनेमा का इतिहास ही बदल दिया। इस फिल्म का एक संवाद है, मेरे पास माँ है। जिंदगी की राहों पर गलत मोड़ पर मुड़ चुके एक बेटे के साथ रहना इस माँ को मंजूर नहीं है। वो अपने उसूलों के तहत उस बेटे के साथ रहती है जो पुलिस वाला है।
3: ये बंगला, ये गाड़ी, ये रुपया पैसा, ये सब तुम्हारे लिए, ये सब कुछ तुम्हारा है और तुम्हें मुझे छोड़ के जा रही हो।
4: विजय, बड़ा सौदागर बन गया है रे। मगर एक बात बोलो, अपनी माँ को खरीदने की कोशिश मत। तू अभी इतना अमीर नहीं हुआ बेटा कि अपनी माँ को खरीद सके।
0: इसके साथ ही सख्त अनुशासन वाली माँ का किरदार भी कुछ फिल्मों में आया है, जैसे फिल्म खूबसूरत में।

0: दीना पाठक का किरदार। उनके नियम कायदे इतने कठोर हैं कि उनके खिलाफ बगावत हो जाती है।
1: सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो।
0: फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के जरिए ये परिदृश्य बदला। फरीदा जलाल ने इस फिल्म में एक आजाद ख्याल माँ का किरदार निभाया था। वो अपनी बेटी की दोस्त ज्यादा है, एक ऐसी माँ जो अपनी बेटी का हौसला बढ़ाती है कि वो अपनी मर्जी से अपने जीवन साथी का चुनाव करे। आगे चलकर सन 2012 में हिंदी सिनेमा और भी बदल गया, जब श्रीदेवी ने फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अपनी बेटी के साथ रिश्ता बेहतर बनाने के लिए अंग्रेजी सीखती है, नए सिरे से अपनी पहचान बनाती है।
1: नौराई माची लाड़ाची लाड़ाची गा, अपड़ही ला चंद्राची चंद्राची गा।
0: सन 2018 में आई बधाई हो, इस फिल्म में नीना गुप्ता ने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अधेड़ उम्र में माँ बनती है। हिंदी सिनेमा में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये एक क्रांतिकारी किरदार था। हिंदी सिनेमा में माँ पर बहुत सारे गाने भी लिखे गए हैं, एक से बढ़कर एक गाने। फिल्म राजा और रंक।

0: 90 के दशक के बाद हिंदी सिनेमा में माँ का रूप बदला है। अब वो दुखियारी नहीं रही, वो मॉडर्न हो गई है। वो अपने बच्चों के जज्बात को समझती है, वो उनका साथ भी निभाती है। फिल्म नील बटे सन्नाटा में स्वरा भास्कर ने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया था जो अपनी बेटी का पढ़ाई में हौसला बढ़ाने के लिए उसके ही स्कूल में एडमिशन लेती है। नए जमाने की माँ ज्यादा फैशनेबल और कंटेम्प्ररी है, वो जमाने के साथ चलती है, वो नई पीढ़ी की उम्मीदों को समझती है और उनका साथ निभाने की पूरी कोशिश करती है। नए जमाने की फिल्मों में भी कुछ बेमिसाल गाने आए हैं जो माँ को समर्पित हैं। फिल्म तारे जमी पर।
1: मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं।
0: फिल्म ABCD 2।
2: जब जब मुझे पे उठा सवाल मारी तेरी चुनरिया लहरा।
0: जमाना बदल रहा है और इसी तरह बदल रहा है हिंदी सिनेमा में माँ का किरदार।
3: मेरे पास माँ है।
0: ये था लघु रूपक मेरे पास माँ है, रुपहला पर्दा रुपहली बातें। इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात गीतकार योगेश के साथ। 29 मई को होता है उनकी याद का दिन।

0: संगीतकार योगेश का जन्म 19 मार्च 1943 को हुआ था। उन्होंने अपना करियर सन 1962 में फिल्म सखी रॉबिन के जरिए शुरू किया था।
1: तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बाहर आ जाए।
0: सन 1971 में फिल्म आनंद में उन्होंने लिखा ये गाना।

0: विशेष ललित हिंदी वाले अपने गानों के लिए जाने जाते हैं। 29 मई 2020 को योगेश इस फानी दुनिया को छोड़कर चले गए। विविध भारती के संग्रहालय से हम आपके लिए लेकर आए हैं उनकी एक अनमोल रिकॉर्डिंग के अंश।
1: दर आप लखनऊ चले गए, मतलब ये सोच लिया कि गीतकारी अब नहीं करनी है?

0: हाँ कुछ होगा, अच्छा होगा तभी, नहीं तो नहीं, क्या क्या करेंगे, देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बस उसके बाद अचानक जो है वो एक टेलीग्राम आया अपना सविता चौधरी जी का कि योगेश कहाँ हो तुम, फौरन आओ। तो फिर हम यहाँ पर आए तो पता लगा कि वो दो गाने जो हैं वो LB लक्ष्मण जी ने खरीद लिए और वो अन्नदाता पिक्चर बना रहे हैं, और अन्नदाता में उनको वही राइटर चाहिए जिसने ये गाना लिखा है, नैन हमारे सांस सकारे कहीं दूर जब दिन ढल जाए।
1: ओहो,
0: और ऋषिदा ने भी वो गाने, ऋषिदा अमिताभ जी ऐसा सुना मैंने, दादा बता रहे थे, और राजेश खन्ना, ये तीनों, कहीं मीटिंग थी, आनंद का चल रहा था, जो कुछ भी, तो इन लोगों को दोनों गाने ऋषिदा को चाहिए थे, कहीं दूर जब दिन ढल जाए और नैन हमारे। तो लक्ष्मण जी ने बोला कि नैन हमारे तो हम एक गाना कोई भी ले लो। तो मैं सेट पे जब जाता था तो राजेश खन्ना हमेशा मुझे बोलता था, जो योगेश जी को दूसरा गाना भी दिलवाइए ना, ऐसा करके बोलता। मैंने मेरे मेरे हाथ में किधर है।
1: जी
0: तो फिर अन्नदाता पिक्चर मैंने पूरी लिखी।

0: मुझे खुद भी बड़ा ताज्जुब है इस बात का कि मुझे दादा के साथ कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई उस टाइम पे, ना टेप रिकॉर्डर ना कुछ। और दादा ने बोला कि कल ही मुझे पूरा मुखड़ा योगेश तू लिख करके दे, और मैंने उन्होंने ट्यून मुझे दी, और मैं ट्यून लेकर के पेडर रोड से बस में बैठा, और मैं भगवान से मना रहा था कि कहीं पे लाउड स्पीकर पे कोई हिट गाना ना बज जाए कि मैं ट्यून भूल जाऊं।
1: बहुत अच्छी बात है।
0: और मैं चला जा रहा हूं, और जैसे ही मैं गोरेगांव घर पे आया तो एक मुखड़ा बना, मैंने जल्दी से उसको जाकर के लिखा। मैंने, दादा आप कल की बात कर रहे थे मुखड़ा, आप देख लो दादा ये कैसा है क्या है, कितनी बड़ी ट्यून, कितना कॉम्प्लिकेटेड मुखड़ा लोग बोलते थे, मगर आप देखिए गुजर जाए दिन दिन दिन के हर पल गिन गिन गिन, किसी की हाय यादों में, किसी की हाय बातों में, किसी से मुलाकातों में, कि ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन, गुजर जाए दिन दिन दिन, इतना बड़ा मुखड़ा। मुझे पता नहीं कैसे क्यों कैसे याद हो जाता था दादा के साथ, मालूम नहीं।

रुपहला पर्दा, रुपहली बातें, इस श्रृंखला में अभी आपने सुनी गीतकार योगेश की ये अनमोल रिकॉर्डिंग। स्मृति शेष। एक मई को गुजरे जमाने के अभिनेता सुदेश कुमार का निधन हो गया। 17 मार्च 1931 को पेशावर में सुदेश कुमार का जन्म हुआ था। जब वो बहुत छोटे थे तब परिवार मुंबई आ गया था। पिता चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, लेकिन सुदेश कुछ और चाहते थे। सुदेश कुमार का कपूर खानदान से पुराना नाता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद पृथ्वीराज कपूर के थिएटर ग्रुप में शामिल हो गए सुदेश कुमार। उनकी शुरुआती फिल्मों में पृथ्वीराज कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म पैसा शामिल है, जो सन 1957 में आई। इसके बाद सुदेश कुमार ने कई फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं की, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली 1959 में आई फिल्म छोटी बहन के जरिए। सन 1961 में आई फिल्म सारंगा, इस फिल्म में सुदेश कुमार हीरो थे।

आगे चलकर फिल्मों में कई सहायक भूमिकाएं निभाई सुदेश कुमार ने। 70 के दशक में वो बन गए प्रोड्यूसर। उन्होंने जो फिल्में बनाई उनके नाम है मन मंदिर, उलझन, बदलते रिश्ते और जान हथेली पे। 1 मई 2026 को 95 बरस की उम्र में सुदेश कुमार ने आखिरी सांस ली। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का मई महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती के मुंबई स्टूडियोज में किया गया।

0: अब हमारे श्रोताओं से ज्यादा बात करने का वक्त बिल्कुल नहीं। उम्मीद है कि आज की विविधा उन्होंने अपने दिल में संजो के रख ली होगी और अगली विविधा तक के लिए हमें ले लेनी चाहिए इजाजत। अमर जी, तो अब करें अपने श्रोताओं को सलाम और लें उनसे विदा।
1: बिल्कुल लेंगे।
0: तो अब लेते हैं इजाजत अपने श्रोताओं से। आप सभी को आपकी दोस्त मनीषा जैन,
1: और अमरकांत का नमस्कार।
0: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: ये आकाशवाणी है। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार बढ़ाने, हरित प्रौद्योगिकी अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन और जनसंपर्क में सहयोग के नए रास्ते तलाशेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी। श्री मोदी की इस यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। इससे पहले कल हेग में प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के बीच वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया। उन्होंने उभरते क्षेत्रों में अधिक सहयोग का आह्वान किया।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।

0: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से सीएनजी की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 80.09 रुपए, गाजियाबाद और नोएडा में 88.70 रुपए और गुरुग्राम में 85.12 रुपए हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी आईजीएल ने सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। केरल से दिल्ली आ रही तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में आज तड़के आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, कुछ रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। यह घटना मध्य प्रदेश के रतलाम में कोटा डिवीजन के लूणी, रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच तड़के 5:20 पर हुई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। आंध्र प्रदेश में एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत युवा संगम का 6ठा चरण कल से शुरू हो गया। तिरुपति के जिलाधिकारी डॉक्टर एस वेंकटेश्वर ने जिले के येरपेटू स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT में इसका उद्घाटन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, बौद्धिक विकास और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम 27 मई तक चलेगा। टेनिस में यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना ने इटालियन ओपन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। 7वीं वरीयता प्राप्त एलिना ने फाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को हराया। आज इटली के जैनिक सिनर का मुकाबला नॉर्वे के कैस्पर रूट से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 8:30 से खेला जाएगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लिया रोली कार्नेंडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल, ये कार्यक्रम लेकर हाजिर होते हैं बस कुछ ही पलों में।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के युगल सुरों में गुलशन बावरा की रचना आपने सुनी। कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी। हाथ की सफाई फिल्म का ये गीत आपने सुना।

0: अख्तर रोमानी की लिखे इस गीत की तर्ज बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आप सुन रहे थे दो गाना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। फिल्म थी हसीना मान जाएगी।
1: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
0: यादों की महफिल ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।

आप सुन रहे थे दयावान फिल्म का गीत, पंकज उदास अनुराधा पौडवाल के युगल सुरों में। अजीज काजी का लिखा यह गीत था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। साजन फिल्म का यह गीत है, पंकज उदास की आवाज में, समीर के बोल, नदीम श्रवण की तर्ज।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

फिल्म नाम में आप सुन रहे थे पंकज उदास और साथियों को, आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। मेला फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर के स्वरों में, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत है राहुल देव बर्मन की तर्ज।

0: आशा भोसले, किशोर कुमार की आवाजों में ये युगल गीत आप सुन रहे थे फिल्म रल्ला वारिस से। अनजान के बोलों को सुरों में ढाला था कल्याण जी आनंद जी ने। श्रोताओ, यादों की महफिल इस कार्यक्रम की यही थी आखिरी पेशकश।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
0: यह है विविध भारती राज।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर श्री मोदी स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी।
3: प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर स्वीडन के उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है और कारोबारी समुदाय इस दौरे के परिणामों को लेकर काफी आशावान है। आकाशवाणी से बातचीत में इंडियन स्वीडन बिजनेस काउंसिल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्री रॉबिन सुखिया ने जन से जन संपर्कों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी बार मेजबानी करना स्वीडन के लिए अत्यंत उत्साह और गर्व का विषय है। इस बैठक में दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जा सकती है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करी जा सकती है। दोनों नेता हरित परिवर्तन, AI, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लाइमेट एक्शन और जन से जन संपर्कों जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
2: इससे पहले कल हेग में प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के बीच वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। भारत ने कहा है कि हॉर्मुस जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को उचित नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने

ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक चलेगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से सीएनजी की कीमतों में 1 रुपये की बढ़ोतरी की है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी आईजीएल ने सीएनजी की कीमतों में 2 रुपये की वृद्धि की थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेनें चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार ये फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। टेनिस में यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना ने इटालियन ओपन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। 7वीं वरीयता प्राप्त एलिना ने फाइनल में अमरीका की कोको गॉफ को हराया। आज इटली के यानिक सिनर का मुकाबला नॉर्वे के कैस्पर रूट से होगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लिया रूली कार्नेंडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा विवाद मामले में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने राज्य सरकार से मांगी पूरी जानकारी, 23 मई को होगी अगली सुनवाई। केंद्र सरकार ने चांदी के आयात पर लगाया प्रतिबंध, मुक्त से प्रतिबंध श्रेणी में रखी गई चांदी, अब आयात के लिए सरकारी लाइसेंस जरूरी। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री देश के सर्वश्रेष्ठ जिलाधिकारियों की सूची में हुए शामिल, देश के 100 जिलाधिकारियों को भी सूची में मिला स्थान। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस को लेकर राज्य भर में चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान, हेल्पलाइन नंबर 104 पर 24 घंटे मरीजों को दी जा रही है सलाह। और भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने कहा, ऑस्ट्रेलिया दौरे और FIH महिला हॉकी नेशंस कप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी टीम। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स में हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं, इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से जुड़े नियुक्ति विवाद मामले में गठित वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अध्यक्ष गौतम कुमार चौधरी ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान राज्य सरकार को नियुक्त अभ्यर्थियों से संबंधित पूरी जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इसमें नियुक्ति से जुड़े कार्यालय आदेश, विषयवार और श्रेणीवार प्राप्तांक, जिलावार मेरिट सूची सहित अन्य दस्तावेज शामिल हैं। SDPO बैजू राम ने बताया कि मामले की अगली सुनवाई 23 मई को होगी।

0: भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। सरकार ने पिछले सप्ताह कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री को फेम इंडिया मैगजीन और एशिया पोस्ट द्वारा जारी देश के सर्वश्रेष्ठ जिलाधिकारियों की सूची में स्थान मिला है। देश भर के करीब 800 जिलों के अधिकारियों के कार्यों के अध्ययन के बाद तैयार इस सूची में उन्हें बेहतर प्रशासन, जन सरोकार और विकास कार्यों के आधार पर चुना गया है। चयन प्रक्रिया में प्रशासनिक क्षमता, प्रभावी गवर्नेंस, नवाचार, संकट प्रबंधन और जनभागीदारी जैसे मानकों को शामिल किया गया। इस सूची में देश भर के 100 जिलाधिकारियों को स्थान मिला है। पूर्वी सिंहभूम में जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने वन विभाग की डीएफओ सबा आलम अंसारी के साथ मानगो से सटे दलमा पहाड़ की तलहट्टी के विभिन्न क्षेत्रों का संयुक्त निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान क्षेत्र को पर्यावरण और पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की योजना पर सहमति बनी। प्रस्ताव के तहत चंद्रावती नगर, गोपाल नगर, कुमरुम बस्ती और पार्डी के आसपास पार्क, तालाब, पाथवे और बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क विकसित किए जाएंगे। इन क्षेत्रों को इको टूरिज्म केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है। विधायक ने कहा कि दलमा की तलहटी प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है और यहां पर्यावरण अनुकूल विकास कार्य किए जाएंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक सैंडल एटीआईआर न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक सैंडल एटीआईआर न्यूज _ रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल एआईआर न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। इधर राज्य के स्वास्थ्य विभाग की ओर से नागरिकों को नियमित व्यायाम करने, फल और सब्जियों का अधिक सेवन करने और वजन नियंत्रित रखने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी या शिकायत के लिए 24 घंटे संचालित हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क करने की सुविधा उपलब्ध है। रांची पुलिस ने वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन के निर्देश पर चलाए गए ऑपरेशन प्रहार के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए पिछले दो दिनों में 100 से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अभियान के दौरान 220 से ज्यादा लंबित वारंटियों को अभी निष्पादन किया गया, जिसमें रांची पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक माना जा रहा है। रांची पुलिस ने कहा है कि अपराध नियंत्रण और संगठित अपराध पर कार्रवाई के लिए भविष्य में भी इस तरह के अभियान लगातार जारी रहेंगे। रांची के कांके थाना क्षेत्र में पुलिस ने पेट्रोल पंप संचालकों को सख्त चेतावनी जारी की है कि ईंधन की कृत्रिम कमी पैदा करने, जमाखोरी या सप्लाई रोकने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और पेट्रोलियम अधिनियम 1934 के तहत कार्रवाई होगी। पुलिस ने निर्देश दिया है कि सभी पंपों पर पेट्रोल डीजल की आपूर्ति सामान्य रखी जाए, स्टॉक और सरकारी दरें बोर्ड पर प्रदर्शित हों और एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और आपातकालीन वाहनों को प्राथमिकता दी जाए। बिना हेलमेट वाले दोपहिया चालकों और खुले बर्तन में पेट्रोल डीजल देने पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। साथ ही भीड़ होने पर तुरंत पुलिस को सूचना देने को कहा गया है। थाना प्रभारी साक्षी जमुआर ने कहा कि नियमों की अनदेखी करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देवघर जिले की पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 30 किलो अवैध गांजा बरामद किया है। देवघर के एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
1: लोगों की सूचना के आधार पर एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और वहां पे छापामारी की गई, तो वहां पे 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। ये लोग गांजा

0: अगरतला से लेके आए थे और यहाँ पे डिलीवर करने वाले थे। उसके बाद उन तीनों का प्रयुक्ति बयान के आधार पे और तीन नाम सामने आए और वो तीनों देवघर के रहने वाले थे जो उनसे गांजा खरीदते थे और यहाँ पे सप्लाई करते थे।
1: कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने भोजपुरी और मगही भाषा पर कहा है कि जिन भाषाओं को बिहार में ही पूर्ण मान्यता नहीं मिली है उन्हें झारखंड में अलग दर्जा देना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि झारखंड की अपनी क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं की समृद्ध पहचान है जिनके संरक्षण और संवर्धन को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। बंधु तिर्की ने कहा कि राज्य की मूल भाषाओं और संस्कृति को मजबूत करना सरकार की जिम्मेदारी है।
2: भोजपुरी कोई भाषा नहीं है, वो कुछ जिलों में बोली के रूप में जाना जाता है। मगही आपका बोली के रूप में जाना जाता है और भोजपुरी और मगही को तो खुद वह आपका बिहार में इसका मान्यता नहीं है और ऐसे में यहाँ पर उन भाषा का दर्जा देना ये कहीं से भी उचित नहीं है।
1: भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने कहा है कि महिला टीम आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले बंगलुरु स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण में तैयारियों पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। भारतीय टीम 26 से 30 मई के बीच पर्थ हॉकी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैच खेलेगी। यह न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में होने वाले आगामी FIH महिला हॉकी नेशंस कप के लिए एक महत्वपूर्ण चरण है। बता दें कि भारतीय टीम की कप्तान सलीमा टेटे झारखंड के सिमडेगा की रहने वाली हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा विवाद मामले में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने राज्य सरकार से मांगी पूरी जानकारी, 23 मई को होगी अगली सुनवाई। केंद्र सरकार ने चांदी के आयात पर लगाया प्रतिबंध, मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखी गई चांदी, अब आयात के लिए सरकारी लाइसेंस जरूरी। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री देश के सर्वश्रेष्ठ जिलाधिकारियों की सूची में हुए शामिल, देश के 100 जिलाधिकारियों को भी सूची में मिला स्थान। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस को लेकर राज्य भर में चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान, हेल्पलाइन नंबर 104 पर 24 घंटे मरीजों को दी जा रही है सलाह। और भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने कहा, ऑस्ट्रेलिया दौरे और FIH महिला हॉकी नेशंस कप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी टीम। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

फिल्म शक्ति का ये प्यारा सा गीत श्रोताओं जो स्मिता पाटिल पर फिल्माया गया, लता मंगेशकर की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन की तर्ज थी। वैसे एक सवाल आपसे पूछने का जी चाहता है कि क्या कोई खत ऐसा भी था जो आया नहीं और आज भी आपको उस खत का इंतजार है, या फिर इंतजार खत्म हो चुका है? यानी कभी कभी हम दिल हार जाते हैं कि भाई नहीं, अब तो ये खत नहीं आएगा या अब तो ये मैसेज नहीं आएगा। लेकिन जब अगर आपको कभी ऐसा लगता है तो आप क्या करते हैं? क्योंकि कभी कभी तो ऐसा भी होता है ना कि किसी के मैसेज का या किसी की बातों का हमें इंतजार रहता है, ना वो खत आता है ना वो मैसेज आता है, तो क्या आप उदास हो जाते हैं या फिर आप ये सोचते हैं कि भाई ये जिंदगी है और आगे यूं ही चलती रहे? यानी आप गमगीन होते हैं या फिर गमों के समय भी मुस्कुराते हैं? वैसे हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि गीत हमारे मित्र हैं, हवाओं की पालकी पर सवार रेडियो से जो गीत बजते हैं वो हमारे सुख दुख के गहन साथी हैं। जीवन में जब प्रेम आया तो इन गीतों में विस्तार खोजते रहे और आश्चर्य कि हमें गीत में वो सब मिला जो हम मन से कहना चाह रहे थे, जिसके लिए हमारे पास शब्द नहीं थे, वो रेडियो से झरते इन गीतों में था। सुरों का ऐसा साज ये गीत कि अब हमारे अस्तित्व से जुड़ गए हैं, ये मन को लूट लेते हैं। हमने देखी है इन आंखों की महकती खुशबू, आज भी इस गीत को सुनती हूँ तो मन किसी अनदेखी अनजानी दुनिया में पहुंच जाता है जहां कोई नहीं होता सिवाय इस गीत के। एक सवाल आप हमें बता दें श्रोताओं कि फिल्म आरती का एक गीत है जिसमें जो ये गीत जब शुरू होता है तो ये ग्रामोफोन के सेट पर नजर आता है, यानी इसकी शुरुआत ग्रामोफोन के सेट पर होती है। तो आप इस गीत को अगर पहचानते हैं तो आप जरूर लिखें। एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि मेरे पिया गए रंगून, चिट्ठी आई है वतन से और परदेसी, तुम कहाँ चले गए। फिर इन्होंने जो कुछ गीत लिखे हैं शायद वो गीत बहुत ज्यादा मैच नहीं करते हैं, तो इसके लिए तो ये जरूरी है श्रोताओं कि जो इबारत होती है ना उसे आप दो तीन बार अगर पढ़ेंगे तो बिल्कुल साफ समझ में आ जाएगा। जैसे कभी कभी ऐसा भी होता था कि जब हम स्कूल में एग्जाम देते थे, कॉलेज में एग्जाम देते थे, तो जब हमारे सामने सवाल आता था तो यकायक लगता था कि नहीं भाई इसका तो जवाब हमें नहीं आता है, लेकिन फिर ये होता था कि मन होता था कि भाई शांत बैठ जाओ और इसे कई बार, यानी कि कम से कम एक दो बार तो जैसा समय रहे उस हिसाब से पढ़ लीजिए, तो फिर ये समझ में आ जाता था कि नहीं ये तो जरूर उत्तर हमें आता है या आंसर हमें आता है। तो ऐसा ही है ये टेक्स्ट भी, हमारी इबारत भी, ये मजमून भी ऐसा ही है। आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कौन से नगमे हैं। एक और श्रोता ने लिखा है सुरीला सफर में कुछ शब्दों के गीत बज सकते हैं, जैसे दूरी हवाएं, परदेसी, पालकी, रंगून, प्यार की दास्तान, सलाम, मेरे पिया गए रंगून, दूरी न रहे कोई, तुम इतने करीब आओ, दूरियां नजदीकियां, परदेसियों से, इन हवाओं इन फिजाओं में लिखे जो खत तुझे, बहुत सारे गीत हैं। तो एक और श्रोता लिखती है आज के शब्दों से पता लग रहा है कि दूरी की बातें होंगी और गाने भी बजेंगे। जी हाँ, जहां तक दूरी की बातें हैं श्रोताओं, जब दूरियां नहीं होंगी तो नजदीकियों का क्या मजा, इसलिए दूरियां हैं तो नजदीकियां हैं, और जब नजदीकियां हैं तो उन नजदीकियों को हम बनाए रहें, यही हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, इनमें दूरियां ना आ पाएं। ठीक ऐसे ही जैसे हमारी विविध भारती है, कभी ना नाराज होती है ना कभी बहुत ज्यादा खुश होती है, बस श्रोताओं को लेकर साथ हम सफर की तरह चलती रहती है। तो ये आगे लिखती हैं कि दूरी की बात होगी और गाने भी बजेंगे, जब कोई हमसे दूर होता है पर दिल के करीब होता है, और प्रदेश में होकर थी जो दिल को जोड़ रखता है वो फोन होता है, हम फोन पर बातें करते हैं, दिल की बातें करने से मन हल्का हो जाता है, हाल चाल भी पता चलता है। लेकिन एक बात यहाँ ये है श्रोताओं कि जो ये कम्युनिकेशन सिस्टम है, यानी जो आज जो विश्व दूर संचार दिवस यानी टेलीकम्युनिकेशन डे है, तो ये जो दूरियां हैं यकीनन इन संचार माध्यमों से कम तो हुई हैं, लेकिन आपको क्या लगता है ये कम हुई हैं या फिर और बढ़ गई हैं? आपको संगीतकार और अदाकारा बताने हैं।

ये ना, तुम्हें यकीन मानिए श्रोताओं, जब रेडियो तरंगों की ताल पर बजते हैं तो जाने कितनी ही जो अपनी यादें होती हैं, तमन्नाएं होती हैं, दिल में अंगड़ाइयां लेती हैं, और जाने कितनी सारी बातें जो होती हैं जहन में ताज़ा हो जाती हैं। ये गीत चाहे एक हो, दो हो, तीन हो, बेशुमार हो, दिल के बेहद करीब होते हैं। वक्त के सांचे में ढले ये गीत नायाब हैं श्रोताओं, जिन्हें हम और आप इनकी कीमत को बिल्कुल चुका नहीं सकते, हाँ इन्हें प्यार जरूर दे सकते हैं। तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है, वैसे आपको बता दें कि बरसात की रात फिल्म का ये गीत था, बेहद खूबसूरत अभिनेत्री वीनस क्वीन मधुबाला पर फिल्माया गया, भारत भूषण भी नजर आते हैं, साहिल जाह्नवी के बोल हैं रोशन की तर्ज है। वैसे हमने आपसे शुरुआत में ये कहा था कि आज के गीतों की कड़ी में कुछ एक खास बात है, इसका जवाब अब तक मुझे नजर नहीं आया है। मैं इंतजार कर रही हूं कि क्या आप इस कड़ी को या इस बात को पहचान पाते हैं क्या कि आज किस तरह के नगमे हैं। आज की भारत संचार माध्यम से जुड़ी लगती है, यह हमारे एक श्रोता ने लिखा है। बहुत पुराने समय में कबूतरों के जरिए पत्रों का आदान प्रदान, बाद में पोस्ट डाक खाने में चिट्ठियां पत्र पोस्ट बॉक्स में डाल, उसके बाद डाकिये का साइकिल पर चिट्ठियां बांटना, बाद में टेलीफोन पेजर का इस्तेमाल शुरू हुआ। सन 2000 से तो मोबाइल का ऐसा जबरदस्त दौर शुरू हुआ जो आज तक जारी है। पत्रों की जगह मैसेज टेक्स्ट ने ले ली, कुछ ही सेकंड में एक दूसरे से जोड़ देती है, चाहे कितना भी संचार क्षेत्र में हम तरक्की कर लें, लेकिन जो मजा पत्र चिट्ठी लिखने में आता है वो मजा मोबाइल में बातचीत में या टेक्स्ट में नहीं आता। श्रोताओं ये बात जरा सोच कर देखिए कि अगर एक मिनट में या कुछ सेकंडों में हमारे तक किसी की बातें पहुंच जाती हैं या हमारी बातें किसी तक पहुंच जाती हैं तो इतना ही समय लगता है रिश्ते जोड़ने में भी और इतना ही समय लगता है रिश्ते तोड़ने में भी। तो क्या इन रिश्तों के बीच कुछ जो मकाम है या कुछ समय जो है उसकी उसका महत्व है? यानी जो चिट्ठियां होती थी वो थोड़ी देर से पहुंचती थी, लेकिन ये जो मैसेज होते हैं तुरंत दोस्ती और तुरंत बिल्कुल कट्टी बट्टी हो जाती है। तो क्या आपकी आजकल किसी से नाराजगी चल रही है यानी कट्टी हो गई है? कोई आपकी सहेली, कोई आपका दोस्त आपसे बातें नहीं कर रहा तो बस मौका है जल्दी से मना लीजिए, क्योंकि आप भी इसी संचार से जुड़े हुए हैं और तुरंत तुरंत मैसेजेस भेजने में बिना सोचे समझे भी हम कई बार मैसेजेस भेज देते हैं, तो इस पर भी जरा सोचने की बात है। एक और श्रोता ने लिखा है, दूरी चाहे कितनी भी लंबी हो क्यों ना, भावनाएं हमेशा अपने रास्ते खोज लेती हैं। कभी हवाओं की पालकी पर परदेसियों के पैगाम आते हैं तो कभी बेतार तरंगों पर बहते दिलों को जोड़ देते हैं। रेडियो के सुर लहरियां केवल संगीत नहीं लाती, वो अपने साथ यादों की खुशबू, अपनापन और जीने का हौसला भी लेकर आती हैं। हमने आपसे पूछा था आरती फिल्म का वो कौन सा गीत है श्रोताओं जो ग्रामोफोन पे बजता हुआ जिसका शुरुआती मुखड़ा नजर आता है, यानी जो इंट्रोडक्शन गीत का है वो। एक और श्रोता ने लिखा है कि हाथ के छोटे से फोन में अब दुनिया समाई हुई है, एक मिनट के लिए फोन नहीं मिलता या किसी वक्त बंद हो जाए तो बड़ी बेचैनी सी होती है। कोई भी विशेष समाचार आना, किसी को पेमेंट करना हो या किसी का पैसा मोबाइल पर आने की न्यूज हो, किसी का फोन आना हो, ये बहुत मुश्किल हो जाती है बगैर तार के, बगैर किसी बिजली कनेक्शन के, इस छोटे से फोन से। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज अपने सुरीली धड़कन के सुरीला सफर कार्यक्रम में शामिल गद्यमयी इबादत की इबादत से निकले शब्द में दूरी चाहे रंगून देहरादून हवाओं पालकी सवार चंचल नैन और बहुत सारे शब्द इन्होंने चुने हुए हैं। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो श्रोता हैं वो टेक्स्ट को इतनी खूबी से पढ़ते हैं और उनमें से शब्दों का चयन करते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि संचार साधनों में आए क्रांतिकारी परिवर्तन ने पुराने साधनों को लगभग मानव स्मृति पटल पर केवल एक ऐतिहासिक दस्तावेज बना दिया है। प्राचीन काल में संदेश जब कपड़े पेड़ों के पत्ते पर लिखकर भेजे जाते थे, इस प्रथा में जो संदेशवाहक पत्र आदि लेकर आता था कहीं कहीं पर इस कार्य में प्रशिक्षित पक्षियों बहुधा बाज कबूतर से भी इस कार्य को अंजाम दिया जाता था। कोई एक ऐसी फिल्म आपको याद आ रही है क्या जिसमें कबूतर जो हैं वो पत्र लेकर जाते हैं? मुझे तो कई सारी फिल्में याद आ रही हैं
और एक फिल्म जो दिलीप कुमार साहब की है उसमें तो इसे बखूबी दिखाया गया है। अगर आपको ये फिल्म याद आ रही है तो आप लिख सकते हैं। एक और श्रोता लिखती हैं कि आज समय बदल गया है, देश विदेश में बसे अपने लोग वीडियो कॉल की तरंगों पर सवार होकर पल भर में हमारे सामने आ जाते हैं। मुस्कानें, आवाजें और भावनाएं स्क्रीन पर पार होकर भी दिल को छू जाती हैं। तकनीक ने दूरियों को छोटा कर दिया है पर रिश्तों की मिठास वही पुरानी बनी रहे। सच तो ये है कि प्रेम, अपनापन और यादें किसी तार या सीमा के मोहताज नहीं होती, वो बस महसूस किए जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे रेडियो पर बजते किसी पुराने गीत की मधुर खुशबू जो मन के किसी कोने में हमेशा जीवित रहती है। ऐसी जो खुशबुएं हैं, ऐसी जो बातें हैं, उसको जीवित ही रहने दें, इसे दर्द ना बनाएं, क्योंकि दर्द भी गीतों में समाया है जो कहीं कहीं हमारे दिल में दस्तक देता है।

मेरे हुजूर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे जितेंद्र पर फिल्माया गया, मोहम्मद रफी की आवाज थी, हसरत जयपुरी के बोल थे, संगीतकार अगर आप बता दें तो क्या ही अच्छा है। एक श्रोता लिखते हैं कि हिंदी में एक बहुत ही काव्यात्मक शब्द है चंचल नैन, जिसका अर्थ है अस्थिर या चुलबुली आंखें, रेस्टलेस और फ्लिकरिंग आईज। ये आमतौर पर खूबसूरती, चंचलता और आकर्षण को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। ये शब्द न केवल हिंदी साहित्य बल्कि बॉलीवुड गानों में भी बहुत लोकप्रिय है। चंचल नैन वाले कुछ प्रसिद्ध गाने चंचल नैन, नजरें मिली, दिल धड़का, कुछ एक गीत इन्होंने पसंद किया है। और एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि पैराग्राफ में ही कई चर्चित गानों के मुखड़े लिखे नजर आ रहे हैं, यानी दिखाई दे रहे हैं। बेतार के तार रूपी ध्वनि तरंगों पर बजते हुए प्यार की दास्तान लिए आज सुंदर गाने सुनने को मिलेंगे, जिन्हें सुनाने कोई मतवाला वीबीएस के स्टूडियो में आने वाला है। गानों को सुनकर ऐसा महसूस होगा कि दूरी न रहे कोई, बिल्कुल करीब से सुन रहे हैं और प्यार से दिल से महकती खुशबू महसूस कर रहे हैं। उनके ख्याल आए तो बस दीवाना बनाकर चले गए। उम्मीद है आज रेडियो पर बजते हुए गाने सुनने को मिलेंगे। और कुछ गीतों को इन्होंने पसंद किया है, यानी कि अपनी जो बात है उसमें लिखा है, जिंदगी भर नहीं भूलेगी प्यार की दास्तान, गम उठाने के लिए लूटी कोई मन का नगर, हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू। क्या बात है श्रोताओं। वैसे अगर हम ये कहें कि हमारे कुछ श्रोता भी इबारत लिखने में काफी अच्छा एक मुकाम रखते हैं, तो ये कहने में तो कोई गुरेज नहीं। एक हमारे श्रोता ने लिखा है, सुरीले सफर में आज हम रेडियो की सुरीली तरंगों के साथ गीत संगीत का आनंद लेंगे। संगीत से हर किसी का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है कि जीवन के महत्वपूर्ण पल संगीत से होकर गुजरते हैं, जब चाहे जैसा चाहे मूड जो बदल देता है। संगीत जब भी हम बेहद खुश होते हैं तो दिल से निकलता है, संगीत जब कभी उदास होते हैं तो खुश कर देता है, पलों में भावुक कर देता है और मन में अपने संजोने के लिए इन्होंने बहुत सारे जो आगे और भी लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, तो बड़ी अच्छी बात है। और ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि हमारे श्रोता कितनी मेहनत करते हैं, कितना सोचते हैं कि ये कार्यक्रम है इसमें किस तरह से शिरकत की जाए। और इन्होंने भी बहुत सारे गीत जो हैं वो चुने हुए हैं और ये गीत मेल खाते हैं यकीनन। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि इबारत तो आपने बहुत अच्छी लिखी और आपके लिखे पोस्ट या कहे गए वाक्य हमेशा दिल को छू जाते हैं। यही सब कारणों से हम सब के तार विविध भारती से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, और आपकी भी बातें बहुत अच्छी होती हैं श्रोताओं, जिससे हम भी आपसे जुड़े हुए हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि दूरी की धुंध में लिपटे वो पुराने दिन आज भी रेडियो की धीमी सरगम बनकर दिल के किसी कोने में बज उठते हैं, जब शाम में इतनी तेज नहीं भागती थी जब शामें इतनी तेज नहीं भागती थी और इंतजार में भी एक मिठास होती थी। किसी अपने का सलाम हवाओं की पालकी पर बैठकर आता था, कभी खत बन कर तो कभी किसी फरमाइशी गीत की आवाज में। वो छोटा सा रेडियो जिसकी जाली पर उंगलियां फेरते हुए हम जाने कितनी दूरियों को छू लेते थे, तरंगों पर तैरते गीत कभी उदास रातों का सहारा बनते तो कभी भीगी आंखों में किसी बिछड़े चेहरे की रोशनी जगा देते। ये गीत उन परदेशियों के नाम बस इतना सुनते ही दिल की धड़कनों में पुरानी गलियां उतर आती थी। लगता था जैसे देहरादून से रंगून तक फैली दुनिया एक ही धुन में सांस ले रही है। अब वीडियो कॉल में चेहरे तो दिख जाते हैं।

0: सुंदर सी अभिनेत्री अमिता पर फिल्माया गया ये गीत था, गूंज उठी शहनाई ये फिल्म का। और आप अगर संगीतकार बता दें तो क्या ही बात है। एक श्रोता ने लिखा है, दूरी कितनी भी क्यों ना हो, दूर दूर बिखरे हुए रेडियो मित्र एक परिधि में आ ही जाते हैं। जब विविध भारती से सुरीला सफर शुरू हो जाता है, ध्वनि तरंगों की पालकी से आता हर परदेशी अपना सा लगने लगता है और अपनी दास्तां बयां करता है। और धन्यवाद भी इन्होंने लिखा है। एक हमारे और श्रोता लिखते हैं, दूरियां चाहे कितनी भी हों, दिलों की आवाज और अपनापन कभी नहीं रुकता। हवाओं, तरंगों और सुरों के सहारे भावनाएं एक जगह से दूसरी जगह तरंगों से पहुंचती रहती हैं, कभी यादें बनकर कभी संदेश बनकर। रेडियो सिर्फ एक माध्यम नहीं बल्कि उन अनकहे एहसासों का साथी है जो लोग एक दूसरे से जोड़े रखते हैं। बदलते समय में चिट्ठियों की जगह वीडियो कॉल ने ले ली है, लेकिन भावनाओं की गर्माहट आज भी वही है। अपनापन, यादें, संवाद, दूरियों के बावजूद रिश्तों की नजदीकी और सुरों की मिठास को बहुत खूबसूरती से महसूस रेडियो से किया जा सकता है। जी हाँ, और ऐसा ही टेलीफोन से भी होता है।
1: बोल रहा हूँ।

शुदा फिल्मी दुनिया के एक बड़े दिग्गज सितारे थे जो रेडियो से ताल्लुक रखते थे। क्या आप उन सितारे को पहचानते हैं? तो हमें जल्दी से लिख भेजिए।

पतंगा फिल्म का ये गीत और जो टेलीफोन आया वो रंगून से आया। शमशाद बेगम चितलकर की आवाजें थी। श्रोताओं, एक श्रोता ने लिखा है कि चाहे दूर हो या पास हो, विविध भारती मेरे सपनों की तुम तस्वीर हो, जहां हर रोज हवाओं पर लिखा जाता है सुरीला सलाम हम अनजान श्रोताओं के नाम। फिर वो बरसात की भीगी रात हो या दिन की फुहार, जिंदगी भर भुलाई नहीं जा सकती। शुरू की बरसात जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कहीं ये वो तो नहीं। जब उसे रूबरू देखा दिल बोल उठा, कोई मतवाला आया मेरे द्वारे, रेडियो से कर गया अजब इशारे, बस और कुछ नहीं कहना, दूरी न रहे कोई, तुम रेडियो के इतने करीब आ जाओ। आइए मिलते हैं 1 बजे, सुरीला सफर की बागडोर संभाल रही हैं। इन्होंने लिखा है हमारा नाम, बहुत बहुत शुक्रिया श्रोताओं। और हाँ, ये बात तो जरूर है, आरती फिल्म का ये गीत है जिसे हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक पहचाना, और ये गीत था कभी तो मिलेगी कहीं तो मिलेगी, जो रिकॉर्ड पर शुरू होता है। और आज जो कड़ी थी वो ये थी कि हमने रेडियो, माइक और टेलीविजन स्क्रीन के गीत चुने थे, ग्रामोफोन भी आरती फिल्म में दिखाई दिया। टेलीविजन स्क्रीन का जो गीत है कोई मतवाला आया मेरे द्वारे, ये आज हम नहीं आपको सुनवा पाए। अगले कार्यक्रम में कोशिश करेंगे कि आप तक ये गीत जरूर पहुँचे।

मरी 14 ने लिखा है, श्रोताओं की देखना है आपके टेक्स्ट से मेरे कयास लगाए हुए गीत कितने मिलते हैं, उसी हिसाब से मैं अपने आप को मार्क्स दूंगी। और कुछ गीत इन्होंने लिखे हैं, तो भाई आप अपने गीत देखिए और ये भी गीत आप सुन चुके हैं, तो बस

खामोशी फिल्म का ये गीत था लता मंगेशकर की आवाज में गुलजार के बोलते हेमंत कुमार की तरह से। श्रोताओं, आपके सभी प्रतिक्रियाओं के लिए, सभी कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: Prime Minister Narendra Modi to reach Gothenburg this afternoon on a two-day visit to Sweden will hold talks with Swedish Prime Minister Ulf Kristersson to review cooperation in trade, green transition, AI and defence. India and Netherlands elevate bilateral relationship to strategic partnership. 17 agreements signed to strengthen collaboration in key areas. India condemns attacks on commercial shipping in Strait of Hormuz as unacceptable, says disrupting freedom of navigation cannot be justified. World Health Organization declares Ebola outbreak in Congo and Uganda a public health emergency of international concern. IMD issues heavy to very heavy rainfall alert at isolated places over Andaman and Nicobar Islands, sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And Nepali mountaineer Kamirita Sherpa creates history by climbing Mount Everest for 32nd time, breaking his own record. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बताया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की और नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी।
2: प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर स्वीडन के उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है और कारोबारी समुदाय इस दौरे के परिणामों को लेकर काफी आशावान है। आकाशवाणी से बातचीत में इंडियन स्वीडन बिजनेस काउंसिल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्री रॉबिन सुखिया ने जन से जन संपर्कों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी बार मेजबानी करना स्वीडन के लिए अत्यंत उत्साह और गर्व का विषय है।
3: मैं एक बिजनेस काउंसिल की सोच के साथ काम करता हूं, जहां लोगों और मीटिंग्स को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। हर मीटिंग हमारे लिए आगे बढ़ने का एक नया कदम होती है। उनके स्वीडन आने से हमें बेहद खुशी और गर्व है। वे जिन क्षेत्रों पर काम कर रहे हैं उनकी जल्द घोषणा होने की उम्मीद है। इससे कई उद्योगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मुझे भरोसा है कि इस आर्थिक सहयोग से हमें बेहतर और मजबूत परिणाम देखने को मिलेंगे।
2: इस बैठक में दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जा सकती है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करी जा सकती है। दोनों नेता हरित परिवर्तन, AI, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लाइमेट एक्शन और जन से जन संपर्कों जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: कल अपनी यात्रा के दूसरे चरण में भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक स्तर पर ले जाकर 17 समझौते किए। ये समझौते रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित हैं। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया और विशेषकर ऊर्जा आपूर्ति में बाधा से विश्व व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव पर चिंता प्रकट की। श्री मोदी और रॉब येटन ने कहा कि हॉर्मुज की खाड़ी से होकर जहाजों की बेरोकटोक आवाजाही होनी चाहिए और इसे नियंत्रित करने का कोई भी प्रयास स्वीकार्य नहीं।

0: ये हैं। दोनों नेताओं ने यूक्रेन रूस संघर्ष पर भी चर्चा की। वे यूक्रेन समस्या का समाधान बातचीत और राजनयिक प्रयासों से किए जाने पर सहमत हुए। बातचीत के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक रोडमैप जारी किया। इनमें सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, यांत्रिक मेधा और क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र के में सहयोग भी शामिल है। दोनों नेताओं ने ग्रीन हाइड्रोजन के विकास के लिए भी साझा रोडमैप जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। कुछ दिन पहले ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाले एक जहाज पर हमला हुआ था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। आज गुजरात के अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण और ग्रेमी सिटी कैंपस का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है।
2: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। AI और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
0: श्री अमित शाह ने गांधीनगर में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन भी किया। वे गांधीनगर निगम के विकास कार्यों का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह गांधीनगर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड मधुर डेयरी के नवनिर्मित 5 लाख लीटर क्षमता वाले संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे। श्री शाह 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामानों, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। अब तक 25 राज्यों में 1,44,00,000 से अधिक घरों के निवासी स्वगणना प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया था जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से CNG की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम CNG की नई दर 80 रुपए 9 पैसे, गाजियाबाद और नोएडा में 88 रुपए 70 पैसे और गुरुग्राम में 85 रुपए 12 पैसे हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी CNG की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की गई थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। दिल्ली सरकार महिला स्व सहायता समूहों और स्टार्टअप्स को 10 करोड़ रुपए तक की बिना गारंटी वाला ऋण उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार स्वयं इन ऋणों की गारंटर बनेगी। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेन चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार यह फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। केरल से दिल्ली आ रही तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में आज तड़के आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, कुछ रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। ये घटना मध्य प्रदेश के रतलाम में कोटा डिवीजन के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच तड़के 5:20 पर हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए आपात स्थिति घोषित किया है। इस बीमारी से 300 से अधिक लोग पीड़ित हैं और 88 की मौत हुई है। हालांकि संगठन ने स्पष्ट किया है कि इबोला का संकट COVID-19 जैसी महामारी जैसा नहीं है। संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बंद न करने की सलाह भी दी है। इबोला के इलाज के लिए फिलहाल कोई टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस भी मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 1865 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र डिजिटल प्रौद्योगिकी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और इससे जुड़ी तकनीकों के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देना है। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया है। 56 वर्षीय कामी रीता एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाले शेरपा हैं। इस बीच पर्वत रानी के नाम से मशहूर लाखपा शेरपा ने भी एवरेस्ट पर लगातार 11वीं बार सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली नेपाली महिला होने का अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ अपनी साझेदारी के माध्यम से डोमिनिका के कलिनागो समुदाय को सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मार्गरीटा ने डोमिनिका के कलिनागो क्षेत्र का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत डोमिनिका के साथ साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और दक्षिण दक्षिण सहयोग पर आधारित अपनी मैत्री को और प्रगाढ़ कर रहा है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, दक्षिण कर्नाटक के भीतरी इलाकों, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में भी भारी बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की संभावना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू की स्थिति रह सकती है। मध्य प्रदेश में इंदौर और उज्जैन भीषण गर्मी की चपेट में है। कल खंडवा और नौगांव में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया, जबकि प्रदेश के 15 शहरों में पारा 43 डिग्री या उससे अधिक रहा। एक रिपोर्ट।
4: मौसम विभाग के अनुसार आज रतलाम, खरगोन और खंडवा में तेज लू चलने की संभावना है और तापमान 44 डिग्री के पार जा सकता है। इसके अलावा इंदौर, उज्जैन, सागर, रीवा, छतरपुर समेत प्रदेश के दर्जन भर से ज्यादा जिलों में लू का असर बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को दोपहर 12 से 3 बजे के बीच जरूरी काम होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी है। साथ ही दिन भर पर्याप्त पानी पीते रहने और शरीर को हाइड्रेट रखने की अपील भी की है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 मई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। आज कहीं भी बारिश का अलर्ट नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: अभी प्राप्त समाचार के अनुसार रेल मंत्रालय ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के दो पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। और अब खेल खबरें। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इधर दिल्ली में शाम 7:30 बजे से राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोकटोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती।

0: रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल का जनसंवाद अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज उन्होंने हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र स्थित वार्ड 31 और 32 के विभिन्न इलाकों का पैदल भ्रमण किया। मौके पर उन्होंने स्थानीय जनता से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना और उनके समाधान के लिए सकारात्मक पहल करने का भरोसा दिलाया। भाजपा नेता अनिल टाइगर हत्याकांड का मुख्य सरगना अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ सूरज सिन्हा को रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उस पर 20 लाख रुपए सुपारी के लिए कटहल मोड़ के छड़ सीमेंट व्यवसायी राधेश्याम साहू पर जानलेवा हमला करने का षड्यंत्र रचने का भी आरोप है।
1: अनिल टाइगर का जो केस हुआ था जिसमें उनकी हत्या कर दी गई थी, तो उसमें जो मेन आदमी था वह सूरज सिन्हा था। जमीन संबंधी विवाद था, उस विवाद में सूरज सिन्हा को कॉन्ट्रैक्चुअल किलिंग के लिए एक सुपारी मिली थी जिसमें उसे अनिल टाइगर की हत्या करनी थी। उसे टोटल 5 लाख रुपए दिए गए थे इस काम को करने के लिए।
0: रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री को फेम इंडिया मैगजीन और एशिया पोस्ट द्वारा जारी देश के सर्वश्रेष्ठ जिला अधिकारियों को सूची में स्थान मिला है। देश भर के करीब 800 जिलों के अधिकारियों के कार्यों के अध्ययन के बाद तैयार इस सूची में उन्हें बेहतर प्रशासन, जन सरोकार और विकास कार्यों के आधार पर चुना गया है। चयन प्रक्रिया में प्रशासनिक क्षमता, प्रभावी गवर्नेंस, नवाचार, संकट प्रबंधन और जन भागीदारी जैसे मानकों को शामिल किया गया। इस सूची में देश भर के 100 जिलाधिकारियों को स्थान मिला है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। साहिबगंज जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में गुम हुए मोबाइल के पुनर्वितरण को लेकर साहिबगंज के सिद्धो कानो सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सामुदायिक पुलिसिंग के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में मोबाइल धारकों के बीच मोबाइल का वितरण कर जन विश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह कार्यक्रम उपायुक्त दीपक दुबे, पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह और वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रबल गर्ग की देखरेख में आयोजित किया जा रहा है।
2: 300 के आसपास मोबाइल फोन जो स्टोलेन अथवा लॉस्ट है उनको रिकवर करने में सफल रहा है। जो आप सूचना है वो अपन माध्यम से अगर पुलिस विभाग को देते हैं तो एक तंत्र जो है उपलब्ध है जिसके माध्यम से हम सभी प्रकार के टेक्निकल एनालिसिस करते हुए उसको ट्रेस भी करते हैं और उसको सम्मान नागरिकों को वापस भी करते हैं।
0: जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने वन विभाग के जिला वन पदाधिकारी सबा आलम अंसारी के साथ मानगो के सटे दलमा पहाड़ की तलहटी के विभिन्न क्षेत्रों का संयुक्त निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान क्षेत्र को पर्यावरण और पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की योजना पर सहमति बनी। प्रस्ताव के तहत चंद्रावती नगर, गोपाल नगर, कुमरुम बस्ती और पारडी के आसपास पार्क, तालाब, पाथवे और बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क विकसित किए जाएंगे। इन क्षेत्रों को इको टूरिज्म केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है। विधायक ने कहा कि दलमा की तलहटी प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है और यहां पर्यावरण अनुकूल विकास कार्य किए जाएंगे। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। इधर राज्य के स्वास्थ्य विभाग की ओर से नागरिकों को नियमित व्यायाम करने, फल और सब्जियों का अधिक सेवन करने तथा वजन नियंत्रित रखने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी या शिकायत के लिए 24 घंटे संचालित हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क करने की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: फिल्म का ये गीत था राजन कृष्ण का लिखा, रवि का संगीत था और यही थी सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। ये है है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। मन चाहे गीत, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

नमस्कार श्रोताओ, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के ठीक 3:01 हुए हैं। वक्त हो चला है आपके कार्यक्रम पसंदीदा कार्यक्रम मन चाहे गीत का। तो मन चाहे गीत कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हैं। हो चला है इस कार्यक्रम का वक्त। आपके ढेरों पत्र हम तक पहुंचे हैं श्रोताओं, और पहुंच भी रहे हैं, जिनमें आपके प्यारे प्यारे से नख़्मे हैं। आपके कुछ इन्हीं सरगमी गीतों से हमने सजाया है आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम। तो सुनिए, कहीं ये आपकी पसंद का गीत तो नहीं?

आए दिन बहार के इस गीत का, इस फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। और इस गीत के लिए हमें पत्र लिखे गर्ल्स स्कूल मनिहारी रोड से अवधेश गुप्ता, भोलू नीलू, विशाल राज और वंशराज, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से इस गीत की फरमाइश की हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जितेंद्र विरक और मीका विरक ने।

लैला मजनू फिल्म का ये गीत था मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाजों में, साहिर लुधियानवी के बोलों को सुरों में ढाला मदन मोहन ने, और फरमाइश थी आप सभी की बदायूं उत्तर प्रदेश से डॉक्टर मसूर खान, मोहम्मद सरफराज खान, विकास सक्सेना और प्रवीण राउत इस गीत को सुनना चाहते थे, और इसी गीत की फरमाइश की विश्वकर्मा नगर नागपुर से शैलेश गवाणकर, वैशाली गवाणकर, कुमारी ध्वनि गवाणकर परी और अभिजीत गवाणकर राही भी यहीं से, सरिता सिद्धांत और प्रिंस एकांश गवाणकर की ये फरमाइश थी। मंचाई गीत कार्यक्रम का ये अगला मनचाहा गीत है कभी कभी फिल्म से, लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजें हैं, साहिर लुधियानवी के बोल हैं, खयाम का संगीत।

इस गीत की फरमाइश की चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, हेवरखेड़ तहसील तेलहरा अकोले महाराष्ट्र से विनोद कुमार अढ़िया, सौभाग्यवती भारती अढ़िया, पारस पायल, श्वेता अढ़िया और उर्वी बेन अढ़िया ने इसे पसंद किया। और ककराला उत्तर प्रदेश से विकास सक्सेना, कर्मवीर गोखले, प्रवीण राउत और अनीता नागर की फरमाइश थी। विविध भारती से आप सुन रहे हैं मन चाहे गीत।

राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में इसे गाया परवीन सुल्ताना ने। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा यह नगमा था फिल्म कुदरत से। इस गीत को पसंद किया था छत्तीसगढ़ करगी रोड से शैलेश सिंह, नीलेश सिंह, संध्या सिंह और शैलू ठाकुर ने, और इसी गीत की फरमाइश की थी सौभाग्यवती मीरा प्रकाश ने। और इन्होंने सब कुछ तो लिखा है श्रोताओ, लेकिन अपना अपनी जगह का नाम नहीं लिखा कि इन्होंने। शंकर जयकिशन की तर्ज राजेंद्र कृष्ण की बोल, मोहम्मद रफी की आवाज़।

आप सुन रहे थे धरती, ये फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। इस गीत को सुनना चाहा राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी और पूजा खटक, और जिला अमरावती प्रवीण नगर से। इस गीत की फरमाइश की चंदू हातोले, सीमा हातोले, स्नेहल ने। और इसी गीत के लिए हमें पत्र लिखे गंज डंडवारा उत्तर प्रदेश से बीपी गौतम, सरिता गौतम, अनन्या गौतम, ऐश्वर्या गौतम, श्रेय गौतम, कुश गौतम, रिंकू, टिंकू और रीना। तो मन चाहे गीत कार्यक्रम की यही थी आखिरी पेशकश। श्रोताओं, आपने इतने प्यार से हमें पत्र लिखे और आपके प्यारे प्यारे नगमे हमने शामिल किए आज के मन चाहे गीत कार्यक्रम में। इसी तरह अगली मुलाकात के लिए बस और थोड़ा इंतजार करना होगा। भेजिए अपने फरमाइशी पत्र इस कार्यक्रम के लिए। मन चाहे गीत कार्यक्रम से अब दीजिए संगीता श्रीवास्तव को इजाजत। नमस्कार।

0: ये है विविध भारती। नाट्य तरंग,
1: आइए सुने महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता हैं राजेश रेड्डी।

0: शकुंतला,
1: आप कहीं कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ?
0: नहीं शकुंतला, ये सत्य है, ये सत्य है कि मेरी दशा भी तुम्हारी दशा से भिन्न नहीं है। तुम्हें तो कामदेव केवल संताप ही देता है, किंतु मुझे मुझे तो उसने झुलसा ही डाला है। तुम्हारा ये गीत तो तेरी ही अनुभूतियों का अनुवाद है शकुंतला।
1: ओह, अब मैं क्या करूं? इनके आने तक तो मन इतना उतावला हो रहा था, किंतु अब कुछ सोचता ही नहीं।
0: तुम्हारे शरीर का संताप अब कैसा है शकुंतला?
2: जी, अब आप आ गए हैं तो शांत हो ही जाएगा।
3: अनुकूल औषधि पाकर संताप कहाँ रह सकता है?
0: आप?
2: हम लोग आपके दर्शनों के लिए उत्सुक थे आर्य,
3: किंतु आप इतनी जल्दी यहाँ मिल जाएंगे इसकी आशा नहीं थी।
0: अच्छा, तब तो मेरा यहाँ आना उचित ही रहा।
2: हाँ आर्य, शकुंतला के संताप का कारण आप ही हैं।
3: आपका सानिध्य ही इसके प्राणों की रक्षा कर सकता है आर्य।
0: मेरे प्राण भी इनसे दूर रहकर बचे नहीं रह सकते भद्रे।
1: अनुसुईया, रनिवास की रानियों के विरह में व्याकुल राजर्षि को क्यों इस संकट में डाल रही हो?
0: नहीं शकुंतला, मेरे हृदय की व्याकुलता का कारण तुम हो, केवल तुम। तुम्हारे अतिरिक्त और किसी का ध्यान भी नहीं है इस मन को। इस पर भी यदि तुम्हें विश्वास ना आए तो मैं।
3: महाराज, शकुंतला का संदेह निराधार नहीं है। रनिवास की इतनी रानियों के रहते
0: रनिवास की इतनी रानियों के रहते हुए भी आप निश्चिंत रहें कि मेरे कुल में समुद्र से घिरी इस पृथ्वी के अतिरिक्त आपकी सखी शकुंतला का ही स्थान रहेगा।
3: हम निश्चिंत हुई आर्य।
2: अनसुईया, देख तो वो मृगछाना माँ को ढूंढता हुआ इधर उधर भाग रहा है।
3: हाँ चलो, इसे इसकी माँ के पास पहुँचाएं।
1: अरे अरे, मुझे अकेली छोड़कर कहाँ जा रही हो? रुको ना,
2: अब हमारी क्या आवश्यकता है शकुंतला?
3: सारी पृथ्वी का स्वामी तो तेरे पास ही है।
1: रुको ना, प्रेमवदा, अनसुईया, चली गई।
0: चली गई तो क्या हुआ? तुम्हारा सेवक यहाँ उपस्थित है
1: जी।
0: कहो, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तुम्हारी थकान को दूर करने के लिए ठंडे कमलिनी के पत्तों से पंखा छलूं या?
1: नहीं नहीं, मेरे सर पाप क्यों मर रहे हैं यार?
0: पाप?
1: पूज्य लोगों से सेवा करवाना पाप से कम है क्या?
0: प्रेम में पूज्य कोई नहीं होता शकुंतला, केवल प्रिय होते हैं। और मैं अपनी प्रिय शकुंतला को इस दशा में देखकर चुपचाप कैसे बैठा रहूं?
1: अब जाने भी दीजिए मुझे।
0: क्यों जाने दूं तुम्हें?
1: पूर्ववंशी राजा को कुछ तो शील का ध्यान रखना ही चाहिए ना।
0: शील और संकोच की दीवार।

0: हमारे बीच और कब तक रहेगी शकुंतला?
1: मैं आपकी तरह स्वतंत्र नहीं हूं आर्य। प्रेम में आपसे अधिक व्याकुल होने पर भी मैं अपने मन से कुछ नहीं कर सकती।
0: इतना भय उचित नहीं शकुंतला।
1: नहीं आर्य, मेरे मन की उलझन को आप नहीं समझ सकते।
0: क्या उलझन है तुम्हारी, बताओ तो।
1: अब कैसे बताऊं आर्य? पिता कर्ण को यदि हमारे आकर्षण का पता चल गया तो।
0: गुरुजनों से डरने की कोई बात नहीं है शकुंतला। पूज्य कुलपति धर्म को भली भांति जानते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे बारे में सब कुछ जानकर भी वो पूरा नहीं मानेंगे। और ऋषि कन्याओं के गंधर्व विवाह तो पहले भी हुए हैं और उनके पिताओं की सहमति से हुए हैं।
1: आपकी बात सही होते हुए भी मेरी दुविधा दूर नहीं हो पा रही है आर्य।
0: तुम चाहो तो अपनी सखियों से पूछ लो।
1: हाँ ठीक है, मैं अभी उनसे बात करती हूँ। किंतु आप मेरा हाथ तो छोड़िए।
0: नहीं, अभी नहीं छोड़ूंगा।
1: तो फिर कब?
0: मुझ प्यासे भंवरे को तुम्हारे अधर पुष्प का रस मिल जाए तब।
1: ये क्या कर रहे हैं आप?
2: अरे चपली, अब अपने प्रिय से विदा ले, रात आ पहुंची है।
1: ओह, लगता है मुझे देखने के लिए आर्या गौतम इधर ही आ रहे हैं। आर्य, आप इस वृक्ष की ओट में छिप जाइए।
0: ठीक है।
2: शकुंतला, अब कैसी हो बेटी? शरीर का ताप कुछ कम हुआ?
1: हाँ माँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ताप भी कुछ कम हो गया है।
2: लो, इस कुशा के जल से बिल्कुल भी नहीं रहेगा, पूरी तरह स्वस्थ हो जाओगी।
1: अच्छा,
2: चलो बेटी, दिन ढल गया, आओ कुटिया में चलें।
1: हाँ चलो माँ, चलना ही होगा। अब पछताने से रोने कलपने से क्या होता है? मन, जब वो तुम्हारे साथ थे तब तो तुम भयभीत बने रहे, अब तो अतृप्ति की इस पीड़ा को झेलना ही होगा तुम्हें। हे संताप हरने वाली लता कुंज, विहार के लिए बहुत शीघ्र मैं फिर उपस्थित होंगी और तब तुम अतृप्त नहीं रहोगे।
0: मन की साध हर बार अधूरी ही रह जाती है। सुंदर पलकों वाली शकुंतला के उस मनोहर मुख को चूमने का अवसर पाकर भी चूम नहीं सका। अब इस लता कुंज में उस स्पर्श की स्मृतियों में खोए रहने के अतिरिक्त और क्या उपाय है? उसके शरीर से मसला हुआ ये फूलों का बिछावन, उसके हाथों से सूख कर गिरे हुए कमलनाल के ये आभूषण, कमलिनी के पत्तों पर नखों से लिखा हुआ ये प्रेम पत्र।
3: बचाइए, बचाइए राजन, बचाइए। यहाँ वेदी के चारों ओर काले काले राक्षस फिर बुलाने लगे हैं। तपोवंती पवित्रता की रक्षा कीजिए राजन।
0: इन राक्षसों ने फिर से उठा लिया, मैं अभी जाता हूँ।

0: बहुत अच्छा हुआ प्रियंवदा कि शकुंतला का गंधर्व विवाह हो गया, किंतु एक चिंता भी है सखी।
1: चिंता? अब क्या चिंता है अनुसुया?
0: यही कि आज यज्ञ हो चुकने के बाद ऋषियों से विदा लेकर जब ये राजन अपने रनिवास में पहुंच जाएंगे तब इन्हें यहाँ की सुध भी रह जाएगी या नहीं।
1: ये चिंता व्यर्थ है अनुसुया, ऐसे विराट व्यक्तित्व वाले लोग कपटी नहीं हुआ करते। हाँ, पिता कर्ण को लेकर मैं अवश्य कुछ आशंकित हूँ।
0: उनकी ओर से मुझे कोई आशंका नहीं, मुझे तो पूरा विश्वास है कि वो इस विवाह का विरोध नहीं करेंगे।
1: वो क्यों?
0: क्योंकि शकुंतला के विवाह का संकल्प तो वो पहले ही कर चुके थे। उनकी तो कामना ही थी कि कोई योग्य वर मिल जाए, और सहयोग से ये कामना भी बिना परिश्रम के पूर्ण हो गई, नहीं?
1: तेरा कहना सही है अनुसुया, पिता कर्ण भी कम प्रसन्न नहीं होंगे।
2: अरे कोई है कुटिया में? कोई है?
0: अरे ये तो किसी अतिथि का स्वर जान पड़ता है।
1: शकुंतला तो कुटिया में ही है।
0: है तो, किंतु आज वो कुछ अनमनी सी है।
1: अच्छा देख तो, पूजा के लिए इतने फूल पर्याप्त होंगे ना?
0: कैसे होंगे, अभी शकुंतला के सौभाग्य देवता की पूजा भी तो करनी है।
1: ओह मैं तो भूल ही गई थी, चलो चलो कुछ और फूल चुन ले।
0: चलो।
2: अरे ओ दुष्टा, अतिथि का अपमान करने वाली संसद, मैं तुझे शाप देता हूँ कि जिसके ध्यान में तू मुझ जैसी तपस्वी की सुध नहीं ले रही है, वो भी तुझे बहुत स्मरण दिलाने पर भी पहचान नहीं पाएगा। वो तुझे भूल जाएगा, वो तुझे भूल जाएगा, वो तुझे भूल जाएगा।
1: ये क्या अनर्थ हो गया, लगता है अपने बेसुधपन में शकुंतला ने किसी महात्मा का अपमान कर दिया है। अरे ये तो कोप की साक्षात मूर्ति ऋषि दुर्वासा है।
0: जा प्रियंवदा, उनके पैरों पड़कर उनको लौटा ले, तब तक मैं अर्ध का जल लेकर आती हूँ। जाओ जल्दी जा। ओह हे भगवान, इस फूल की टोकरी को भी अभी गिरना था।
1: अनुसुया
0: आ गई। प्रियंवदा ऋषि कहाँ है?
1: ऋषि दुर्वासा कब किसकी सुनते हैं।
0: क्या ऋषि का कोप शांत नहीं हुआ?
1: कोप तो शांत नहीं हुआ अनुसुया, किंतु फिर भी मेरी अनुनय से वे कुछ कृपालु अवश्य हो गए।
0: अच्छा।
1: हाँ, जब वे किसी प्रकार लौटने के लिए तैयार नहीं हुए
0: तो
1: तब मैंने उनसे प्रार्थना की कि हे भगवान, शकुंतला का ये पहला ही अपराध है और वो भी अनजाने में हुआ है।
0: फिर
1: इस पर उन्होंने कहा, मेरा वचन तो झूठा नहीं हो सकता, किंतु इतना अवश्य हो सकता है कि यदि यह कन्या अपने प्रेमी को अपनी पहचान का कोई आभूषण दिखा दे तो मेरे शाप से मुक्त हो सकती है।
0: चलो इतना ही पर्याप्त है, उस राजर्षि के नाम वाली अंगूठी शकुंतला को शाप से मुक्त कराने में काम आएगी।
1: आओ अनुसुया, अब देव पूजन का काम पूरा कर ले।
0: प्रियंवदा ये शाप वाली बात हम तक ही रहनी चाहिए, बहुत कोमल स्वभाव की है बेचारी शकुंतला।
1: हाँ अनुसुया, उसकी रक्षा तो करनी ही होगी।

0: अरे ये तो दिन निकल आया, कितना मनोहर दृश्य है। एक ओर औषधिपति चंद्रमा अस्ताचल की ओर जा रहे हैं तो दूसरी ओर अरुण रूपी सारथी को आगे किए हुए सूर्य का रथ चला आ रहा है। एक के अस्त होने के साथ ही दूसरे का उदय, जैसे दुख के पीछे सुख और सुख के पीछे दुख। चलो हवन का समय हो रहा है, गुरुजी प्रतीक्षा कर रहे होंगे।
1: अनुसुया, ए अनुसुया, उठ ना।
2: क्या हुआ प्रियंवदा?
1: अरे होना क्या है, भोर हो गई, आज उठना नहीं है क्या?
2: मैं सोई कहाँ हूँ प्रियंवदा।
1: अच्छा, आश्रम में कोई राजर्षि आए हैं क्या?
2: परिहास न कर प्रियंवदा, मेरा मन वैसे ही कुछ ठीक नहीं।
1: क्यों, ऐसा क्या हो गया?
2: कुछ नहीं सखी, बस रह रहकर ऋषि दुर्वासा का शाप सता रहा है। मुझसे अब शकुंतला की दशा देखी नहीं जाती प्रियंवदा।
1: किंतु शकुंतला तो पूरी तरह ठीक है अनुसुया।
2: हाँ ठीक है, किंतु कब तक? उस राजर्षि को गए इतने दिन बीत गए, किंतु शाप के वशीभूत उसने अब तक शकुंतला की सुध नहीं ली, और कब तक प्रतीक्षा करती रहेगी बेचारी?
1: चिंता क्यों करती है अनुसुया, शकुंतला को शाप से मुक्त कराने के लिए राजर्षि की दी हुई अंगूठी तो है अपने पास।
2: है तो सही प्रियंवदा, किंतु उस अंगूठी को दिखाने वहां जाएगा कौन?
1: कौन जाएगा? शकुंतला जाएगी।
2: उस बेचारी को तो इस दुर्भाग्य का भान ही कहां, और उस पर एक अनर्थ और हो गया है, वो मां बनने वाली है।
1: तू ही तो एक बावली है, इतनी अच्छी बात को अनर्थ कह रही है।
2: तू नहीं समझ रही प्रियंवदा, पिता कण्व को जब इन बातों का पता चलेगा तो।
1: पिता कण्व को इन सब बातों का पता चल भी गया और वे अप्रसन्न भी नहीं हुए।
2: सच?
1: हाँ।
2: तू सच कह रही है प्रियंवदा?
1: हाँ अनुसुया, मैं भी शकुन

0: तला के पास से ही आ रही हूँ। पिता कर्ण वहाँ उसे आशीर्वाद दे रहे थे।
1: आशीर्वाद दे रहे थे?
0: हाँ, और कह रहे थे कि योग्य शिष्य को विद्या देने के समान ही योग्य पति को कन्या सौंपने में भी अपार संतोष मिलता है।
1: हे भगवान!
0: और ये भी कह रहे थे कि मैं आज ही ऋषियों के साथ तुझे तेरे पति के पास भेज दूंगा।
1: ओह, इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। किंतु प्रियंपदा, पिता कण्व को इस घटना का पता कैसे चला?
0: आकाशवाणी से।
1: आकाशवाणी से?
0: हाँ, यात्रा से लौटकर पिता कण्व जैसे ही यज्ञशाला में पहुंचे, आकाशवाणी हुई।
2: जैसे शमी वृक्ष के भीतर होता है पावक का वास, वैसे ब्राह्मण शकुंतला में जगहित पौरव तेज निवास।
1: हे भगवान, तुमने शकुंतला ही नहीं हम सबकी लाज रख ली। तुम सचमुच बहुत कृपालु हो भगवान।
0: किंतु अनुसुया, इस कृपा में बहुत गहरा अवसाद भी छिपा हुआ है।
1: हाँ प्रियंवदा, शकुंतला अब चली जाएगी, आज ही चली जाएगी।
0: हमारे इस अवसाद से शकुंतला का सुख बहुत बड़ा है अनुसुया, उसे अपने प्रियतम के पास जाना ही चाहिए।
3: गौतमी, शरद्वत आदि से कहो शकुंतला को पहुंचाने के लिए तैयार हो जाए।
0: चलो अनुसुया, हस्तिनापुर जाने वाले ऋषियों की बुलाहट हो रही है।
1: हाँ चलो प्रियंवदा।

0: देख तो अनसुया, मंगल कामनाओं की मधुर वर्षा में भीगी हुई शकुंतला का सौंदर्य कितना निखर उठा है ना?
1: हाँ प्रियंवदा, ऐसे स्वाभाविक सौंदर्य को अब बाहरी आभूषणों की क्या आवश्यकता?
0: सखी, पगली ऐसे शुभ अवसर पर भी रो रही है?
2: नहीं शकुंतला, नहीं, इस तरह तो तू हमें भी।
1: अरे ये क्या हो रहा है, तुम लोग शकुंतला को सजाने आई हो या रुलाने? बस बस अब चुप करो, अब चुप करो। पता है शकुंतला को सजाने के लिए लताओं और वृक्षों ने भी फूलों पत्तों के स्थान पर आभूषण दिए हैं। देखो ये देखो,
2: कितने सुंदर,
0: कितने अलौकिक है ये शुभ्र वस्त्र,
2: ये सलोनी महावर,
0: ये आकर्षक आभूषण।
1: जानती हो इन लक्षणों का क्या अर्थ है?
0: क्या अर्थ है आर्या?
1: ये लक्षण बता रहे हैं कि शकुंतला अपने पति के घर राज लक्ष्मी बनकर रहेगी।
2: माँ,
1: माँ, प्रियंवदा, अनुसुईया, अब और देर न करो, चलो जल्दी से इसे ये आभूषण पहना दो।

0: आज शकुंतला चली जाएगी, सोचते ही मेरा जी बैठा जा रहा है। आंसुओं को रोकने से गला इतना रुंध गया है कि मुंह से शब्द निकल ही नहीं पा रहे। चिंता में आंखों की ज्योति भी धुंधली पड़ती जा रही है। जब मुझ जैसे वनवासी की ये दशा है तो बेचारे गृहस्थों का क्या हाल होता होगा।
1: बेटी शकुंतला, देखो तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए तात कर्म इधर ही आ रहे हैं। प्रणाम करो बेटी।
2: प्रणाम पिताजी।
0: बेटी, मेरा आशीर्वाद है शर्मिष्ठा की तरह तुझे भी अपने पति से आदर और पुरु जैसा चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो।
1: आपका तो आशीर्वाद भी वरदान है भगवान।
0: आओ बेटी, अग्नि में अभी आहुति पड़ी है, चलो उसकी प्रदक्षिणा कर लो।

वन देवताओं से भरे हुए तपोवन के वृक्षों, आज तुम्हारी प्रिय शकुंतला जा रही है। स्वयं प्यासी रहकर भी जो पहले तुम्हारी प्यास बुझाया करती थी, आभूषणों का आकर्षण और श्रृंगार की इच्छा होने पर भी तुम्हारे स्नेह के कारण जिसने कभी तुम्हारे कोमल पत्तों को हाथ तक नहीं लगाया, वही शकुंतला आज अपने पति के घर जा रही है। उसे विदा दो वन देवताओं, उसे विदा दो।

शकुंतला की यात्रा कल्याणमय हो। इसके मार्ग में नीली कमलनियों से भरे हुए ताल, धूप से बचाने के लिए घनी छांव वाले वृक्ष, इसके पथ की धूल में कमल के पराग की कोमलता और इसके मन को शांति देने के लिए यात्रा पर्यंत मंद मंद पवन बहता चले। शकुंतला की यात्रा कल्याणमय हो।

0: हैं। मेरे पांव, मेरे पांव आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं।
1: तपोवन से बिछड़ने का दुख केवल तुम्हें ही नहीं है शकुंतला, ये तपोवन भी कम उदास नहीं है। देखो और उन्हें नाचना छोड़ दिया है, कैसे चुपचाप खड़े हैं। हिरणिया भी अनमनी होकर चबाई हुई कुशा को बार बार उगल रही है। आंसुओं के रूप में लताओं से पीले पीले पत्ते झड़ रहे हैं।
0: बाबा, बाबा, बाबा, मैं एक क्षण वन ज्योत्सना से मिल लूं। बाबा।
2: हाँ बेटी, मैं जानता हूं उस लता से तुम्हारा सगी बहन जैसा प्रेम है। मिल लो बेटी।
0: चलती हूँ वन ज्योत्सना, चलती हूँ। देखो आम के वृक्ष के अनुराग में अपनी बहन को भूलना नहीं। पता नहीं अब तुमसे मिलना होगा भी या अनुसुईया, मेरी सखी, तुम इसका ध्यान रखना।
2: बेटी निश्चिंत रहो, अपने पुण्य प्रभाव से इसने भी तो आम के वृक्ष के रूप में अनुरूप पर पा लिया है। मुझे भी तुम दोनों की चिंताओं से एक साथ ही मुक्ति मिल गई है।
0: अरे ये मेरा आंचल कौन खींच रहा है?
3: ये तेरा लाडला हरे शावक है बेटी।
0: मेरे लाडले, अब तो मुझे जाना ही होगा। देख देख मेरी जगह अब तेरी देखभाल बाबा करेंगे। जा, लौट जा।
4: सरोवर का तट आ गया है भगवान।

0: शालग्राम, पूर्वजों ने कहा है कि प्रियजनों को विदा करते समय जलाशय तक पहुंचाकर ही लौटाना चाहिए।
1: माननीय राजा दुष्यंत के लिए कोई संदेश हो तो आदेश प्रदान करे भगवान।
0: हाँ वत्स, शकुंतला को राजा दुष्यंत के हाथों में सौंपते हुए मेरी ओर से कहना, राजन हम तो सीधे साधे संयमी तपस्वी लोग हैं, आपके ऊंचे राजघराने के सामने हम कुछ भी नहीं हैं, फिर भी आपने आश्रम की इस कन्या को अपनाया है, ये हमारा सौभाग्य ही है। शकुंतला को आपकी दूसरी रानियों के समान प्रेम और आदर मिले, बस इतनी ही विनती है हमारी, और इससे अधिक क्या कह सकते हैं हम लोग।
2: बाबा, बाबा।
0: बेटी, पति के घर पहुंचकर घर के सब बड़े बूढ़ों की सेवा करना, अपनी सौतों को भी अपनी सखियों जैसा प्रेम करना बेटी, और देख पति ही स्त्री का परमेश्वर होता है, उसे कभी अप्रसन्न नहीं करना। दास दासियों से भी स्वजनों का सव्यवहार रखना
2: बाबा,
0: और अपने सौभाग्य पर कभी इतराना मत बेटी।
2: इन सब बातों को अच्छी तरह गांठ में बांध लो शकुंतला, कुलवधुओं के लिए इससे अच्छा और क्या उपदेश होगा। प्रियमता आओ शकुंतला, हमसे गले तो मिलो।
3: सखी,
2: तो क्या तुम लोग भी यहीं से लौट जाओगे।
0: हाँ बेटी, अब इन दोनों को भी तो उपयुक्त वरों को सौंपना है ना, इसलिए इनका यहां रहना ही ठीक है। फिर आर्या गौतमी तो तुम्हारे साथ ही जा रही है।
2: अनसुया,
4: शकुंतला,
2: तुम लोगों से अलग रहकर मैं कैसे जी पाऊंगी, बोलो।
0: इतनी अधीर न हो बेटी, पति के घर पहुंचकर वहां की व्यस्तता में बिछड़ने का सारा दुख भूल जाएगी, पटरानी बनकर राज करेगी, सूर्य के समान तेजस्वी और पवित्र पुत्र की मां बनेगी।
2: शकुंतला, ये राजा दुष्यंत की दी हुई अंगूठी है, इसे अच्छी तरह संभाल कर रखना,
3: और यदि इतने दिनों बाद वे तुझे पहचानने में भूल करें तो उन्हें ये अंगूठी दिखा देना, समझी।
2: ये तुम लोग कैसी बातें कर रही हो, डरने की कोई बात नहीं शकुंतला,
3: हम तो यूं ही तुझे हर परिस्थिति के लिए सचेत कर रहे हैं।
2: किंतु मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है।
1: दिन बहुत चढ़ाया है भगवान, अब हमें चलना चाहिए।
0: हाँ शरणग्रह, अब तुम लोगों को जाना ही चाहिए, जाओ बेटी शकुंतला, चिरकाल तक इस समूची पृथ्वी की सौत बनकर राज करो, और उसके बाद अपने अद्वितीय वीर पुत्र को राज्यभार सौंपकर अपने पति के साथ इस आश्रम में आओ, यहां के शांत वातावरण में सुख से विश्राम करो। जाओ बेटी, ईश्वर तुम्हारा पथ प्रशस्त करे, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो।

0: कन्या सचमुच प्रायःतन होती है। शकुंतला को आज उसके पति गृह भेजकर मन पूरी तरह निश्चिंत हो गया। किसी की धरोहर को सकुशल लौटा देने में कितना संतोष है।
1: महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता है राजेश रेड्डी।

0: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। केंद्र सरकार ने कहा है कि सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली से मूल्यांकन में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ी है। 12वीं परीक्षा के परिणामों पर आज नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने बताया कि विद्यार्थियों ने मार्किंग और उत्तीर्णता प्रतिशत में मामूली गिरावट पर चिंता जताई है। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने वन विभाग के जिला वन पदाधिकारी सबा आलम अंसारी के साथ मानगो से सटे दलमा पहाड़ की तलहटी के विभिन्न क्षेत्रों का संयुक्त निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान क्षेत्र को पर्यावरण और पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की योजना पर सहमति बनी। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री को फेम इंडिया मैगजीन और एशिया पोस्ट द्वारा जारी देश के सर्वश्रेष्ठ जिला अधिकारियों की सूची में स्थान मिला है। देश भर के करीब 800 जिलों के अधिकारियों के कार्यों के अध्ययन के बाद तैयार इस सूची में उन्हें बेहतर प्रशासन, जन सरोकार और विकास कार्यों के आधार पर चुना गया है। हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल का जनसंवाद अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज उन्होंने हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र स्थित वार्ड 31 और 32 के विभिन्न इलाकों को पैदल भ्रमण किया। मौके पर उन्होंने स्थानीय जनता से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना और उनके समाधान के लिए सकारात्मक पहल करने का भरोसा दिलाया। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर कानरा मुख्य मार्ग स्थित बीएसएनएल कार्यालय के समीप कल रात एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल बाइक सवार युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। आदित्यपुर थाने की गश्ती पुलिस ने उसे देर रात घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया था। भाजपा नेता अनिल टाइगर हत्याकांड का मुख्य सरगना अभिषेक कुमार सिन्हा और सूरज सिन्हा को रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उस पर रांची के कटहल मोड़ निवासी छड़ सीमेंट व्यवसायी राधेश्याम साहू पर जानलेवा हमला करने का षड्यंत्र रचने का भी आरोप है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी
2: बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने बनाई फिल्म रंगमंच पर भी रमेश तलवार का लंबा काम रहा है। हम रमेश तलवार जी के घर गए और उनसे की लंबी बातचीत। रमेश तलवार से बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज सुनिए तीसरा भाग। पिछले एपिसोड में आपने सुना,
3: हमने जाना था नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त होता है जब पिक्चर एंड में उस जमाने में, तो रेमनॉल्ड लैब में गए, नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त क्या कैंची वो लगाई, नीचे तो लिफ्ट से नहीं आए, सीढ़ियों से नीचे उतरे, जैसे कंपाउंड में आए मेरे प्रोड्यूसर साहब गिर गए। उनके बहुत शरीर बहुत हैवी था उनका।
2: जी जी जी।
3: हाथ पाथ देखा उन्होंने, गड़बड़ है क्योंकि जा चुके थे। अब ये सोचो कब सोचा था कि साहिबा जैसी फिल्म एक डेढ़ साल लेट भी हो गई
2: और सलमान खान ड्रॉप हो गए,
3: जो वो ड्रॉप हो गए और वो पिक्चर जो है चली नहीं।
2: पिछले एपिसोड में आपने सुना, रमेश तलवार साहब इन सब बातों के दौरान बसेरा की बातें छूट गई हैं जहां से आपका सफर डायरेक्शन का शुरू होता है।
3: बसेरा का भी इसी तरह सा भाई, देखिए दूसरा आदमी जब रिलीज हुई
2: हाँ
3: तो बहुत तारीफ हुई, राखी जी का बहुत उसमें योगदान था कि उन्होंने काम किया।
2: नहीं तो एक काम करते हैं, पहले दूसरा आदमी की बात करते हैं फिर बसेरा की।
3: चलिए करिए।

0: पहुंचे।
1: मतलब दीवार के बाद का थॉट था?
0: हाँ, मतलब ऐसा कुछ करके अलग किस्म की थी वो, बन गई आइडिया वाइडिया, ओके हो गया, वन लाइन बना ली हमने नए राइटर से कुछ। और मैं अमित जी के पास गया, बहुत ख्याल रखते हैं, मतलब मैं उनके छोटे भाई की तरह हूँ, चाहे हमने काम नहीं किया, तीन चार फिल्मों में असिस्टेंट था ना मैं,
1: जी जी,
0: सारी फिल्म में त्रिशूल में भी था, उसमें था, और उस सब हर सेटिंग में स्टोरी सेटिंग में भी होते थे, शूटिंग में मुझे देखते थे काम करता हूँ कोई ऐसा। फिर जया जी के साथ मैंने दो ड्रामे डायरेक्ट किए थे
1: जी,
0: वो भी अमेरिका टूर किए। तो अलबत्ता उन्होंने मुझसे कहा, ये देखो भाई शॉर्ट ये है कि यश जी के साथ मैं एक पिक्चर कर रहा हूँ, और तुम्हारी पिक्चर भी मैं करूं तो एक कंपनी की दो पिक्चरें हो जाएंगी, डायरेक्टर की और उसके असिस्टेंट की पिक्चर, तो जो भी हो आप डायरेक्टर हो गए लेकिन कहलाते तो यश चोपड़ा के असिस्टेंट हैं, दो प्रोजेक्ट एक ही जगह दूंगा, डीटी में जाएंगी वो भी होगा, बाकी लोगों को नहीं काम, इस तरह की कुछ बात बोला। पहले भी मैंने एक प्रोड्यूसर के साथ ऐसा किया था, मेरे शायद प्रकाश मेहरा के टाइम पे, प्रकाश मेहरा जी के साथ और उनके असिस्टेंट के साथ एक पिक्चर की थी जिसमें उनको थोड़ा सा डेटा एडजस्टमेंट में गड़बड़ हुई थी। तो एक काम करो तुम एक पिक्चर किसी और के साथ बना लो, फिर तुम, मैं करूँगा आपकी पिक्चर, कभी मैं ना नहीं करता
1: जी।
0: और उस वक्त वो मेरे ख्याल में इलेक्शन भी लड़ रहे थे, वो शायद दिल्ली में जाके या कहीं उन्होंने वो भी किया था
1: जी। जी जी,
0: अलबत्ता मैं आया, मैंने यश जी से कहा कि उन्होंने तो मना कर दिया, फिर मैंने इनके अलग सब्जेक्ट जैसे सुनते रहते हैं आप लोग और चलता है, तो मुझे ऋषि कपूर का एक दोस्त है उसने आइडिया सुनाया और उसने कहा कि ऐसा है, तो वो जो आइडिया सुनाया उसमें ऋषि कपूर है, नीतू सिंह वाला रोल है और बाप और माँ है वो है, उसमें राखी का रोल नहीं था।
1: ओके ओके,
0: जो सब्जेक्ट सुनाया
1: जी,
0: तो लेकिन सब्जेक्ट बड़ा अच्छा था और ऋषि कपूर को पसंद था, तो मैंने उनके दोस्त से कहा कि भाई तेरी स्टोरी में लेता हूँ लेकिन इसमें चेंजेस वेंजेस होंगे, नया न्यू कमर राइटर
1: जी जी जी,
0: उन्हीं का नाम है राइटर, एज राइटर स्टोरी राइटर उनका नाम ही है, तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ जो भी है। तो मैंने चिंटू से कहा, मैंने कहा भैया ये ऐसा ऐसा है, सागर सरदी साहब से कहें करने के लिए, बोला बहुत अच्छा अगर सागर सरदी कर ले तो। मैंने सागर साहब से कहा कि साहब ऐसा मुझे ये चांस मिल रहा है यश चोपड़ा की पिक्चर और आप लिखे अगर तो ये स्टोरी आइडिया है, तो उन्होंने सुनो, उन्होंने कहा ये आर्ट फिल्म का आइडिया है।
1: अच्छा,
0: हाँ, जब ओरिजिनल जो बाकी कहानी आप राखी निकाल दो, बाकी जो है बहुत कम आया उसमें, तो बड़ी कमर्शियल यश चोपड़ा पिक्चर मतलब कमर्शियल पिक्चर, बड़ी पिक्चर, तो इसमें कोई और कहानी मिक्स करते हैं, कुछ और डालते हैं। तो सागर साहब एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते रहे तीन चार साल, वो जो एक्सपीरियंसेस उनको थे वो उन्होंने इसमें डाले। और इलिस्टेड वीकली में किसी का फोटो आया था, एक कोई सीनियर थी एडवर्टाइजिंग में, उसका फेस बहुत आता था, उनका फेस आया, उन्होंने वो मुझे दिखाया, ऐसी कोई औरत। और फिर करते करते ये आइडिया आ गया कि 40 साल की वो और 20 साल का लड़का,
1: हाँ
0: ये करे, तो ये करते करते करते फिर उसमें लॉजिक ये है कि हमने एंड में 40 साल के साथ लड़के को भेजना नहीं है, 20 साल का लड़का 20 साल की लड़की में उनकी ही दोस्त उनका ही करना है ये सब, तो हमको एक विलन का नया नेगेटिव कैरेक्टर मिल गया, विलन मतलब जो हीरो हीरोइन के बीच में आता है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: उस तरह का।
1: ये रिस्की नहीं था उस वक्त?
0: रिस्की था
1: जी,
0: रिस्की था, लेकिन यश चोपड़ा भी प्रोग्रेसिव आदमी थे
1: जी,
0: सागर साहब भी प्रोग्रेसिव थे, हम भी प्रोग्रेसिव थे, सोचने का जो ढंग था हम लोग एक्साइटेड हो गए। तो हमने एक आइडिया ये सोचा कि हम शुरू में ऐसा करेंगे कि राज कपूर और नूतन को डालते हैं।
1: अरे बाप रे,
0: उन लोगों ने अपने जमाने में मोहब्बत की थी,
1: हाँ हाँ,
0: और आज सेम चीज ये बच्चा कर रहा है, और राज कपूर फिर बाप का रोल करेगा, फादर के रोल में राज कपूर को ले ले। तो जब वो डाल तो दिया हमने, यश जी ने मुझसे आयशा से कहा बेटा तेरी पहली पिक्चर है, राज कपूर साहब के टाइमिंग अलग है, तेरा सोचने का तुम्हारा काम करने का ढंग अलग है, वो डायरेक्टर भी हैं उनका काम करने का ढंग अलग है, सोच लो। मैं तुम्हें डिस्करेज नहीं करता।
1: सही कहा जी।
0: और मैं चिंटू से भी बात कर चुका था, फिर मैं जाके उसको ऐसा वो कह रहे हैं, बोला हाँ यार ये तो है देख ले तू, तो वो पोर्शन बिगनिंग का मैंने काट दिया पिक्चर में शुरू में जो सोच रहे थे, और फिर हमने नॉर्मल बाप रखा जो सत्यन कपूर को रोल दिया था
1: जी,
0: गीता सिद्धार्थ उनकी वाइफ है
1: जी,
0: और नूतन के बदले। अब साहब ये जब हो गया आइडिया, अब मैंने पहला मेरा ख्याल था कि शर्मिला टैगोर ये

उनकी उल्फत में जरा सी शोकियां हैं, नादानियां हैं, कुछ शिकवे हैं, कुछ शिकायतें भी हैं, मगर जरा मेरे दिल की मजबूरियां देखिए, ये मोहब्बत भी उन्हीं से बार बार करता है।

जहां मिले दो जवान नजर होती तकरार वही है, दिल पर रख कर हाथ ये कह दो हमसे प्यार नहीं है। जहां मिले दो जवान नजर होती तकरार वही है, दिल पर रख कर हाथ ये कह दो हम

0: हटा दो।
1: एक हसीन मुलाकात के लिए जरा पैगाम भेज दूं, उम्मीद है बहुत तेरे आने की। यूं मेरे खत को किताबों में न रख देना, जरा उसमें लिखे जज्बातों को दिल से महसूस कर लेना। यकीनन लबों पे मुस्कुराहट तैर जाएगी और मुझे भी दिल में जगह मिल जाएगी।

आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। सायंकालीन सभा में आप सबों का स्वागत है। तो आइए सबसे पहले जानकारी लेते अपनी इस सभा में प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों पर।

शाम 6:55 पर हम शामिल होंगे अपने आकाशवाणी के रांची केंद्र की प्रसारण सेवा में, जहां ठीक 7:00 बजे आप सुनिएगा प्रादेशिक समाचार 7:10 पर जिले में आजकल।

गीत गजलों का कार्यक्रम स्वरांजलि का समय होगा शाम 7:15 पर। लोक गीतों का कार्यक्रम हुआ आप सुन सकेंगे शाम 7:45 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से आप सुनिएगा रात्रि 8:00। गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत संगीत आप सुन सकेंगे रात्रि 8:30 पर। समाचार संध्या रात्रि 8:45 पर। न्यूज़ @9 रात्रि 9:00। उर्दू में खबरें रात्रि 9:15 पर।

रात्रि 9:30 पर हम शामिल होंगे विविध भारती के कार्यक्रम में। फिल्मी संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा आप सुन सकेंगे रात्रि 10 बजे से।

युवानी कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त आराध्या माही। दोस्तों, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करती हूं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे और हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम इस कार्यक्रम में आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आपके मनोरंजन का ख्याल रखते हुए फिल्मी गीतों को भी सुनवाएंगे। तो दोस्तों, आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आज के हमारे चर्चा का पहला विषय है युवाओं में पर्यावरण की समस्या। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि युवाओं में पलायन किस प्रकार हो रहा है और हम इससे कैसे बच सकते हैं, इनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आज के समय में युवाओं में पलायनवाद की एक गंभीर सामाजिक और मानसिक समस्या बनती जा रही है। पलायनवाद का अर्थ है कठिन परिस्थितियां, जिम्मेदारी और समस्याओं का सामना करने के बजाय उनसे बचने की कोशिश करना। कई युवा मेहनत, संघर्ष और धैर्य से दूर होकर आसान रास्ता चुनते हैं, जिससे उनका व्यक्तिगत और सामाजिक विकास प्रभावित होता है। दोस्तों, पलायन के मुख्य कारण कौन कौन से हैं, इसके बारे में भी जानते हैं। दोस्तों, पहला है बेरोजगारी और आर्थिक समस्या। जब युवाओं को शिक्षा के बाद रोजगार नहीं मिलता तो उनमें निराशा बढ़ जाती है। वे अपने गाँव या छोटे शहर को छोड़कर बड़े शहरों में पलायन करने लगते हैं। अत्यधिक प्रतिस्पर्धा यानी

की हर क्षेत्र में प्रतियोगिता बहुत बढ़ गई है। सफलता का दबाव कई युवाओं को मानसिक रूप से कमज़ोर बना देती है। दोस्तों तीसरा आता है परिवार और समाज का दबाव, यानी कि कई बार माता पिता और समाज की अपेक्षाएं इतनी अधिक होती हैं कि युवा तनाव में आ जाते हैं और समस्या से भागने लगते हैं। चौथा है सोशल मीडिया और आधुनिक जीवन शैली। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर दिखने वाली चमक धमक युवाओं को वास्तविक जीवन से दूर कर देती है। वे दूसरों की सफलता देखकर खुद को कमज़ोर समझने लगते हैं। पांचवा और मुख्य कारण है नशे और गलत संगति का प्रभाव, यानी कि युवा तनाव से बचने के लिए नशे, गलत आदतों या गलत संगति का सहारा लेते हैं और पलायनवाद को बढ़ावा देते हैं। दोस्तों पलायनवाद के दुष्परिणाम क्या हैं इसके बारे में जानते हैं। पहले आत्मविश्वास की कमी आती है, मानसिक तनाव और अवसाद बढ़ते हैं, परिवार और समाज से दूरी बढ़ती है, युवाओं में प्रतिभा और क्षमता का सही उपयोग नहीं हो पाता, देश के विकास पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ती है। दोस्तों इसके समाधान और उपायों के बारे में भी आइए जानकारी लेते हैं। पहला, सकारात्मक सोच और विकसित करना। युवाओं को यह समझना चाहिए कि जीवन में संघर्ष और असफलता सामान्य बातें हैं, कठिन समस्याओं का सामना करने से ही सफलता मिलती है। दूसरा है कौशल विकास पर ध्यान, यानी कि नई नई तकनीकें और व्यावसायिक शिक्षा से लेकर युवा आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तीसरा है परिवार का सहयोग, यानी कि माता पिता और बच्चों पर अत्यधिक दबाव न डालने के बजाय उनका मार्गदर्शन और उत्साहवर्धन करना चाहिए। चौथा है मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान, यानी कि योग्य ध्यान, खेल कूद और अच्छे मित्रों का साथ सामाजिक तनाव कम करने में मदद करता है। पांचवा यानी कि सही दिशा और प्रेरणा। शिक्षक और समाज को युवाओं को प्रेरित करते रहना चाहिए, वे समस्या से भागने की नहीं बल्कि उनका समाधान खोजें। दोस्तों युवा किसी भी देश की सबसे बड़ी शक्ति होती है। यदि वे पलायनवाद की भावना से बाहर निकलकर आत्मविश्वास, मेहनत और धैर्य के साथ आगे बढ़े तो वे न केवल अपनी बल्कि समाज और देश का भी भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। समस्याओं से भागना समाधान नहीं बल्कि उनका साहस से साथ समाधान सामना करना ही सच्ची सफलता मानी जा सकती है। दोस्तों अभी हम चर्चा कर रहे थे युवाओं में पलायनवाद की समस्या के बारे में। इस चर्चा के बाद आइए सुनवाते हैं आपको एक प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों, इस गाने के बाद आइए सुनते हैं वार्ता विषय। अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री के 15 सूती कार्यक्रम। वार्ताकार हैं चंद्रशेखर कुमार।
1: अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम। मंत्रालय अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहा है। यह एक व्यापक कार्यक्रम है जो भाग लेने वाले मंत्रालयों विभागों की विभिन्न योजनाओं पहलों को शामिल करता है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि 6 केंद्रीय अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के वंचित और कमजोर वर्ग के पास विभिन्न सरकारी कल्याण योजनाओं का लाभ उठाने के समान अवसर हों और समग्र सामाजिक योगदान में योगदान करें। देश का आर्थिक विकास कार्यक्रम के व्यापक उद्देश्य हैं। पहला, शिक्षा के अवसर को बढ़ाना। मौजूदा एवं नई योजनाओं, स्वरोजगार के लिए बढ़ी हुई क्रेडिट सहायता और राज्य एवं केंद्र की नौकरियों के भर्ती के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों और रोजगार में अल्पसंख्यकों के लिए समान हिस्सेदारी सुनिश्चित करना। बुनियादी ढांचा विकास योजनाओं में अल्पसंख्यकों के लिए उचित भागीदारी की हिस्सेदारी की सुनिश्चित करने, उनके जीवन की स्थितियों में सुधार करना। चौथा, सांप्रदायिक वैमनस्य और हिंसा की रोकथाम और नियंत्रण। कार्यक्रम के तहत अधिसूचित अल्पसंख्यक अर्थात ईसाई, सिख, जैन, मुस्लिम, बौद्ध, पारसी के कल्याण के लिए पूरे देश में केंद्र सरकार की विभिन्न मंत्रालय विभागों द्वारा विभिन्न योजनाओं कार्यान्वयन की जाती है। शैक्षणिक सशक्तिकरण। पहला, छात्रवृत्ति योजना। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति और मेरिट कम मीन्स आधारित छात्रवृत्ति। दूसरा, मौलाना आजाद राष्ट्रीय फेलोशिप योजना। अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को एमफिल और पीएच

0: जैसी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तीसरा, इसके अलावा मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा योजना को लागू करता है कक्षा 9 से 12 में पढ़ने वाली अल्पसंख्यकों की मेधावी लड़कियों के लिए बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति। चौथा, नया सवेरा निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना, जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के छात्र और उम्मीदवारों के कौशल और ज्ञान को बढ़ाना है, जहां कुल वार्षिक पारिवारिक आय रुपए से कम बचत है। सरकारी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम में रोजगार, निजी क्षेत्र में नौकरी और स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम में संस्थानों में कोचिंग प्रवेश पाने के लिए 6 लाख रुपया। बी, आर्थिक सशक्तिकरण। पहला, कौशल विकास। दूसरा, सीखो और कमाओ। सीखो और कमाओ यह अल्पसंख्यकों के लिए एक कौशल विकास पहल है और इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक युवाओं के कौशल एवं उनकी योग्यता, वर्तमान आर्थिक रुझान और बाजार क्षमता के आधार पर विभिन्न आधुनिक पारंपरिक कौशल में उन्नत करना है, जिससे उन्हें उपयुक्त रोजगार मिल सके या उन्हें स्वरोजगार के लिए उपयुक्त रूप से कुशल बनाना। बी, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा देश भर के अल्पसंख्यक कारीगरों और पाक विशेषज्ञों को उनके प्रदर्शन और विपणन के लिए एक प्रभावी मंच देने के लिए विकास के लिए पारिवारिक पारंपरिक कला शिल्प में कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन योजना के तहत एक मिशन शुरू किया गया है। मंत्रालय द्वारा आयोजित हुनर हाट के माध्यम से बेहतरीन हस्तशिल्प और उत्कृष्ट रूप से तैयार किए गए उत्पाद मंत्रालय ने डिजाइन, हस्ताक्षेप, उत्पाद श्रृंखला विकास, पैकेजिंग, प्रदर्शनियों के लिए विभिन्न शिल्प समूहों में काम करने के लिए राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थानों, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, भारतीय पैकेजिंग संस्थान को शामिल किया गया है। नई मंजिल। अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं के शिक्षा और कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए योजना। अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं को अल्पकालिक रोजगार उन्मुख कौशल विकास पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए गरीब नवाज स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कौशल भारत मिशन के तहत कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय व्यक्तियों सहित 1 करोड़ लोगों को कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2016-20 नामक एक योजना लागू कर रहा है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम NFDACF ऋण योजनाएं अनुसूचित अल्पसंख्यकों के बीच पिछड़े वर्गों को के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए स्वरोजगार और आय सृजन गतिविधियों के लिए रियायती ऋण प्रदान करती है। बैंक द्वारा प्राथमिक क्षेत्र को ऋण, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इसके अलावा एक अन्य योजना अर्थात प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है, जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों की सामाजिक गतिविधि स्थितियों एवं बुनियादी सुविधाओं में सुधार करना है, ताकि उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो और असंतुलन को कम किया जा सके। अल्पसंख्यक सघनता वाले क्षेत्र की पहचान की गई है। PMGVK के तहत स्वीकृत प्रमुख परियोजनाएं शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल के क्षेत्रों में है और इसमें आवासीय विद्यालय, स्कूल भवन, छात्रावास, डिग्री कॉलेज, ITI, पॉलिटेक्निक, सद्भाव मंडप, स्वास्थ्य केंद्र, कौशल केंद्र, खेल सुविधाएं, पेयजल सुविधाएं, स्वच्छता शामिल है।
1: दोस्तों, भी आप सुन रहे थे वार्ता, विषय था अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम। वार्ताकार थे चंद्रशेखर कुमार। दोस्तों, इस वार्ता के बाद अब हम बातें करते हैं विषय पर, विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस के बारे में। दोस्तों, वर्ल्ड टेक्लो कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन सोसाइटी डे विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस हर वर्ष 17 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को दूरसंचार, इंटरनेट, मोबाइल तकनीक और सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में जागरूक करना है। यह दिवस केवल हमें बताता है कि आधुनिक संचार साधन किस प्रकार दुनिया को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा जाते हैं। दोस्तों, आज के समय में दूरसंचार हमारे जीवन का एक आवश्यक हिस्सा बन चुका है। मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, वीडियो कॉल, ईमेल और सोशल मीडिया के माध्यम से लोग देश विदेश में तुरंत संपर्क कर सकते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, बैंकिंग और सरकारी सेवाओं में भी सूचना तकनीक का उपयोग तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य डिजिटल तकनीक को हर वर्ष व्यक्ति तक पहुंचाना है, ताकि ग्रामीण

नौशहरी क्षेत्रों के बीच की दूरी कम हो सके। ऑनलाइन पढ़ाई, डिजिटल भुगतान, टेली मेडिकल और ई गवर्नमेंट जैसी सुविधा लोगों के जीवन में आसानी से बनी रह सके। दोस्तों, हालांकि यह तकनीक के बढ़ते उपयोग के साथ कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे साइबर अपराध, गलत जानकारी का प्रसार और इंटरनेट का दुरुपयोग। इसलिए लोगों को डिजिटल सुरक्षा और जिम्मेदार उपयोग के बारे में जागरूक होना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, यह हमें समझना चाहिए कि दूरसंचार और सूचना तकनीक केवल सुविधा का साधन नहीं बल्कि विकास और प्रगति का आधार भी है। यदि इसका सही उपयोग किया जाए तो यह शिक्षा, रोजगार और समाज के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। दोस्तों, अभी हम जानकारी प्राप्त कर रहे थे विश्व दूरसंचार एवं सूचना प्रसार दिवस के बारे में। दोस्तों, अब कार्यक्रम का आखिरी पड़ाव हो चला है, तो इसी के साथ सुनाते हैं आपको एक

दोस्तों, कार्यक्रम के आखिर पर हमें जाते जाते आइए हम आपको एक जानकारी देते हैं कि आप दुर्घटना से कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में कुछ बातें कर ले। दुर्घटना से बचाव यानी कि हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। थोड़ी सी सावधानी हमें बड़ी परेशानी से बचा सकती है। इस विषय पर आप, दुर्घटना अचानक हो लेकिन सावधानी से और जागरूकता से इन्हें काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। सड़क पर चलते समय हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। वाहन चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग अवश्य करें। तेज़ गति, मोबाइल फ़ोन का उपयोग और लापरवाही दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है। दोस्तों, घर में बिजली, गेम्स और आग से जुड़ी चीज़ों से भी सावधानी रखें उपयोग करना चाहिए। बच्चों को खतरनाक वस्तुओं से दूर रखना चाहिए। स्कूल, सड़क और कार्यस्थल पर हर जगह सुरक्षा नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, इसलिए खुद को सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाए रखें। दोस्तों, इसी के साथ हमारे युवाणी कार्यक्रम समाप्त करने की आज्ञा दें। आपकी दोस्त आराध्या माही को आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने राज्य सरकार पर नल जल योजना को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस योजना के लिए सरकार के पास खजाने में 7,000 करोड़ पड़े हुए हैं, लेकिन खर्च नहीं किए जा रहे हैं। वहीं इस मामले में मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने भाजपा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि केंद्र सरकार राज्य को भीख नहीं दे रही है, यह हमारा अधिकार है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची के होटवार केंद्रीय जेल में बंद एक महिला कैदी के साथ जेल अधीक्षक के द्वारा यौन शोषण और गर्भवती किए जाने का गंभीर आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा कि जेल आईजी मामले को दबाने, फाइलें गायब करने और सबूत मिटाने के लिए महिला कैदी को गुप्त स्थानों व अस्पतालों में ले जा रहे हैं, जबकि गवाह कर्मियों को तबादला कर उन्हें चुप कराया जा रहा है। जमशेदपुर में कोल्हान प्रमंडल के झारखंड विद्युत श्रमिक संघ की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें श्रमिकों ने बकाया पीएफ, ईएसआई और अन्य सुविधाओं को लेकर गहरी नाराजगी जताई। बैठक में श्रमिकों ने संबंधित ठेकेदार पर मनमानी और कर्मचारियों की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना 2027 के चल रहे पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल वीए वराड़े स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। जामताड़ा के एसपी शंभू कुमार सिंह ने जिले के पश्चिम बंगाल से सटे अंतर्राज्यीय पुलिस चौकी खुदमल्लिका बागडेहरी एवं कुंडथित थाना का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में विधि व्यवस्था और लंबित मामलों के निष्पादन को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। जमशेदपुर में आयोजित झारखंड राज्य कबड्डी संघ की विशेष बैठक में वर्ष 2026-2030 के लिए नई कार्यकारिणी के गठन पर चर्चा की गई। महासचिव संजय कुमार झा की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि जून के द्वितीय सप्ताह में चुनाव के माध्यम से नई कमेटी का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 7:00 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:03 और 10 सेकंड हो चुके हैं। आइए हम लेकर हाजिर हैं कृषकों को संबोधित कार्यक्रम खेती बारी।

खेतीबाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले सभी कृषक बंधुओं का स्वागत है, आप सभी का जोहार नमस्कार। हम लेकर हाजिर हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी। खेतीबाड़ी जैसे ही चर्चा हो या वार्ता का विषय हो, हमारे आंखों के सामने खेत की हरियाली और सुरक्षित पर्यावरण की हम जो बात करते हैं वही हमारे आंखों के सामने दिखती है। लेकिन सुरक्षित अगर उस पर्यावरण को हमें रखना है तो किस तरह से रखना, ये हमारी भी जिम्मेदारी होती है कृषक बंधुओं। क्योंकि खेती की बात अगर हो तो किसान की मेहनत और उनकी तरक्की बहुत मायने रखती है। चाहे हम मुर्गी पालन करें, चाहे हम खेतों में हम धान की खेती करें, गेहूं की खेती करें, सब्जियों की खेती करें, मौसम अनुसार जो भी सब्जियां जो हमारे खेतों में बनती हैं, हर किसी का उद्देश्य अलग अलग होता है। खाद कैसे देना है समय पे और उसे कैसे सींचना है, गुड़ाई कैसे करनी है, कटाई छटनी हर चीज़ की व्यवस्था अगर भरपूर मात्रा में हमारे कृषक बंधु करते हैं तो सफलता उन्हें हासिल होती है। आज हम बात कर रहे हैं मुर्गियों की कि मुर्गियों के दाना को देखने में कैसे हमें सहूलियत बरतनी चाहिए, क्योंकि हर तरह की मुर्गियाँ जो होती हैं उनकी उम्र और उम्र देख कर ये उस पर निर्भर करता है कि उन्हें कैसे हम दाना दे सकते हैं। जैसे अंडे देने वाली मुर्गियां, लेयर मांस वाली ब्रायलर या देशी मुर्गियां, सही मिश्रण से मुर्गियां स्वस्थ रहती हैं, जल्दी बढ़ती हैं और अंडे भी अच्छे देती हैं। अगर हम बात करें सामान्य देसी मुर्गियों के लिए संतुलित दाना मिश्रण की, तो आप घर पर भी कृषक बंधु ऐसा मिश्रण बना सकते हैं। मक्का टूटा हुआ 40% और गेहूं चोकर 20 जो उसकी मात्रा होगी, सोयाबीन खली 20 और चना या मटर दाल चूरी 10, सरसों खली मूंगफली खली 5, मिनरल मिक्स नमक 2 या 3% बस इसकी मात्रा होगी, कैल्शियम सी पाउडर चूना 2 या 3%। इसमें प्रोटीन ऊर्जा और कैल्शियम का संतुलन बना रहता है, इसलिए ये देना बहुत ज़रूरी है। अंडे देने वाली मुर्गियों की बात करें तो कैल्शियम ज़्यादा ज़रूरी होती है ताकि अंडे का छिलका मजबूत रहे। इन चीज़ों पर ध्यान दें, सीप पाउडर या कैल्शियम जरूर मिलाएं, साफ पानी हमेशा उपलब्ध रहे, हरी सब्जियाँ और थोड़ा हरा चारा भी दें। छोटे चूजों के लिए अगर हम दाना बनाना चाहें घर पे, तो चूजों को शुरुआती 6 से 8 हफ्ते में बारीक दाना, ज़्यादा प्रोटीन 20 या 22%, साफ़ और सूखी जगह, घर की चीज़ें जो दे सकते हैं आप, जैसे टूटे चावल, बाजरा, दाल का पानी, हरी पत्तियां, रोटी के छोटे टुकड़े कम मात्रा में। लेकिन सिर्फ रोटी या चावल पर निर्भर नहीं रहना चाहिए और किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए कृषक बंधुओं, तो फफूंदी लगा दाना, बहुत ज़्यादा नमक, सड़ा हुआ खाना, गीला

0: याद आना लंबे समय तक। अगर आप चाहें तो और भी बातों का ध्यान सकते हैं कि 10 किलो दाना बनाने की पूरी मात्रा भी आप सोच समझकर अगर उस मात्रा को देखेंगे और देंगे तो आपकी मुर्गियां जो हैं वो सही समय पे अपने दाना के साथ वो तैयार होंगी। तो कृषक बंधु, इन सारी बातों का ख्याल अगर आप करेंगे तो खेती के साथ साथ मुर्गी पालन, बत्तख पालन में भी आप सफलता हासिल करेंगे। और आइए अब सुनते हैं वार्ता। भेंटवार्ता में मशरूम उत्पादन से महिला सशक्तिकरण। भेंटवार्ता कारण सीता देवी गोद्रमा काला विश्रामपुर पलामू। भेंट करता है संतोष कुमार।
1: सुवा गांव, और यहां मुलाकात होती है एक सफल मशरूम उत्पादक महिला से। और वास्तव में मशरूम उत्पादन महिला सशक्तिकरण के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। हमारी महिलाएं अगर इससे जुड़ती हैं तो निश्चित रूप से वो अपने घर परिवार को बहुत अच्छे से चला पाती हैं, चूँकि आय बहुत ज़्यादा उनको होता है और एक खुशहाल जीवन व्यतीत करती हैं। आपका नाम क्या हुआ?
2: उषा देवी।
1: कितने वर्षों से आप मशरूम उत्पादन से जुड़ी हुई हैं?
2: 10-12 साल।
1: 10-12 साल से जुड़ी हुई हैं। कैसे लगा आपको कि इससे जुड़ा जाए तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा?
2: पहले तो यहाँ हम लोग प्रशिक्षण लेने आते थे, जो सर लोग हम लोग को देते थे मशरूम उगाने के लिए प्रशिक्षण, फिर हम लोग लिए तो इसे लगा कि कम लागत में ज़्यादा फायदा है, इसके वजह से हम लोग इसका मतलब प्रयोग करने
1: लाभ लेने लगे। हाँ। है ना, 10-12 साल पहले आपने यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में प्रशिक्षण लिया।
2: हाँ
1: हाँ, तो प्रशिक्षण के दौरान क्या क्या सुविधाएँ दी गई?
2: उस समय हम लोग का खाना भी मिलता था, फिर पैसा भी मिलता था, मतलब आने जाने का भाड़ा, और यही प्रशिक्षण
1: है ना। क्या भाड़ा दिया जाता था?
2: 200 रुपया।
1: 200 रुपया दिया जाता था प्रतिदिन के हिसाब से?
2: नहीं।
1: हाँ।
2: मतलब लास्ट।
1: ओ अच्छा,
2: प्रशिक्षण के लास्ट।
1: अच्छा,
2: में।
1: अच्छा, ये 10-12 साल पहले की बात है कि नहीं? और उसके बाद फिर अब मशरूम उत्पादन के लिए आपको बताया गया, क्या क्या चीज़ समझाया गया था मशरूम उत्पादन?
2: उसके लिए हम लोग को समझाया गया कि आप लोग का जो घर में कुट्टी होता है, जो आप लोग मतलब सब जितना भी खेती बाड़ी करते हैं धान लगाते ही है, तो उसका जो कुट्टी होता है उससे आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: अच्छा।
2: आपको अलग से खर्चा नहीं लगेगा, सिर्फ आपको ये बीज लेना है, उसी से आपका मतलब और 2-3 इसमें आता है रासायनिक, उससे वो डाल करके उससे मतलब उगाया जाता है।
1: कौन मशरूम आप उत्पादन करती हैं?
2: छत्ता वाला।
1: छत्ता वाला ना, अगर हमारे किसान भाई छत्ता वाला करना चाहें तो कैसे करेंगे, जरा बढ़िया समझाइए इसको।
2: छत्ता वाला करना कुछ नहीं है, उसके लिए आपको बीज लेना है और कुटी 2-1.5 इंच के लगभग काट लेना है, और उसको रात भर के लिए पानी में अच्छा से धो करके, और उसको मतलब रासायनिक जो मिलता है दवा उसको डाल करके उसको रात भर भिगा के रखना है, सुबह में उसको छान करके धूप में पसार देना है, ज़्यादा सुखाना भी नहीं है, वो मतलब हाथ में नमी रहने तक उसका मतलब हाथ में ऐसे मुट्ठी बांधिएगा ना तो उसमें पानी नहीं आना चाहिए। उसके बाद फिर 4-5 लेयर बिछा करके और फिर बांध करके उसके में छेदा करके फिर टांग दीजिए, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है।
1: और एक कमरा का जो आवश्यकता?
2: हाँ, एक कमरा का आवश्यकता है, एक है तो और नहीं है तो भी हम लोग पलंग उलंग के नीचे डाल देते हैं तो अच्छा निकलता है।
1: अच्छा, ऐसे भी करती हैं?
2: हाँ, पलंग के नीचे।
1: मतलब
2: हम डाल देते हैं।
1: जगह की भी बचत?
2: हाँ, जगह का भी बचत होता है।
1: वाह, और कैसे कैसे देख रेख करती हैं फिर इसका बीच बीच में?
2: देख रेख इसमें हाँ खास कुछ सावधानियाँ बरतनी है, जैसे खैनी वगैरह कोई ठोकते पीटते जाता है उसे नहीं जाना है।
1: अच्छा।
2: हाँ, उसमें सावधानी बरतना है, धुआं से बचाना है, धूल वगैरह से, यही सब सावधानी।
1: बीज कहाँ से मिलता है आपको?
2: बीज तो हम लोग मंगा भी लेते हैं।
1: तो यहाँ गांव में महिलाओं का समूह है जो मशरूम उत्पादन करती हैं सब लोग?
2: हाँ, हम लोग जो यहाँ से प्रशिक्षण लिए हैं लगभग सारी करते ही हैं, और जो अपने बचती है कि नहीं इसमें कौन ऐसे वैसे करे।
1: अच्छा, तो ऐसे हो जाता है?
2: लेकिन जाओ यहाँ प्रशिक्षण ली है वो सारे लोग मतलब इसका बखूबी फायदा उठा रही है।
1: वाह, बहुत सुंदर। और महिलाएं अगर जुड़ना चाहें मान लिए इस रोजगार से, तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा?
2: सबसे पहले उनको प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, बिना प्रशिक्षण के कुछ हो नहीं सकता है। हाँ, उसके लिए केवीके में जुड़े आए और यहाँ से प्रशिक्षण ले और अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। कम लागत में इन लोग का ज़्यादा फायदा है।
1: कितना पूंजी लग जाता होगा?
2: ज़्यादा पूंजी नहीं लगता है, कम से कम 500-600 का भी बीज ले लेते हैं तो बहुत मतलब ज़्यादा ही है शुरुआत करने के लिए। उसके अलावा आप 3,000, 4,000, 5,000 जैसा बीज लगाइएगा वैसा आपका उत्पादन मिलेगा।
1: अच्छा।
2: हाँ।
1: तो शुरू में मतलब 500-600 का मतलब?
2: हाँ,
1: पूंजी लगा
2: कम से कम मतलब पहले देख ले कि मेरा सही हो रहा है कि नहीं, इतना लगाने से क्या हो जाएगा।
1: और फिर इसे
2: आगे बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं अपना आवश्यकता के अनुसार कि मुझे कितना क्षमता है, कितना कम कर सकते हैं।
1: तो इसका तो कोई मौसम होता होगा ना कि
2: हाँ ये ठंड।

0: में मौसम इसका अच्छा आता है, गर्मी में बहुत चांसेस कम रहता है निकलने का। अब हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, ऑलरेडी हम पहले से रूम तैयार करके रख चुके हैं।
1: तो इसके तैयारी के लिए तो मान लीजिए कि ठंडा में आप तैयारी करेंगी या करेंगे, तो कितना उत्पादन कर लेती होंगी आप?
0: कम से कम 40-50 हज़ार का तो हो जाता है।
1: 40-50 हज़ार मतलब एक मौसम में?
0: मौसम में तो मतलब लगातार लगाते रहेंगे तो मतलब पूछिए नहीं।
1: अच्छा।
0: लेकिन मतलब समझ रहे हैं, नीचे से मेरा एकदम तल्ला जाता है।
1: अच्छा, वाह।
0: मतलब 15 गो एक में लटकाते हैं।
1: हाँ।
0: तो समझ जाइए उसका अनगिनत है, बता नहीं सकते हैं।
1: अच्छा, खुशहाल जीवन व्यतीत करती हैं। आपका नाम क्या हुआ?
0: उषा देवी।
1: कितने वर्षों से आप मशरूम उत्पादन से जुड़ी हुई हैं?
0: 10-12 साल।
1: 10-12 साल से जुड़ी हुई हैं। कैसे लगा आपको कि इससे जुड़ा जाए तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा?
0: पहले तो यहाँ हम लोग प्रशिक्षण लेने आते थे, जो सर लोग हम लोग को देते थे मशरूम उगाने के लिए प्रशिक्षण, फिर हम लोग लिए, तो इसे लगा कि कम लागत में ज़्यादा फायदा है, इसके वजह से हम लोग इसका मतलब प्रयोग करने
1: लाभ लेने लगे। हाँ। है ना, 10-12 साल पहले आपने यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में प्रशिक्षण लिया।
0: हाँ।
1: हाँ, तो प्रशिक्षण के दौरान क्या क्या सुविधाएं दी गई?
0: उस समय हम लोग का खाना भी मिलता था, फिर पैसा भी मिलता था, मतलब आने जाने का भाड़ा, और यही प्रशिक्षण
1: है ना। क्या भाड़ा दिया जाता था?
0: 200 रुपया।
1: 200 रुपया दिया जाता था प्रतिदिन के हिसाब से?
0: नहीं।
1: हाँ।
0: मतलब लास्ट।
1: ओ अच्छा,
0: प्रशिक्षण के लास्ट।
1: अच्छा, ये 10-12 साल पहले की बात है कि नहीं? और उसके बाद फिर अब मशरूम उत्पादन के लिए आपको बताया गया, क्या क्या चीज़ समझाया गया था मशरूम उत्पादन?
0: उसके लिए हम लोग को समझाया गया कि आप लोग का जो घर में कुट्टी होता है, जो आप लोग मतलब सब जितना भी खेती बाड़ी करते हैं धान लगाते ही है, तो उसका जो कुट्टी होता है उससे आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: अच्छा।
0: आपको अलग से खर्चा नहीं लगेगा, सिर्फ आपको ये बीज लेना है, उसी से आपका मतलब, और 2-3 इसमें आता है रासायनिक, उससे वो डाल करके उससे मतलब उगाया जाता है।
1: कौन मशरूम आप उत्पादन करती हैं?
0: छत्ता वाला।
1: छत्ता वाला ना, अगर हमारे किसान भाई छत्ता वाला करना चाहें तो कैसे करेंगे, जरा बढ़िया समझाइए इसको।
0: छत्ता वाला करना कुछ नहीं है, उसके लिए आपको बीज लेना है और कुटी 2-1.5 इंच के लगभग काट लेना है, और उसको रात भर के लिए पानी में अच्छा से धो करके, और उसको मतलब रासायनिक जो मिलता है दवा उसको डाल करके उसको रात भर भिगा के रखना है, सुबह में उसको छान करके धूप में पसार देना है, ज़्यादा सुखाना भी नहीं है, वो मतलब हाथ में नमी रहने तक उसका मतलब हाथ में ऐसे मुट्ठी बांधिएगा ना तो उसमें पानी नहीं आना चाहिए। उसके बाद फिर 4-5 लेयर बिछा करके और फिर बांध करके उसके में छेदा करके फिर टांग दीजिए, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है।
1: और एक कमरा का जो आवश्यकता?
0: हाँ, एक कमरा का आवश्यकता है, एक है तो, और नहीं है तो भी हम लोग पलंग उलंग के नीचे डाल देते हैं तो अच्छा निकलता है।
1: अच्छा, ऐसे भी करती हैं?
0: हाँ, पलंग के नीचे
1: मतलब
0: हम डाल देते
1: हैं। जगह की भी बचत?
0: हाँ, जगह का भी बचत होता है।
1: वाह। और कैसे कैसे देख रेख करती हैं फिर इसका बीच बीच में?
0: देख रेख इसमें हाँ खास कुछ सावधानियाँ बरतनी है, जैसे खैनी वगैरह कोई ठोकते पीटते जाता है उसे नहीं जाना है।
1: अच्छा।
0: हाँ, उसमें सावधानी बरतना है, धुआं से बचाना है, धूल वगैरह से, यही सब सावधानी।
1: बीज कहाँ से मिलता है आपको?
0: बीज तो हम लोग मंगा भी लेते हैं।
1: तो यहाँ गांव में महिलाओं का समूह है जो मशरूम उत्पादन करती हैं सब लोग?
0: हाँ, हम लोग जो यहाँ से प्रशिक्षण लिए हैं लगभग सारी करते ही हैं, और जो अपने बचती है कि नहीं इसमें कौन ऐसे वैसे करे।
1: अच्छा, तो ऐसे हो जाता है ना?
0: लेकिन जाओ यहाँ प्रशिक्षण ली है वो सारे लोग मतलब इसका बखूबी फायदा उठा रही है।
1: बहुत सुंदर। और महिलाएं अगर जुड़ना चाहें मान लिए इस रोजगार से, तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा?
0: सबसे पहले उनको प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, बिना प्रशिक्षण के कुछ हो नहीं सकता है। हाँ, उसके लिए केवीके में जुड़े आए और यहाँ से प्रशिक्षण ले और अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। कम लागत में इन लोग को ज़्यादा फायदा है।
1: कितना पूंजी लग जाता होगा?
0: ज़्यादा पूंजी नहीं लगता है, कम से कम 500-600 का भी बीज ले लेते हैं तो बहुत मतलब ज़्यादा ही है शुरुआत करने के लिए। उसके अलावा आप 3,000, 4,000, 5,000 जैसा बीज लगाइएगा वैसा आपका उत्पादन मिलेगा।
1: अच्छा।
0: हाँ।
1: तो शुरू में मतलब 500-600 का मतलब?
0: हाँ,
1: पूंजी लगा
0: कम से कम मतलब पहले देख ले कि मेरा सही हो रहा है कि नहीं, इतना लगाने से क्या हो जाएगा।
1: और फिर इससे
0: हाँ आगे बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं अपना आवश्यकता के अनुसार कि मेरा कितना क्षमता है, कितना कम कर सकते हैं।
1: तो इसका तो कोई मौसम होता होगा ना कि?
0: हाँ, ये ठंडी में मौसम इसका अच्छा आता है, गर्मी में बहुत चांसेस कम रहता है निकलने का। अब हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, ऑलरेडी हम पहले से रूम तैयार करके रख चुके हैं।
1: तो इसके तैयारी के लिए तो मान लीजिए कि ठंडा में आप तैयारी करेंगी या करेंगे, तो कितना उत्पादन कर लेती होंगी आप?
0: कम से कम 40-50 हज़ार का तो हो जाता है।
1: 40-50 हज़ार मतलब एक मौसम में?
0: मौसम में तो मतलब लगातार लगाते रहेंगे तो मतलब पूछिए नहीं।
1: अच्छा।
0: लेकिन मतलब समझ रहे हैं, नीचे से मेरा एकदम तल्ला जाता है।
1: अच्छा, वाह। हाँ,
0: मतलब 15 गो एक ही में लटकाते हैं।
1: हाँ, हाँ,
0: तो समझ जाइए उसका अनगिनत है, बता नहीं सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसा भी हो जाता
0: है? हाँ, निकलता है उस समय एकदम, इतना इसका ग्रोथ है ना, इतना जल्दी जल्दी ग्रोथ करता है, आपको क्या बताएं। आज देखिएगा इतना छोटा, कल देखिएगा इतना।

0: ये आपका मशरूम उत्पादन करने की बात हो गई, अगर हम उत्पादित कर लेते फिर इसको हम बेचने कहाँ जाते हैं?
1: ऐसे तो हमारा डिमांड वहाँ गाँव में नहीं पूर पाता है, क्या कि सब लोग कहता है इसको खाने से ना 56 रोग मरता है, क्योंकि मतलब कोई भी बीमारी हो, हार्ट हो या कुछ भी बीमारी हो, अभी इतना बीमारी के तो हम बता भी नहीं सकते हैं, मतलब पता चलता है कि मतलब कोई रोग बीमारी इससे हो ये नहीं सकता है, जब जो खाते रहेगा रेगुलर मतलब होगा भी उसका चला जाएगा, ये मानना है।
0: मतलब पौष्टिकता से
1: बहुत सारा चीज पौष्टिक है, सही
0: पौष्टिक आहार
1: हाँ, उसका सूखा का मतलब दवाई वगैरह भी बनता है, बहुत सारा ये है।
0: तो दवा वगैरह भी बनाती है क्या?
1: नहीं दवा नहीं बनाता, हाँ सूखा करके इसको मतलब शायद 900 रुपए शायद, देखिए सूखा के ज्यादा बेचे नहीं है, लेकिन ज्यादा करके मैं कच्चे ही बेचती हूँ।
0: अच्छा कच्चा बेच देते हैं ना, और उसी से जो लाभ प्राप्त होता है। अच्छा ऐसे अगर यदि हमारे किसान भाई लोग मान लिए कि गांव में सुविधा ना हो, बिक्री हम ना कर पाए, तब वो क्या करेंगे? तो बाजार चले जाएंगे,
1: उनको बाजार जाना चाहिए, बाजार मतलब जो कहीं कहीं देखते हैं कि थोक भी ले लेता है लोग, हाँ। उनको दे करके आप आ सकते हैं, वो भी अच्छा।
0: ऐसे भी तो हम समझते हैं कि बाजार में जाने के बाद इसकी मांग तो इतनी बड़ी
1: बहुत,
0: हुई है
1: बहुत,
0: कि आपको बैठने की आवश्यकता नहीं है,
1: आप
0: तुरंत जैसे ही लोग देखते होंगे और तुरंत खरीदते होंगे,
1: क्योंकि ताजा रहता है, आप काटे और तुरंत ले जाए, वो नहीं ना कि प्लास्टिक में बंद है कब का है ना कब का।
0: और कैसे बिक्री करती है इसको? लगभग
1: इसको 150 रुपए किलो,
0: 150 रुपए किलो है ना। तो मशरूम उत्पादन को हम एक बहुत अच्छा जरिया मानते हैं, खासकर महिलाएं अगर स्वावलंबी बनना चाहें तो इस तरह के रोजगार से जुड़ करके वो स्वावलंबी बन सकती हैं, बहुत आगे बढ़ सकती हैं वो। क्या कहना चाहेंगी आप मशरूम उत्पादन के बारे में हमारे श्रोताओं को?
1: मैं यही कहना चाहूंगी कि जो हमारी महिलाएं घर पे बैठ के इधर उधर का किसी का बात न चलाते हुए अपना रोजगार पर ध्यान देंगे तो आने वाला उनका आर्थिक स्थिति सही होगा, अपना बाल बच्चा के भविष्य सुधार सकते हैं।
0: वाह बहुत सुंदर, और इस तरह से वो आगे बढ़ सकते
1: आगे बढ़ सकती हैं, हाँ किसी पर निर्भर नहीं रहेंगी, कोई हमको 10 रुपया देगा तो हमको ये काम करना है, क्योंकि अपने आप पर वो ही हो गए ना, पैर पर इंडिपेंडेंट हो गए।
0: और गाँव में तो आपको आराम से इसको उत्पादित कर सकते हैं, उत्पादन के साथ साथ सारा चीज,
1: इसमें अलग से समय निकालना ही नहीं है,
0: अलग से कुछ
1: अलग से समय नहीं निकालना है, बस इसको इस
0: जब मन किया तब देख रहे
1: हैं। बस बस बस सुबह के टाइम देख लिए कि कहाँ इधर का है, फिर गेट लगा दिए, फिर चलाइए अपना काम कीजिए, इसमें क्या है?
0: अच्छा कितने दिन में आप उत्पादित कर लेती होंगी इसको? आप
1: इसका
0: जैसे आज मान लिए
1: 21-22 दिन लग जाता है,
0: 21-22 दिन लग जाता है ना, तो समय भी तो बहुत कम होता है, 21-22 दिन में तो
1: कुछ
0: लगाई हुई पूंजी का तुरंत लाभ ले लेते हैं,
1: वही ना।
0: इसलिए मशरूम उत्पादन से हमारे ग्रामीण महिला अगर जुड़ती है तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा कदम होगा उनका, एक नई सोच और नया कदम के तहत वो इस कार्य को करके अब बहुत अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकती हैं, है कि नहीं?
1: साथ में उनका आत्मविश्वास भी तो जगेगा,
0: हाँ, बिल्कुल।
1: किसी के आगे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा कि वो फलाने हमको देगा तब हम आगे करेंगे। पहले होता था कि हम लोग के पास पैसा नहीं रहता था, हम लोग अपने आप में प्रचलित हो गए तो किसी से 200 मतलब 2-4-5 हजार मांगिए कोई नहीं है, कुछ करती है दे देगी, कुछ डूबेगा नहीं, एक तो ये पहचान अलग से बन जाती है।
0: तो ये हुई बात आज मशरूम उत्पादन की, कार्यक्रम नई सोच नया कदम के तहत, और हमने बातें की एक सफल मशरूम उत्पादक ग्रामीण महिला से, और आज ये बहुत अच्छा मतलब इससे अपना आय सृजन कर रही हैं और घर परिवार चला रही हैं। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं?
1: हम लोग 5 हैं।
0: अच्छा, और सबका भरण पोषण मतलब इसी खेतीबाड़ी से मशरूम उत्पादन से होता है ना? चलिए आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ी और मशरूम उत्पादन से संबंधित हमारे श्रोताओं को जानकारियां दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद उषा जी, नमस्कार। जी हाँ श्रोताओं, खेतीबाड़ी में मुनाफा तब होता है जब आप खेतीबाड़ी के अतिरिक्त कुछ और भी स्वरोजगार करके दिखाएं, जिसमें एक खेती है मशरूम की खेती, जिससे हमें अनेकों लाभ प्राप्त होते हैं, स्वास्थ्य संबंधी फायदे होते हैं। बहुत से किसान भाई हैं जो मशरूम की खेती कर रहे हैं और ढेरों मुनाफा प्राप्त कर रहे हैं। मशरूम से स्वास्थ्य को अनेक फायदे हैं, इसकी सब्जी पाचनशील और तमाम पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं। मशरूम में प्रोटीन, खनिज लवण, कई तरह के विटामिन्स पाए जाते हैं, यही कारण है कि मशरूम की मांग बाजार में हमेशा बनी रहती है। बिल्कुल किसान भाइयों, और इसकी खेती का सबसे उत्तम समय जाड़े का मौसम है। मशरूम की खेती में लागत का 8 से 10 गुना तक का मुनाफा प्राप्त होता है। इसका लाभ तब और अधिक प्राप्त होता है ग्रामीण भाइयों, जब आप इसे सीधे होटल में, रेस्टोरेंट में या सीधे ग्राहक को बेचते हैं। जी हाँ किसान भाइयों, इस प्रकार मशरूम की खेती एक फलता फूलता व्यवसाय है, इसे अपनाकर हम अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ अब अपने भाई संतोष कुमार को अनुमति दीजिए, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बारी। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं आप आइए सुनते हैं हम कार्यक्रम ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम जननी।

0: आइए सुनते हैं वार्ता छुआछूत सामाजिक अभिशाप। वार्ताकार है अनीता शुक्ला।
1: हमारे समाज के महान संत कवि रविदास ने लिखा है, जात पात के फेर मही उरझी रही सब लोग, मानुष ताकू खात है रैदास जात कर रोग। अर्थात जात पात एक महान रोग है, बड़ी बीमारी है, जिसमें उलझ कर लोग मानवता को ही खा गए, नष्ट कर दिए। इसलिए संत कबीर दास जी ने भी कहा है, जात पात और छुआछूत का विरोध करते हुए उन्होंने स्पष्टतः लिखा है, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। राष्ट्रकवि दिनकर ने भी हस्तिनापुर की भरी सभा में कर्ण के मुख से कहलवाया है, जात जात रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानू जाति, जाते हैं ये मेरे भूस्तंड। मुख्यतः जाति प्रथा के कारण ही ऊंच नीच तथा छुआछूत की भावनाएं विकसित हुई। दोनों ही कुप्रथाएं नैतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विनाशकारी सिद्ध हुई। छुआछूत

छूत अर्थात अस्पृश्यता, जिसे छूने से भी पाप लगता हो, वह अछूत माना गया। जब किसी व्यक्ति के समूह को निम्न जाति का मानकर उसे अछूत की संज्ञा दी गई, नीच, दलित और हरिजन कहकर उसका हुआ पानी खाना सब वर्जित किया गया, उस समय ही समाज ने अपने विकास के मार्ग में एक बड़ी बाधा खड़ी कर ली और अक्षम्य अपराध किया, मानवता को कलंकित किया, जिसका दुष्परिणाम आज भी हम भुगत रहे हैं। मानव सभ्यता के विकास के क्रम में योग्यता और सुविधा के आधार पर श्रम का बंटवारा किया गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र सामाजिक विकास के चार मुख्य स्तंभ थे, किंतु मानव स्वार्थ और बदलते परिवेश ने इन्हें जातियों में बांटकर राजनीति का आधार बनाया और स्वार्थ सिद्ध कर स्वयं को महान बना लिया। एक मानव जब दूसरे मानव को दलित और अछूत कह उससे घृणापूर्ण व्यवहार करे, तो वह एक सामाजिक अपराध करता है, मानवता को शर्मसार करता है। हमारी वर्ण व्यवस्था मनुवादी व्यवस्था थी, किंतु गलत तरीके से की गई व्यवस्था ने छुआछूत और जातिवाद जैसी दूषित परंपरा को जन्म दिया। शूद्र वर्ण को साफ सफाई का कार्य सौंपा गया था, जिसे मानव समाज ने हीन दृष्टि से देखा और आगे चलकर उसे मल साफ करने वाला मेहतर कहा गया। इनके श्रम को प्रतिष्ठा नहीं मिली, इनकी मेहनत की बदौलत हम स्वच्छता के वातावरण में आराम पूर्ण जीवन जीते हैं। उनका कार्य महत्तर है, परंतु उन्हें अछूत की उपाधि दी गई। ये सिर्फ कूड़ा कचरा तथा नालियों की सफाई करते रहे और दीनहीन अवस्था में उपेक्षा का दंश झेलते रहे। प्रेमचंद जैसे कथा सम्राट तथा विभिन्न समाज सुधारक भी इनकी प्रतिष्ठा को स्थापित न कर पाए। छुआछूत की यह परंपरा सदियों से अभिशाप की तरह आज के प्रगतिशील समाज को भी प्रभावित कर रही है। पढ़े लिखे शिक्षित समुदाय ने कुछ हद तक इसे मिटाने का प्रयास किया है और इनके साथ खान पान का संबंध स्थापित कर इन्हें प्रतिष्ठित किया है, परंतु जो दलित निर्धारित व्यवसाय से मुक्त हैं, जो शिक्षित हैं तथा कुछ स्थान प्राप्त कर चुके हैं, उनके साथ ही व्यवहारिक रवैया बदला है। यह सोच एक मानव का मानव के प्रति अत्यंत घृणित है और सामाजिक पिछड़ेपन को जन्म देती है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण वर्ग जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित रह जाता है। अपने साथ हुए पशुतापूर्ण व्यवहार उसे कुंठित कर देता है। शिक्षा के अभाव में उसकी मेधा मर जाती है और वह एक अयोग्य, असहाय और दीनहीन वर्ग बनकर रह जाता है। जबकि एक एक व्यक्ति एक परिवार, समाज और राष्ट्र का निर्माण करता होता है। यह कितनी गलत बात है कि जिस ईश्वर ने उसे जन्म दिया, उसके दरबार, मंदिर और तीर्थस्थल में वह नहीं जा सकता। अर्थात वह ईश्वरीय तथा ईश्वर प्रदत्त सुखों से भी वंचित रह जाता है, जो उसका मौलिक अधिकार है। भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने गांधी जी से कहा था, गांधी जी, मेरा अपना कोई देश नहीं, मैं इस भूमि को कैसे अपना देश कहूं और इस धर्म को कैसे मान लूं जिसने हमारे साथ पशुतापूर्ण व्यवहार किया है। भारतीय संस्कृति विश्व की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है, जहां जात, धर्म, भाषा के आधार पर कोई विभाजन नहीं था। भगवान राम ने भीलनी के जूठे बेर खाए, निषाद राज को अपना मित्र बनाया और समाज में जाति भेद तथा वर्ग भेद मिटाने का संदेश दिया। हमारा पवित्र धर्म ग्रंथ रामायण समन्वय की एक विराट चेष्टा है, किंतु जातिवाद से उपजी छुआछूत की यह बीमारी कैंसर जैसे रोग से भी अधिक खतरनाक है और भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात है। मनुष्य का मनुष्य द्वारा किया गया दंडनीय अपराध है। संत कबीर ने कहा भी है, काहे का कीजे पांडे छूत विचार, छूत ही ते उपजा ये सब संसार। और जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी का जाया, आन बाट काहे नहीं आया। वस्तुतः हम कह सकते हैं कि ऊंच नीच छुआ छूत का यह दुर्भाव एक रोग की तरह अभिशाप बनकर समाज की जड़ों को खोखला कर रहा है। महात्मा गांधी हों, बुद्ध हों या बाबा साहेब अम्बेडकर हों,

सभी ने मानवतावादी दृष्टिकोण को ही जन्म दिया, अपनाया और विकसित करने का प्रयास भी किया। बाबा साहब ने तो संत कबीर की वाणी को संविधान तक पहुंचाया और अछूत कही जाने वाली जातियों के मौलिक अधिकारों को स्थान दिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया और इसे दंडनीय अपराध घोषित किया। अब कोई उन्हें मंदिरों, सड़कों, तीर्थों या बसों आदि में प्रवेश से नहीं रोक सकता। अब वे सभी सार्वजनिक सेवाओं का सामान और सम्मान प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं, परंतु ग्रामीण परिवेश आज भी इन प्रथाओं से चिपका हुआ है। कानून की धारा के साथ साथ सामाजिक संवेदनशीलता, भाईचारा और रूढ़िवादिता को दूर करके ही हम इससे मुक्त हो पाएंगे। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि इस सामाजिक आपराधिक व्यवस्था का जन्मदाता कौन है? हमारे ऋषि महर्षि, हमारे धर्म ग्रंथ, राजनीति या हमारा यह समाज? यहाँ हम कह सकते हैं कि किसी भी धर्म में छुआछूत की व्याख्या नहीं की गई। हमारे ऋषिगण कवासिलूष, ऋषि वत्स, महर्षि वेदव्यास, महर्षि महिदास, महर्षि बाल्मीक, मतंग ऋषि जैसे महान वेदज्ञ हुए हैं जो आज के दृष्टिकोण से दलित थे। क्या हम जानते हैं कि हमारे देवी देवता किस जाति के थे, किस समाज के थे? परंतु हमारे धर्म ग्रंथों की गलत व्याख्या तथा स्वार्थपूर्ण राजनीति ने जातिवाद को जन्म दिया और उन्होंने ही छुआछूत को बढ़ावा देकर समाज में दीवार खड़ी की। आज जब हम नई सोच को ऊर्जा देने वाले समाज को देखते हैं तो पाते हैं कि बहुत हद तक यह छुआछूत के इस अभिशाप को मिटा देने का संकल्प ले चुके हैं। समय समय पर समाज सुधारकों ने इसके विरुद्ध अभियान चलाया है। बापूजी ने तो सबको मिलजुल कर सफाई करने का प्रस्ताव रखकर मैला ढोने वाले इंसान का सम्मान किया और समझाया अछूत कोई भी नहीं। वक्त बदलता रहा, सक्रियता बनी रही, राजनीति गर्म रही, शोध होते रहे, परंतु दलित वर्ग का एक भाग आज भी शोषित है, क्योंकि क्रांति मानसिकता नहीं बदल सकी। समाज का रवैया आज भी उनके प्रति यथावत है। हम यह नहीं समझ पाए कि हम दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। यह एक विश्व प्रश्न है, कब इंसान को इंसान के रूप में हम देखना शुरू करेंगे? कब तक जाति धर्म की सियासत होती रहेगी? कब तक मानव मानव को प्रताड़ित करता रहेगा? परंतु पूर्णतः ऐसा नहीं है कि बदलाव नहीं हुए हैं, परंतु इसकी गति बहुत ही धीमी है। इसके विरोध में कानून भी बने, इसे कानूनन जुर्म बताया गया और जाति के आधार पर भेदभाव करने वाले को 6 मास से 2 वर्ष तक की सजा का भी प्रावधान किया गया। मुख्यतः जाति प्रथा के कारण ही ऊंच नीच तथा छुआछूत की भावना पनपी। दोनों ही कुप्रथाएं नैतिक दृष्टिकोण से ही नहीं, सामाजिक और राष्ट्रीय दृष्टिकोण से भी विनाशकारी सिद्ध हुई हैं। इसके कारण हिंदू समाज का विघटन हुआ, राष्ट्रीय भावना की क्षति हुई, हजारों हजार शूद्र और हरिजन समाज में सम्मान पाने के लिए धर्म परिवर्तन कर लिए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जाति प्रथा और छुआछूत की भावना में कुछ और भी बदलाव आए हैं, जिसमें नवजागरण, शिक्षा का प्रचार, आर्थिक उन्नति, राजनीतिक चेतना तथा उन्नत साहित्य का प्रमुख योगदान रहा है। सरकारी तौर पर भी हरिजनों को विशेष अधिकार, आरक्षण, संरक्षण प्रदान करके उनको सामाजिक समानता की ओर ले जाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। अब खान पान संबंधी प्रतिबंध शिथिल हुए हैं, विवाह आदि संबंधों की मान्यताएं भी बदली हैं। अंतरजातीय विवाह ने जाति प्रथा से उपजे छुआछूत को समाप्त कर दिया है। कवि रैदास ने ठीक ही लिखा है, नीच नीच कह मारहीं, नीच नीच कह मारहीं, जानत ना ही नादान, सबका सृजनहार है रैदास एक भगवान। अंततः यह कहना उचित होगा कि इंसानों को जाति, धर्म तथा सरहदों की लकीरों से बांटना जब तक बंद नहीं होगा, तब तक सामाजिक उत्थान और शांतिपूर्ण विकास दिवा स्वप्न बनकर रह जाएगा। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ने
मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को।

श्रोता बहनों, हम बात करेंगे कि बच्चे आजकल हमारे मोबाइल से ज़्यादा जुड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं इसकी ज़िम्मेदारी हमारी भी होती है। आजकल सोशल मीडिया का जो एक दौर चढ़ा हुआ है, उसके बिना हम रह भी नहीं पाते। लेकिन ये भी बात है कि सोशल मीडिया हमारे ऊपर कितना हावी होता है। ये ज़्यादातर बातें हम पर भी लागू होती है। आज के समय में जहाँ पढ़ाई लिखाई हर चीज़ बच्चों के ऊपर निर्भर करता है और मोबाइल के ऊपर निर्भर करता है, वहीं बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे भटक भी जाते हैं मोबाइल में पढ़ाई के साथ साथ, तो कहाँ जा रहे हैं, सोशल मीडिया के किस क्षेत्र में वो अंदर तक जाके और देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी थोड़ी हमारी बनती है। जी हाँ, उनके हाथों में मोबाइल है, पेन है, पेपर है, लिखना शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, कुछ बनाना है तो वो जाहिर सी बात है कि वो इंटरनेट के ज़रिए अपना सब कुछ ढूंढते हैं। क्राफ्ट हुआ, पढ़ाई की बातें हुई, लेकिन ये बच्चों की भी गलती नहीं है। बहुत कुछ तो ऐसा अब चेंज हुआ है कि बच्चे हमारे मोबाइल से दूर हो ही नहीं सकते। अब हम लाख चाहें बहाने बनाने के लिए कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, लेकिन फिर भी हम ही कुछ देर में उनके हाथों में मोबाइल दे देते हैं। जैसे कि अगर कोई आया, अपना कुछ करना है, जाओ ले जाओ मोबाइल, बैठो, ऐसे करो। ये छोटी छोटी बातें पहले हम ध्यान नहीं देते हैं कि बच्चों के साथ भी बैठ के कुछ समय बिता लें। अगर वो समय बिताते हैं तो उस समय में हम बहुत कुछ बच्चों को सिखा भी देते हैं। जैसे माँ बहुत कुछ सिखाती है बच्चों को। ज़्यादातर बच्चे अगर हमारे फ़ोन से जुड़ते हैं तो वो सीखते नहीं हैं। जाहिर सी बात है कि आज देखिए बच्चों को, हर एक बच्चों की आंखों में चश्मा लगा और खाने पीने से भी बच्चे दूर होते जाते हैं। कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी है कि बच्चों को अगर मोबाइल से दूर रखना है तो बच्चों के साथ समय हमें बिताना है। तो आज हम बात किए कि समय का महत्व और बच्चों को मोबाइल से दूर कैसे रखें। और इसी के साथ कार्यक्रम जर्नी से हमें दीजिए श्रोता बहनों इजाज़त। हम अभी आप और कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची केंद्र की प्रसारण सेवा, प्रादेशिक समाचार जिले में आजकल।

0: अभी आप सुन रहे थे खेती बाड़ी और हमारी दुनिया। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रादेशिक समाचार कुछ ही पलों में।
1: तीन महीने में पैसे डबल,
2: वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी।
1: क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ
3: और कल होगा भी नहीं।
1: तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है?
4: ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं।
1: और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे।
3: और फास्ट रिटर्न से बच के
1: और फास्ट बॉलिंग से भी।
5: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: दी, ये देख कैसे?
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: दीका,
3: हाँ मेरा फेवरेट कलर
2: हमेशा शॉपिंग।
4: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
5: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
6: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
4: आई नो ना।
6: RBI कहता है,
7: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
8: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्री,
9: तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
2: दिमाग चार्ज कर अपना।
6: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
2: देखा
4: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
6: अब क्या करोगे?
4: तेरी रास्ता है ना?
2: बुद्धू सुधर जा।
6: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
4: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
6: RBI कहता है,
7: करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कहा है कि CBSE 12वीं की परीक्षा में ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली से मूल्यांकन में बढ़ी है पारदर्शिता। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने आज देवघर जिले के रोहिणी नावाडी में रेलवे ओवरब्रिज का किया उद्घाटन। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची के होटवार केंद्रीय जेल में बंद एक महिला कैदी के साथ हुए यौन शोषण का उठाया मुद्दा, की कार्रवाई की मांग। मौसम में बदलाव जारी, राज्य का सबसे ठंडा जिला रहा लातेहार, वहीं पलामू राज्य का सबसे गर्म जिला रहा। और धनबाद में आयोजित 5वीं झारखंड स्टेट किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में रांची जिले के खिलाड़ियों ने किया शानदार प्रदर्शन, कई स्वर्ण पदक अपने नाम किए। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कहा है कि CBSE की 12वीं की परीक्षा में ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली से मूल्यांकन में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ी है। 12वीं के परिणामों पर आज नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने बताया कि विद्यार्थियों ने मार्किंग और उत्तीर्णता प्रतिशत में मामूली गिरावट पर चिंता जताई है। सचिव ने बताया कि CBSE ने इस वर्ष ऐसी प्रणाली लागू की है जिससे मूल्यांकन में अधिक पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होती है। सचिव ने कहा कि CBSE ने पुनर्मूल्यांकन शुल्क कम कर दिया है।
1: CBSE ने वर्ष 2014 में OSM की शुरुआत किया था और इसको हम लोगों ने इस वर्ष रीइंट्रोड्यूस किया है। OSM विश्व में ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके द्वारा ये किया जा रहा है और ये एक नॉर्म है जो विदेशों में भी बन गया है, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरी सिस्टम को ट्रांसपेरेंटली तरीके से कर पाने के लिए हम सक्षम हो पाते हैं।

0: सिमडेगा के महुआबुआंग थाना में पदस्थापित एक जवान की अपने ही हथियार से गोली लगने से मौत हो गई है। वहीं रांची जिले के तिरगा गांव में के रहने वाले थे। घटना उस वक्त की हुई जब जवान अपने हथियार की सफाई कर रहे थे। जिले के पुलिस अधीक्षक श्रीकांत एस खोटरे ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला दुर्घटनावश गोली चलने का प्रतीत हो रहा है।
1: महाबोन थाना से अपना प्राप्त हुई कि इसमें आरक्षी राजू तिरपिन में प्रतियुक्त उनके अपने हथियार से गोली लगने के कारण मृत्यु हुई है। प्रथम दृष्टया एक्सीडेंटल फायरिंग का मामला सामने आ रहा है।
0: रांची और आसपास के इलाकों में अपराध का अंकुश लगाने के लिए रांची पुलिस ने कल रात बड़ा अभियान चलाया। वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन के निर्देश पर जिले भर में ऑपरेशन प्रहार के तहत एक साथ छापेमारी की गई। इस कार्रवाई में 100 से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 220 से ज्यादा लंबित वारंटों का निष्पादन भी किया गया। इस संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस टीमों ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में दबिश देकर फरार अपराधियों, वारंटियों और संदिग्धों को गिरफ्तार किया। गढ़वा में जनगणना के प्रथम चरण का कार्य आज से शुरू हो गया है। गढ़वा के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने बताया कि कर्मचारी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर सर्वेक्षण कार्य कर रहे हैं तथा परिवारों से आवश्यक जानकारियां एकत्रित कर रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से इस महत्वपूर्ण कार्य को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने के लिए पूरी तैयारियां की गयी। राज्य में संचालित केंद्र सरकार की नल जल योजना पर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने राज्य सरकार पर नल जल योजना को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस योजना के लिए सरकार के पास खजाने में 7,000 करोड़ पड़े हुए हैं, लेकिन खर्च नहीं किए जा रहे हैं।
2: नल जल योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी का महत्वाकांक्षी योजना है, सर देश के सारे राज्यों में योजना बहुत अच्छे प्रकार से प्रत्येक घरों के दरवाजे तक पहुंची है, लेकिन झारखंड में योजनाएं फिसड़ी साबित हुई है। आज भी सरकार के खजाने में 7,000 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, तो उस पैसे को खर्च करने की इनमें मादा नहीं है। तो जो पैसे खर्च किए गए हैं इस योजना में, उस पैसे को भी भ्रष्टाचार के आंकड़े में डुबाने का काम किया।
0: इस मामले में मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने भाजपा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि केंद्र सरकार राज्य को भीख नहीं दे रही है, यह हमारा अधिकार है।
3: जल नल योजना किसकी है? केंद्र की है। केंद्र अपनी राशि दे रही है, राज्य सरकार अपनी राशि दे रही है, और राज्य की ये परेशानी है कि जब तक केंद्र अपना आवंटन नहीं करता, राज्य अपने हिस्से का पैसा उस प्रोजेक्ट में नहीं लगा सकता है। और कोई हम लोग किसी से भीख तो नहीं मांग रहे, ये हमारा अधिकार है। केंद्र हम लोगों पर कोई मेहरबानी नहीं कर रही, लेकिन जो एक भ्रम फैलाने का ये लोग प्रयास करते हैं।
0: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के साथ पिछले दिनों चाईबासा परिसदन में जिला प्रशासन की ओर से किए गए कथित उपेक्षापूर्ण व्यवहार पर भाजपा ने कड़ा ऐतराज जताया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने आज सोशल मीडिया पर कहा है कि किसी का पद स्थायी नहीं होता, लेकिन लोकतांत्रिक परंपरा हर हाल में कायम रहनी चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि अर्जुन मुंडा के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया गया, वह केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि लोकतांत्रिक परंपराओं, प्रशासनिक मर्यादाओं और जनजातीय समाज के सम्मान का भी विषय है। श्री साहू ने आगे कहा कि इसके पहले चाईबासा उपायुक्त की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री मधुकोड़ा के साथ भी असम्मानजनक व्यवहार किया जा चुका है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना 2027 के चल रहे पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल V.A. वाराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी पूछ सकते हैं। आकाशवाणी के ताज़ातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @news_

0: रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची के होटवार केंद्रीय जेल में बंद एक महिला कैदी के साथ जेल अधीक्षक के द्वारा यौन शोषण और गर्भवती किए जाने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जेल आईजी मामले को दबाने, फाइलें गायब करने और सबूत मिटाने के लिए महिला कैदी को गुप्त स्थानों व अस्पतालों में ले जा रहे हैं, जबकि गवाह कर्मियों का तबादला कर उन्हें चुप कराया जा रहा है। श्री मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चेतावनी दी कि यदि दोषी अधिकारियों को बर्खास्त कर गिरफ्तार नहीं किया गया तो यह माना जाएगा कि सरकार भी इस कृत्य में शामिल है। उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग और उच्चतम न्यायालय से संज्ञान लेकर झारखंड की जेलों में महिला कैदियों के उत्पीड़न पर कार्रवाई की मांग की है। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने आज देवघर जिले के रोहिणी नावाड़ी में रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किया। इसका निर्माण प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 के मिशन अंतर्गत किया गया है। मौके पर सांसद ने कहा कि इस रेलवे ओवरब्रिज के चालू होने से देवघर से एम्स और रांची की दूरी कम होगी। वहीं लोगों ने इस कार्य के लिए रेल मंत्री वैष्णव के प्रति आभार व्यक्त किया है। झारखंड में मौसम लगातार करवट बदल रहा है। पिछले 15 दिनों से राज्य के विभिन्न जिलों में हो रही बारिश के कारण लोगों को भीषण गर्मी से काफी राहत मिली है। आज राज्य का सबसे ठंडा जिला लातेहार रहा, जहां अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पलामू राज्य का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजधानी रांची समेत कई जिलों में बीते दिनों हुई बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे मौसम अपेक्षाकृत सुहावना बना हुआ है। लोहरदगा जिला के 47वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज जिला प्रशासन की ओर से रन फॉर लोहरदगा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा, विद्यार्थी और आम नागरिकों ने भाग लिया। इस अवसर पर उपायुक्त संदीप कुमार मीना ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि स्वास्थ्य के प्रति सजग रहकर खेल कूद को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। जमशेदपुर में आयोजित झारखंड राज्य कबड्डी संघ की विशेष बैठक में वर्ष 2026-2030 के लिए नई कार्यकारिणी के गठन पर चर्चा की गई। महासचिव संजय कुमार झा की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि जून के द्वितीय सप्ताह में चुनाव के माध्यम से नई कमेटी का गठन किया जाएगा। बैठक में सभी जिला कबड्डी संघों को 31 मई तक अपनी बैठकों का आयोजन कर वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा राज्य संघ को सौंपने का निर्देश दिया गया। वहीं वर्ष 2026-27 के खेल कैलेंडर को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई और सीनियर राज्य कबड्डी प्रतियोगिता 4 जून से धनबाद में आयोजित करने का फैसला किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कहा है कि CBSE 12वीं की परीक्षा में ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली से मूल्यांकन में बढ़ी है पारदर्शिता। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने आज देवघर जिले के रोहिणी नावाड़ी में रेलवे ओवरब्रिज का किया उद्घाटन। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची के होटवार केंद्रीय जेल में बंद एक महिला कैदी के साथ हुए यौन शोषण का उठाया मुद्दा, की कार्रवाई की मांग। मौसम में बदलाव जारी, राज्य का सबसे ठंडा जिला रहा लातेहार, वहीं पलामू राज्य का सबसे गर्म जिला रहा। और धनबाद में आयोजित 5वीं झारखंड स्टेट किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में रांची जिले के खिलाड़ियों ने किया शानदार प्रदर्शन, कई स्वर्ण पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी रांची है, आइए सुनते हैं जिले में आजकल।
2: जिले में आजकल।

इस अंक में आप सुनेंगे सिमडेगा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे सिमडेगा संवाददाता।

0: झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा इस वर्ष आयोजित इंटरमीडिएट की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सिमडेगा जिले के टॉप 10 विद्यार्थियों को उपायुक्त कंचन सिंह ने अपने आवासीय परिसर में सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि
1: 12th के एग्जाम में सिमडेगा के बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया, विशेषकर से वाणिज्य और कला के क्षेत्र में जो बच्चे थे उनका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा। और वाणिज्य में तो हमारे ही जिले का एक बच्चा स्टेट टॉपर भी है। तो उनको सम्मानित करने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए और आगे बढ़ने की शुभकामनाएं देने के लिए आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों के जो टॉपर्स बच्चे थे उनको आज मैंने अपने आवास पर बुलाया था ताकि उनके साथ कुछ समय व्यतीत कर सकूँ, उनके भविष्य के लिए मोटिवेट कर सकूँ और उनके घर कोई समस्याएं हैं तो उनका समाधान कैसे प्रशासन कर सकता है इसके बारे में जान सकते। हर पंचायत भवन में एक ज्ञान केंद्र है जिसमें कि काफ़ी संख्या में पुस्तकें हैं, कंप्यूटर है, इंटरनेट है और उसकी सुविधा का लाभ बच्चे उठा सकते हैं, न सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बल्कि सामान्य रूप से भी अगर उनको घर में पढ़ने का माहौल नहीं है तो वहाँ पर उनको एक बेहतर माहौल मिलेगा कि पढ़ाई कर सकते।
0: सिमडेगा नगर परिषद के अध्यक्ष ओलिवर लकड़ा ने नगर परिषद क्षेत्र में सभी आवश्यक जन सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही है। नगर परिषद की एक बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि
2: नगर परिषद एरिया, उस एरिया में जितना स्कूलें हैं विद्यार्थियों के लिए भी कुछ हम लोग प्रोग्राम लाए हैं, एक्टिविटीज लाए हैं जो कि ये सिमडेगा नगर परिषद के लिए पहला मतलब ऐसा पहल है, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में बोले चाहे वह खेल के क्षेत्र में बोले। ये हमारे बोर्ड की बैठक में सर्वसम्मति से ये पारित किया गया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से खर्चों में कटौती को लेकर की गई अपील पर सिमडेगा वासी सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। शिक्षक पुरुषोत्तम कुमार ने कहा कि वैश्विक स्थिति को देखते हुए हमें पहले से ही सावधानी बरतने की जरूरत है।
3: ये इस विषय में कहावत है, आग लगने से पहले कुआं कोड़ना चाहिए। तो ये कहावत जो है हमारे मुखिया है प्रधानमंत्री जी और वे पहले ही लोगों को हिदायत कर रहे हैं कि हमें जो है सो उपाय ये है कि वे जैसे घर के बजट को, घर का मुखिया जो है सो सोचता है कि हम किस प्रकार से घर को चलाएंगे उसका पहले से ही व्यवस्था करने का उपाय सोचता है। इसी प्रकार हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है लोगों को कह रहे हैं कि ईरान, इजराइल, अमेरिका में जो युद्ध चल रहा है इस युद्ध के चलते जो है हमारा खर्च में जो हो जाएगा उस खर्च को बचाने के लिए कटौती करने के लिए कह रहे हैं कि कुछ हमारे जो है सो इस प्रकार बचत करें। आज युद्ध हो रहा है, कब तक चलेगा कहना मुश्किल है, अपना बजट को बचा करके चले, आने वाला समय में हमें काम दे। इसीलिए इनका अपील बहुत ही अच्छा है लोगों के लिए, इनको हमें अमल करना चाहिए।
0: सिमडेगा जिले में जनगणना 2027 के तहत प्रथम चरण में 16 मई से 14 जून तक मकान सूचीकरण एवं आवास संबंधी जानकारी संकलित की जा रही है। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा।
4: अभी आप सुन रहे थे सिमडेगा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

अभी आप हमारे रांची केंद्र का प्रसारण सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103 MHz पर। अब लीजिए पेश है गीत एवं गजलों का प्रोग्राम स्वरांजलि।

ध्यान लग जाता है, इबादत शुरू हो जाती है, अपने आप आंखें बंद हो जाती हैं। कोई उन्हें सामने बैठ के सुने। आंखें खोलो तो बाहर नजर आती हैं,

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वरांजलि। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड के 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आइए सुनते हैं लोक गीतों का कार्यक्रम महुआ। गायक कलाकार हैं भरत सिंह भारती और साथी।

भरत सिंह भारती और साथियों के स्वर में आप सुन रहे थे नागपुरी लोकगीत। इसी के साथ महुआ कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब लीजिए पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट सी।

जमाने को दिखाना है, इस फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। आइए सुनते हैं अगला गीत, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का गाया हुआ। फिल्म का नाम है कातिलों का कातिल।

0: वारदात फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे,
1: मोहम्मद रफ़ी और उषा मंगेशकर की आवाज़ों में। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट से, आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से। आइए सुनिए अगला गीत फिल्म शाका से। इसमें भी आवाज़ें दी हैं उषा मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने।

मोहम्मद रफ़ी, अनुराधा पौडवाल और साथियों के स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म ताकत का ये गीत। आइए सुनिए चित्रपट से कार्यक्रम का ये आखिरी नगमा।

विदेश फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे और इसी के साथ चित्रपट से कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103 MHz पर 8:45 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में समाचार। प्रतीक्षा कीजिए।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित चार लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। बैडमिंटन में भारत की श्रियांशी वलीशेट्टी ने बाऊजी चाइना मास्टर्स के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स की दो दिन की यात्रा के बाद पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन की दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता और द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार, पर्यावरण अनुकूल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती हुई तकनीक, स्टार्टअप्स, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई और आम जनता के आपसी संपर्क में सहयोग के नए अवसर तलाशने की संभावनाओं पर भी विचार करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचे, जहां गोथेनबर्ग लैंडवेटर एयरपोर्ट पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने उनका स्वागत किया। विशेष सम्मान के तौर पर स्वीडिश ग्राइपिन लड़ाकू विमानों ने स्वीडिश हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते समय प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट भी किया। एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया। गौरतलब है कि यात्रा का प्रमुख आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री होगा, जिसे दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन के साथ संबोधित करेंगे। इसके अलावा दोनों प्रधानमंत्री यूरोपियन संघ के शीर्ष उद्योगपति और सीईओ के साथ राउंड टेबल बैठक में भी शामिल होंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: इससे पहले गोथेनबर्ग रवाना होने से पूर्व श्री मोदी को नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन ने व्यक्तिगत रूप से एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर विदाई दी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस यात्रा ने भारत नीदरलैंड संबंधों को नई गति दी है। रिश्तों को रणनीति साझेदारी से लेकर जाने तक जल संसाधन, सेमीकंडक्टर, इनोवेशन, रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने तक दोनों देशों ने भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत और नीदरलैंड की दोस्ती आने वाले सालों में और मजबूत होगी। उनकी यात्रा में यह एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक पल था, जब लाइडन यूनिवर्सिटी ने 11वीं शताब्दी की चोल युग की ताम्र पट्टिकाओं को भारत को सौंपा। यह भारत की विरासत और सभ्यता का अनमोल अध्याय है। यात्रा के अंत में 17 अहम नतीजे सामने आए। इसमें शामिल है नवीनीकरण ऊर्जा पर संयुक्त कार्य समूह और ग्रीन हाइड्रोजन रोडमैप, क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग, गुजरात की कल्पसर परियोजना में जल प्रबंधन पर डच सहयोग, त्रिपुरा में फ्लोरिकल्चर और बेंगलुरु में डेयरी प्रशिक्षण के लिए भारत डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नालंदा और ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय के बीच शिक्षा एवं शोध का समझौता और स्वास्थ्य एवं सीमा शुल्क में संस्थागत सहयोग। शुश्रुष शर्मा, आकाशवाणी, द हेग, नीदरलैंड्स।
0: कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेगी। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। हालांकि राजनीतिक खींचतान और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण गठबंधन मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर फैसला नहीं कर पा रहा था।
3: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन कल सुबह केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री के साथ 20 अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। मनोनीत मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर से मुलाकात की और उन्हें मंत्रियों की सूची सौंपी। समारोह के लिए तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में 12,000 लोग

0: लोगों के बैठने की व्यवस्था सहित व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में 700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राज्य के दो दिवसीय दौरे पर आए श्री शाह ने गांधीनगर निगम की 600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने शहर में 128 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मधुर डेयरी के नवनिर्मित दूध प्रसंस्करण संयंत्र का भी उद्घाटन किया। इससे पहले दिन में श्री शाह ने गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है।
2: एनआईडी एक प्रकार से रचनात्मकता के आधार पर इनोवेशन और उद्यमिता, ये तीनों को जोड़ने वाला एक संस्थान। जब एनआईडी की स्थापना हुई हो तब मुझे लगता है कि इसके उद्देश्यों को बहुत अच्छे तरीके से सोचा हो।
1: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। श्री जोशी ने कहा कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है।
3: आज हमने एक ही दिन में 256.4 गीगावाट की अत्यधिक मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सिस्टम में लगातार सुधार हो रहा है। 256 गीगावाट में से जिसे हमने एक ही दिन में एक खास समय पर अत्यधिक मांग के तौर पर पूरा किया, उसका 33% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से आया है।
4: 33% इज फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबे समय से लंबित मांगें अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने भारत म्यांमार सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। एनसीबी ने दिल्ली से म्यांमार के सरगना थान सितवांग को गिरफ्तार किया है। थान सितवांग एनसीबी और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े कई मामलों में वांछित था। ब्यूरो ने कहा कि वो वर्ष 2024 के एक एनसीबी मामले में मुख्य आरोपी है, जिसमें 14 किलोग्राम मेथमफेटामीन और 2 किलोग्राम से अधिक हेरोइन जब्त की गई थी। वर्ष 2025 के एनसीबी मामले में भी ऐजोल में 49 किलोग्राम से अधिक मेथमफेटामीन जब्त की गई थी। हिमाचल प्रदेश में 51 शहरी स्थानीय निकायों के लिए मतदान आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। मतदान 25 नगर परिषदों और 22 नगर पंचायतों के साथ धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मंडी नगर निगमों में कराया गया था। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार मतदान में 69% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने कहा कि रात भर हुए हमलों में

12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया है कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हुए। संयुक्त अरब अमीरात में आज अबू धाबी स्थित बाराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर ड्रोन हमले के कारण आग लग गई। अबू धाबी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संयंत्र के बाहर स्थित एक विद्युत जनरेटर में आग लगी। अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है और रेडियोलॉजिकल सुरक्षा स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भारत ने कहा है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की विशेष बैठक में कही। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मूज जल डमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरेफ ने कहा कि ईरान ने पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे पोतों को गुजरने की अनुमति दी है, जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून के केरलम में 26 मई तक पहुंचने की संभावना है, जिससे चार दिनों का अंतर हो सकता है। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में भी इसी तरह के मौसम रहने की संभावना है। अगले तीन से चार दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। भारत की श्रेयांशी वली शेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांशी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। बेंगलुरु के 223 रन के लक्ष्य के जवाब में पंजाब 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 199 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ ही बेंगलोर प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। दिन का दूसरा मुकाबला दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना 2027 के चल रहे पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल वीए वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित 4 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के अपने हमनसब उल्फ स्टर्सन से वफ्त की सतह की बातचीत कर रहे हैं, जिसका मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाना है। वजीर आजम मोदी ने कहा है कि नीदरलैंड्स के उनके दौरे से दो तरफा ताल्लुकात को एक नई रफ्तार मिली है। कांग्रेस रहनुमा वी डी सतेसन को कल केरलम के नए वजीर आला का हलफ दिलाया जाएगा। मास्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर समेत चार अफराद हलाक हो गए। भारत के महकमे मौसमियात ने शुमाली भारत में कल शदीद गर्मी की पेशगोई की है। और बैडमिंटन में भारत की श्रियांशी विलिशेट्टी ने बाउजी चाइना मास्टर्स में खवातीन के सिंगल्स में चांदी का तमगा जीता। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के अपने दो रोजा दौरे में इस मुल्क के अपने हम मनसब के साथ दो तरफा बातचीत की। दोनों मुल्कों ने दिफा, अहम मादनियात और दिगर बुनियादी शोबों में तआवुन को मुस्तहकम बनाने से मुतल्लिक 17 मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। दोनों रहनुमाओं ने मगरबी एशिया की सूरत हाल और आलमी सतह पर तवानाई की सप्लाई, नेस तजारती नेटवर्क्स पर इसके असरात पर गहरी तशवीश का भी इजहार किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि नीदरलैंड्स के उनके दौरे से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में एक नई रफ्तार पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों ने मुस्तकबिल में अपने ताल्लुकात को फरोग देने और आबी वसाइल, सेमीकंडक्टर्स, इख्तिरा, दिफा, पायदारी और नकलो हमल के शोबों में तआवुन को वसी करने के बारे में खाका तैयार किया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी पांच मुल्कों के अपने दौरे के तीसरे मरहले में आज स्वीडन के शहर गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं, जहां उनका खैर मकदम गोथेनबर्ग लैंडवेटर हवाई अड्डे पर स्वीडन के वजीर आजम वुल्फ क्रिस्टर्सन ने किया। जैसे ही वजीर आजम का तैयारा स्वीडन की फजाई हदूद में दाखिल हुआ, मेहमान खसूसी के तौर पर उनके हवाई जहाज की मुहाफजत स्वीडन के ग्रिपन लड़ाई जेट तैयारों ने शुरू कर दी। वजीर आजम मोदी को हवाई अड्डे पर बाकायदा गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और उनका इस्तकबाल भारतीय बिरादरी के अरकान ने बड़ी गर्मजोशी से किया। इस दौरे की खासियत दो वज़रा आज़म की एक मुश्तरका खिताब है, जो वो सनद से मुतालिक यूरोपीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस से करेंगे। सीओज की इस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जनाब मोदी के साथ यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वोन देर लेयन शामिल रहेंगी। गोथेनबर्ग से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के अपने हम मनसब उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वफ्त की सतह की बातचीत कर रहे हैं। तवक्को है कि दोनों रहनुमा तिजारत, एआई, स्टार्टअप समेत मुख्तलिफ शोबों में तबादले ख्याल करेंगे। कांग्रेस रहनुमा वी डी सतीसन की क्यादत में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में हलफ लेगी। कांग्रेस ने इस महीने की 14 तारीख को वी डी सतेसन को केरलम का अगला वजीर आला नामजद किया था, जिसके साथ ही 10 दिन से जारी सियासी ड्रामा और गैर यकीनी की सूरत हाल खत्म हो गई। कांग्रेस की क्यादत वाले मुत्तहदा जमहूरी महाज यूडीएफ ने केरलम असेंबली इंतखाबात में दो तिहाई से ज्यादा अक्सरियत हासिल की, तहम मुख्तलिफ ग्रुपों की लॉबिंग और कारकुनों के एहतजाज के बायस मस्कूरा इत्तेहाद वजीर आला के नाम पर फैसला नहीं कर पा रहा था। तफसील हमारे नामानिगार से।
2: कांग्रेस के सीनियर लीडर वी डी सतीसन कल केरलम के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। उनके हमरा 20 दिगर वदरा भी हलफ लेंगे। नामजद वजीर आला वी डी सतीसन ने आज शाम गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की और उन्हें वदरा की फेहरिस्त पेश की। तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में 12,000 अफराद के बैठने के इंतजाम समेत वसी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: दाखिली उमूर और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने आज गुजरात के शहर गांधीनगर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एनआईडी के इख्तिरा और इब्तदाई कारोबार के मरकज का

0: एनआईडी एक प्रकार से रचनात्मकता के आधार पर इनोवेशन और उद्यमिता, इन तीनों को जोड़ने वाला एक संस्थान। जब एनआईडी की स्थापना हुई हो तब मुझे लगता है कि इसके उद्देश्यों को बहुत अच्छे तरीके से सोचा हो।
1: मरकजी वजीर पीयूष गोयल भी इस मौके पर मौजूद थे। जनाब शाह गुजरात के दो दिन के दौरे पर हैं। उन्होंने आज गांधीनगर में मदर डेयरी के 5 लाख लीटर की गुंजाइश वाले नव तामीर शुदा प्लांट का भी इफ्तिताह किया। अहमदाबाद में उन्होंने मिलियन माइंड्स टेक पार्क और ग्लोबल कैपेबिलिटी मरकज कैंपस का भी इफ्तिताह किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इस महीने की 25 तारीख को साल 2026 के लिए पद्म अवार्ड्स अता करेंगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजारत दाखिला ने कहा है कि सदर जमहूरिया राष्ट्रपति भवन में मुनक़िद होने वाली पहली शहरी एजाज से मुतअल्लिक तकरीब के दौरान पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री अवार्ड्स अता करेंगी। इस साल भारत सरकार ने मजमूई तौर पर 131 पद्म अवार्ड्स का ऐलान किया है। रेलवे की वजारत ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के पीछे के दो डिब्बों में आग लगने के वाकये की आला सतह पर तहकीकात का हुक्म दिया है। आज सुबह तकरीबन 5:15 बजे कोटा डिवीजन के नागदा जंक्शन के करीब त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के पीछे के दो डिब्बों में आग लग गई। इन डिब्बों में एक गार्ड कोच और एक AC 3 टियर कोच शामिल था। वजारत के मुताबिक कोच में नस्ब हिफाजती निजाम फौरी तौर पर मुतहरिक हो गया और ट्रेन खुद ब खुद रुक गई। ट्रेन के अमले ने फौरन आग से मुतासिर दोनों डब्बों को अलग किया, जिसकी वजह से किसी भी मुसाफिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। रेलवे के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने आज बेंगलुरु और मुंबई के दरमियान एक नई एक्सप्रेस ट्रेन को वर्चुअल वसीले से झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन से कर्नाटक और महाराष्ट्र के दरमियान रेल कनेक्टिविटी में इजाफा हुआ है। जनाब वैष्णव ने इस मौके पर कहा कि जुनूबी और मशरकी कर्नाटक के लोगों का एक देरीना मुतालबा पूरा किया जा रहा है। उन्होंने ये ऐलान भी किया कि उम्मीद है कि बेंगलुरु और मुंबई के दरमियान वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जल्द ही शुरू हो जाएगी। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राम मोहन नायडू ने आज दिल्ली सरकार की जानिब से हवाई जहाजों के ईंधन ATF पर वैल्यू एडेड टैक्स को 25% से कम करके 7% करने के फैसले की तारीफ की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में जब हवाबाजी का शोबा आलमी सतह पर ऑपरेशनल और माली दबाव का सामना कर रहा है, रियासती हुकूमतों के इस किस्म के सरगर्म इकदाम एयरलाइंस को जरूरी सहारा फराहम करते हैं और मुसाफिरों के लिए फजाई सफर को सस्ता रखने में मदद फराहम करते हैं। सड़क, ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि महाराष्ट्र के विदर्भ जिले में किसानों की खुदकुशी की एक बड़ी वजह पानी की किल्लत है। उन्होंने ये भी कहा कि पानी की बचत इस बुहरान का मुअस्सर तरीन हल है। नागपुर में कौमी कॉन्फ्रेंस नागपुर जल संवाद से खिताब करते हुए जनाब गडकरी ने कहा कि पानी के तहफ्फुज़ से मुतअल्लिक कोशिशों की कामयाबी के लिए लोगों का इनमें हिस्सा लेना लाजमी है। उन्होंने ग्राम पंचायतों से कानून साज अरकान तक तालमेल के साथ उठाए गए इकदाम पर जोर दिया ताकि गांवों और किसानों की खुशहाली को यकीनी बनाया जा सके। नशीली अशिया पर काबू पाने वाले ब्यूरो NCB ने मुल्कों के माबैन नशीली अशिया की नाजायज तिजारत के उन नेटवर्क्स के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल की है जो भारत म्यांमार सरहद पर अपनी कार्रवाइयां अंजाम देते हैं। ब्यूरो ने म्यांमार में मुकीम सरगना थांकिंग तुआंग को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। NCB ने एक बयान में कहा है कि यह गिरफ्तारी वसी तौर पर निगरानी, खुफिया मालूमात में इजाफे, तालमेल के साथ किए जाने वाले बैन रियासती तालमेल और लगातार पीछा करने की कार्रवाइयों की बदौलत की गई है। थांकिंग तुआंग कई तरह की मनशियात और नशीले मादों के कानून के तहत मतलूब था। ये केस NCB और मनशियात से मुतअल्लिक कानून नाफिज करने वाली कई एजेंसियों ने दर्ज की थी, जिसमें से NCB ने दो केस दर्ज किए थे। नई और काबिल तजदीद तवानाई के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने एक ही दिन में 256.4 गीगावाट की बिजली की मांग को पूरा करने में, जो अब तक की सबसे बड़ी मांग है, कामयाबी हासिल की है। एक प्राइवेट अंग्रेजी रोजनामे के साथ बातचीत में जनाब जोशी ने कहा कि बिजली की 33% मांग काबिले तस्दीक

ती तवानाई के वसायल से पूरी की गई है। वजीर मौसूफ ने यह भी कहा कि इस बड़ी तब्दीली से तवानाई की सलाहियत में बड़ी तेजी से इजाफे, ग्रिड को मुस्तहकम बनाने और मुल्क की तरक्की के सफर को तकवीत देने में माहौल के लिए साजगार तवानाई के बढ़ते हुए हिस्से का अंदाजा होता है। रूस में मास्को और आसपास के इलाकों पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में 4 अफराद की मौत हो गई है, जिनमें एक भारतीय मजदूर भी शामिल है। मास्को के मेयर सरगेई सुबियानिन ने बताया कि रात भर हुए इन ड्रोन हमलों में से कम 12 अफराद जख्मी भी हुए हैं। रूस के हुक्काम के मुताबिक मास्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को तबाह भी किया गया है। यूक्रेन के सदर विलोदिमीर जेलेंस्की ने इन हमलों की तस्दीक करते हुए इन्हें दुरुस्त कार्रवाई करार दिया। इस दौरान रूस में भारतीय सफारतखाने ने सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में बताया कि मास्को को मुख्तलिफ इलाकों में हुए ड्रोन हमलों में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 दीगर जख्मी हो गए। सिफारतखाने ने मजीद बताया कि सिफारतखाने के अहदेदारों ने हादसे की जगह का दौरा किया और अस्पताल में जेर इलाज जख्मी मजदूरों की कैफियत दरियाफ्त की। भारत के महकमे मौसमियात का कहना है कि जनूब मगरबी मानसून इस माह की 26 तारीख को केरलम में दस्तक दे सकता है। महकमे मौसमियात ने इम्कान जाहिर किया है कि मॉडल एरर की बुनियाद पर इसमें 4 रोज आगे या पीछे होने की भी गुंजाइश है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि जनूब मगरबी मानसून के जनूब मशरकी बहीरे अरब के कुछ मजीद हिस्सों, जनूब मगरबी और जनूब मशरकी खलीज बंगाल, अंडमान जजायर और बहरे अंडमान के बाकी हिस्सों और मशरकी वस्ती खलीज बंगाल के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 रोज के दौरान हालात मुआफिक रहेंगे। महकमे मौसमियात ने कल मगरबी उत्तर प्रदेश में शदीद गर्मी की पेशगोई की है। अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में भी इसी तरह की सूरत हाल का इम्कान जाहिर किया गया है। बैडमिंटन में आज चीन में बाओजी चाइना मास्टर्स में खवातीन के सिंगल्स में भारत की श्रियांशी वाली शेट्टी ने चांदी का तमगा जीता है। उन्होंने बाओजी सिटी जिम्नेशियम में सुपर 100 के फाइनल में चीन की एन क्यू युआन को सीधे सेटों में 14-21, 6-21 से शिकस्त खाई, लिहाजा उन्हें चांदी के तमगे पर इक्तफा करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के जरिए दिए गए 223 रन के निशाने को हासिल करते हुए पंजाब किंग्स मुकर्रा 20 ओवर्स में 8 विकेट पर 199 रन ही बना सकी। इससे कबल बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 222 रन बनाए थे। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे दिन के एक और मैच में राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली कैपिटल्स के सामने जीत के लिए 194 रन का निशाना रखा है। इससे कबल दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आखिर में खास खास खबरें एक मरतबा फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के अपने हम मनसब उल्फ क्रिस्टर्सन से वफ्त की सतह की बातचीत कर रहे हैं, जिसका मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाना है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के अपने 2 रोजा दौरे में इस मुल्क के अपने हम मनसब के साथ 2 तरफा बातचीत की। दोनों मुल्कों ने दिफा, अहम मादनियात और दिगर बुनियादी शोबों में तआवुन को मुस्तहकम बनाने से मुतल्लिक 17 मुआहदों पर दस्तखत किए। वजीर आजम मोदी ने कहा है कि नीदरलैंड्स के उनके दौरे से 2 तरफा ताल्लुकात को एक नई रफ्तार मिली है। कांग्रेस रहनुमा वीडी सतेसन को कल केरलम के नए वजीर आला का हलफ दिलाया जाएगा। मास्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर समेत 4 अफराद हलाक हो गए। भारत के महकमे मौसमियात ने शुमाली भारत में कल शदीद गर्मी की पेशगोई की है। और बैडमिंटन में भारत की श्रियांशी वाली शेट्टी ने बाओजी चाइना मास्टर्स में खवातीन के सिंगल्स में चांदी का तमगा जीता। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। इससे कबल बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 222 रन बनाए थे। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। मोहब्बत की ज़बान नहीं होती।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज के फनकार ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

ये आवाज और इस आवाज की धार जिसके सहारे हर जज्बे ने किया सिंगार। जी हाँ, ये आवाज पंकज उधास की है। पंकज उधास हमारे आज के फनकार।

1980 का दौर होगा जब बहुत चुनिंदा लोग गजलें सुना करते। जिनकी गजलें सुनी जाती वो नाम थे मेहदी हसन, गुलाम अली, बेगम अख्तर। गजलों के शौकीन उर्दू भी समझते थे, या यूं कहें कि उर्दू की समझ रखने वाले ही गजल का शौक रखते थे और उनका अपना क्लास हुआ करता। मगर 1980 में गजल के क्षितिज पर एक आवाज उभरी। मार्केट में गजल का एक एल्बम आया, आहट। ये वाकई में वो आहट थी जिससे क्लासेस से मासेस की ओर गजल का सफर शुरू हुआ। पंकज उधास के इस एल्बम ने संगीत के बाजार में धूम मचा दी। इस प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण है शायरी। पंकज उधास ने ऐसी गजलें चुनी जो बहुत आसानी से आम संगीत प्रेमी की समझ में आ जाए।

1980 में आहट की कामयाबी के बाद 1981 में पंकज उदास की गजलों का दूसरा एल्बम आया मुकर्रर, और फिर कामयाबी का ये सिलसिला जारी रहा। 1982 में तरन्नुम, 1983 में महफिल, 1984 में पंकज उदास लाइव इन रॉयल एल्बर्ट हॉल, 1985 में नायाब और 1986 में आफरीन। पंकज उदास की गजलें हर गली मोहल्ले, नुक्कड़ चौराहे, रेस्टोरेंट होटलों में गूंजने लगी।

17 मई सन 1951 में गुजरात के जेतपुर गांव में जन्मे पंकज उदास के माता पिता जीतूबेन उदास और केशुभाई उदास राजकोट के निकट एक छोटे से गांव चराखड़ी के रहने वाले हैं। पंकज उदास के दोनों बड़े भाई निर्मल उदास और मनहर उदास संगीत की दुनिया में परिचित नाम है। पंकज का रुझान भी गायन के क्षेत्र में ही है, इसे देखते हुए ये परिवार मुंबई आ बसा। भावनगर के सर बीपीटी इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले पंकज अब मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ने लगे। पहले राजकोट के संगीत नाट्य अकादमी में पंकज उदास तबला बजाना सीख चुके थे। अब मुंबई में साइंस की डिग्री हासिल करने के बाद मास्टर नवरंग के शिष्यत्व में उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत का अध्ययन शुरू किया।

गजल की दुनिया में आने से पहले पंकज उदास को पार्श्व गायन का मौका मिल चुका था। कामना इस फिल्म के लिए नक्श लायलपुरी का लिखा गीत उन्होंने उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में गाया। फिल्म कुछ खास नहीं चली, मगर पंकज उदास के गाए इस गाने को खूब तारीफ मिली।

उसके बाद पंकज उदास में गजल गायन की रुचि उत्पन्न हुई। उन्होंने उर्दू की तालीम ली। उसके बाद वो विदेश चले गए, कनाडा और अमेरिका में 10 महीनों तक गजलों के कार्यक्रम करते रहे और उसके बाद पूरे आत्मविश्वास के साथ वहां से लौटे। तब पहला एल्बम 1980 में रिलीज हुआ, आहट, और फिर एक लोकप्रिय गजल गायक के रूप में प्रस्थापित होने का इतिहास हम आपको बता ही चुके हैं।

बात करते हैं फिल्मों में उनके पार्श्व गायन की। 1986 में नाम फिल्म में गीत गाने का उन्हें मौका मिला और वो गीत बेहद लोकप्रिय हुआ।

1990 में घायल फिल्म के लिए स्वर सम्राज्ञी लता जी के साथ गाने का अवसर उन्हें प्राप्त हुआ और वो ड्यूएट भी बेहद पसंद किया गया।

ये दिल लगी, नाम और फिर तेरी कहानी याद आई। हम सब जानते हैं कि पहले संगीत प्रेमियों को घर में ग्रामोफोन पर बजाकर सुनने के लिए एलपी या ईपी रिकॉर्ड्स खरीदने पड़ते थे। फिर ऑडियो कैसेट्स का जमाना आया और उसके बाद सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क। 1987 में पंकज उधास का गजलों का एल्बम शगुफ्ता पहला ऐसा एल्बम था जो कॉम्पैक्ट डिस्क के रूप में बाजार में आया। एक और उनकी गाई गजलें मशहूर तो थी ही, उनके गाए फिल्मी गीत भी लोकप्रिय होते गए। पंकज उधास का गाया एक और फिल्मी गाना 1994 में हिट हुआ। फिल्म का नाम था मोहरा।

0: अंदर।
1: अपने कैरियर के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में कैंसर पीड़ितों और थैलेसेमिक बच्चों की भलाई के लिए उन्होंने जो योगदान दिया तथा गजल गायन की कला को जो योगदान उन्होंने दिया, इसके लिए सन 2006 में पंकज उदास को भारत सरकार की ओर से पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसके अलावा पुरस्कार एवं सम्मान की एक लंबी फहरिस्त है, जिनमें प्रमुख है 1985 में KL सैगल अवार्ड, 1994 में रेडियो लोटस अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट, 1996 में इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड, 1999 में भारतीय विद्या भवन USA अवार्ड, 2001 में वोकेशनल रिकॉग्निशन अवार्ड, 2003 में दादा भाई नौरोजी मिलेनियम अवार्ड और सन 2006 में कोलकाता का प्रतिष्ठित कलाकार पुरस्कार। पंकज उदास का गजल और फिल्म संगीत का ये सुरीला सफर यूं ही चलता रहे।

आज के फनकार। आज का हमारा ये कार्यक्रम केंद्रित था जाने माने पार्श्व गायक और गजल गायक पंकज उधास पर। आलेख और स्वर जयंत पात्रीकर, प्रस्तुति सहायिका आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।

विविध भारती से छायागीत का प्रसारण हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। FM बैंड के 103 मेगाहर्ट्ज़ पर अब लीजिए पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में अभी आप ताजमहल फिल्म का गीत सुन रहे थे। साहिर के बोल थे और रोशन का संगीत। अब आइए सुनते हैं दोस्त फिल्म का गीत। गायक कलाकार है मोहम्मद रफ़ी।

सूरज फिल्म का ये गीत भी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। हसरत जयपुरी के बोल थे और शंकर जयकिशन ने इसे संगीत से सजाया था।

0: पवन करे शोर।
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से। आइए सुने आशा भोसले की आवाज में शिकार फिल्म का ये गीत।

जगत में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी खोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

0: है करिश्मा कैसा खिलवाड़ है, अप, अप, जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है, अप, अप, खाता है कूड़ा भी रहता है भूखा भी, फिर भी को मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

मेरा नाम जोकर फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे मन्ना डे के स्वर में। और अब प्रोग्राम के आखिर में लीजिए सुनिए अंदाज फिल्म का गीत किशोर कुमार का गाया हुआ।

अंदाज फिल्म के इस गीत के साथ ही रजनीकंथा कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों पक्षों ने व्यापार, हरित बदलाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई के अलावा द्विपक्षीय संबंधों में सहयोग के नए तरीकों पर भी चर्चा की। इस बीच स्वीडन के प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल

0: ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। ये प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्वीडिश समकक्ष यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ मिलकर एक प्रमुख अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को भी संयुक्त रूप से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा के सहयोग में बढ़ रहा है।
1: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाए जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
0: नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी आज शाम अपने 5 राष्ट्रों के दौरे के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे। गोथेनबर्ग हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। गोथेनबर्ग के लिए रवाना होने से पहले नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जटन व्यक्तिगत रूप से एम्स्टरडैम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी को विदाई देने आए। नीदरलैंड की अपनी 2 दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने डच समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नीदरलैंड की उनकी यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान की है। इस दौरे को गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत और नीदरलैंड के बीच तकनीकी सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और उनके डच समकक्ष ने ऊर्जा, बंदरगाह, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, व्यापार और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों की प्रमुख डच कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद शुक्रवार को 2 दिन की यात्रा पर द हेग पहुंचे थे। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। श्री जोशी ने बताया कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आज हुई आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। ये आग ट्रेन के एक यात्री कोच और एक लगेज ब्रेक तथा जनरेटर कोच में लगी थी। घटना लूनी रिक्शा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच हुई। भारतीय रेलवे ने कहा कि समिति को निर्धारित समय सीमा के भीतर जाँच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि भारत के पास केवल 2 दिन का तेल भंडारण बचा है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि ये दावा फर्जी है। इकाई ने कहा है कि भारत के पास 60 दिन का कच्चे तेल का भंडारण मौजूद है। भारत के श्रेयांसी वलीशेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांसी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड के 103 मेगाहर्ट्ज पर स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हुए हैं। संपन्न होती है हमारी आज की ये सभा। प्रातः 5:55 पर हम पुनः हाजिर होंगे।